FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 46 हुए हैं। हमारी आज की प्रथम सभा अब आरंभ होती है।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
1: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। आईएमएफ द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वो ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना, प्रभु को निवेदित वंदना। संगीत है शक्ति, ईश्वर की हर स्वर में बसे हैं राम। रोगी जो सुनाए रागीन तो रोगी को मिले आराम।

दर्शन देने वाले। संसार के हर जीव में, जड़ में, चेतन में आप ही निहित हैं और आपका ही भाव, रस, आनंद मिलता है जब जीव के हृदय में सत्य, प्रेम और करुणा का उद्भव होता है।

शाम पिया मोरी रगदे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं, एक नया अर्थ सामने आता है। तात्पर्य है शाम रंग से, अब रंग भी शाम है और पिया भी शाम है, तो शब्दों की सुंदरता देखिए।

आज के वंदना कार्यक्रम में आपने नितिन मुकेश, बेला शिंदे और अनूप चोरोटा के स्वर में कुछ भक्तिपरक रचनाएं सुनी। इसी के साथ आज का वंदना कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: लीजिए सुनिए चिंतन बिंदु। चिंतन बिंदु में आज का विषय, आज का विचार हकदार। आलेख शरदचंद सक्सेना का। जी वाचन राखी कटारा का।
1: मम्मी ने गौरव को मुंह अंधेरे झकझोर कर जगा दिया। गौरव जल्दी उठ, पड़ोस के कन्नू लाली छुट्टन राधा चारू और यति को कह के आ, नाश्ता ना करें। कहना मम्मी ने देवी के व्रत रखे हैं, तुम सबको निमंत्रण है 9 बजे आ जाना। गौरव बड़ी मुश्किल से चारपाई से उठ पाया, आंखें खोली और अलसाया हुआ बोला, मम्मी क्या निमंत्रण पर जाने के लिए भूखा रहना आवश्यक होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि वो बच्चे भूखे हैं या नहीं? मैं भी तो चुपके से खाकर ही निमंत्रण पर खाने जाता हूँ। मम्मी अपने काम की हड़बड़ी में झल्लाते हुए बोली, गौरव तुझसे बहस करने को कौन कह रहा है? व्रत के दिन भूखे बच्चों को ही भोजन कराना चाहिए, देवी इससे प्रसन्न होती है, देवी की कथा में भी लिखा हुआ है। गौरव ने अपनी बाल बुद्धि से फिर तर्क दिया, लेकिन मम्मी कन्नू लाली छुट्टन के पापा तो बहुत बड़े व्यापारी हैं और चारू यति के डैडी डॉक्टर हैं, तो ये बच्चे भूखे कैसे हुए? मम्मी किसी तर्क को सुनने के मूड में नहीं थी। वे पुनः झुलझुलाई, अरे पागल ये बात विवाद का समय नहीं है, जल्दी जाकर बच्चों को खबर कर दे, यदि बच्चों ने नाश्ता कर लिया तो सब अनर्थ हो जाएगा, मैं और बच्चे कहां से लाऊंगी। गौरव असमंजस में घर से बाहर निकल आया। वो 12वीं कक्षा का छात्र था, एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, पिता भी उसके प्रोफेसर थे, माँ पुराने संस्कारों में पली एक धर्म भीरू महिला थी। गौरव ने अंधविश्वास के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा था, यही कारण था कि माँ के तर्क उसके गले नहीं उतर रहे थे, फिर भी वो माँ की बात को नहीं काट सका। गौरव जल्दी जल्दी कन्नू लाली के घर पहुंचा और कॉल बेल का बटन दबाने ही वाला था कि वो ठिठक गया और पल भर में एक आश्चर्यजनक निर्णय ले डाला। वो सीधे अपनी काम वाली बाई के घर पहुंच गया। वो जानता था कि सच्चे भूखे इसी बस्ती में ही रहते हैं, इन भूखों को भोजन कराने में ही सच्चा देवी का पुण्य है। उसने घर से बाहर आवाज लगाई, सरला मिट्टू पूनो तरुण बाबू को घर भेज दे, मम्मी ने बुलाया है। गौरव बच्चों को अपने साथ ही ले आया। घर आकर देखा मम्मी नहा धोकर पूजा कर रही थी, मौसी चौके में भोजन बना रही थी। पूजा से निवृत्त हो मम्मी ने आवाज लगाई, गौरव बच्चों को ले आ। मम्मी अभी लेकर आया, कहकर गौरव मिट्टू पूनो तरुण और बाबू को अंदर ले आया। मम्मी विस्मय से बच्चों को देखती रह गई। वो चिल्लाकर बोली, निकालो इन सबको, तुमने पूजा ही खंडित करवा दी। गौरव नम्र स्वर में बोला, मम्मी मैं भूखों को भोजन करवाने लाया हूँ, आपने ही तो कहा था भूखों को भोजन करवाने से देवी माँ प्रसन्न होती है। मम्मी ये सचमुच भूखे हैं, इनकी दशा बता रही है कि आपके भोजन के ये सच्चे हकदार हैं। मम्मी बुच्ची खड़ी गौरव की बात सुनती रही, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, शायद गौरव की हर बात उसकी समझ में आ रही थी। वो दौड़कर बच्चों के पास गई, उनके हाथ पैर स्वयं धोए, प्यार से धुले चौके में ले जाकर भोजन कराया। गौरव जो दूर खड़ा था मम्मी से दौड़कर चिपट गया।
0: चिंतन बिंदु में आज का विचार।

था हकदार। आलेख शरदचंद्र सक्सेना का था, वाचन राखी कटारा का। इसी के साथ चिंतन बिंदु कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान में आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। स्वर वाणी जयराम और उत्तरा केलकर का है, संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

जनकपुर यात्रा के अंतिम चरण में ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम तथा लक्ष्मण गंगा तट पर पहुंचे, जहां ऋषि ने उन्हें गंगावतरण की कथा सुनाई। जनकपुर पहुंच राजा जनक की नगरी की बनावट और उसकी शोभा देख दोनों भाई अत्यंत प्रसन्न हुए। नगरी में अनेक बावलियां, कुएं, तालाब, उसमें खिले रंग रंग के कमल, पक्षियों का कलरव, वाटिका में फूलों पर गुंजन करते भंवरे और नगर के चारों ओर फूल पत्तों से लदे वृक्षों की मनोहारी सुषमा का वर्णन शब्दों से परे है। नगर के बाजार की अपनी अलग छवि है। सुंदर चौराहे और गलियां जैसे सदा सुगंध से सींची रहती हैं। राजा जनक के निवास स्थान की भव्यता और ऐश्वर्य देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान में आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। स्वर वाणी जयराम और उत्तरा केलकर का था। संगीतकार थे सतीश भाटिया। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 6:50 पर किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय रहेगा असंचित ज्वार की उन्नत प्रजातियां एवं बुवाई। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। श्रोता लेंगे आनंद भूले बिसरे गीत का प्रातः 7 बजे। प्रातः 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे विष्णु शर्मा से ब्रजवार्ता, काम वन को महत्व एवं पंचकोशीय परिक्रमा। इस भेंटवार्ता में आपसे बातचीत करेंगे ओपी सिंह।

प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतांजलि, प्रातः 9 कार्यक्रम कथाक्रम में कहानी सुनेंगे आप एक नई सुबह। कहानीकार होंगे डॉक्टर दिनेश पाठक शशि, प्रस्तुति ओपी सिंह की रहेगी। प्रातः 9:25 पर सुनेंगे आप कार्यक्रम आबोहवा, आज का विषय रहेगा इसमें कचरा निस्तारण। प्रातः 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गैर फिल्मी गजलों का, और श्रोता सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी दिन में 11।

जिनमें बारे बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर। आज का विषय रहेगा युवतियों में व्यक्तिगत साफ सफाई, शारीरिक बदलाव एवं मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में आज का कार्यक्रम। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सारिका गौतम, वरिष्ठ मनोचिकित्सक, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे ब्रज लोकगीत कार्यक्रम। कलाकार होंगे आज बालकिशन भारती। दिन में 1:15 पर बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक, जिसमें आज चर्चा घरेलू हिंसा से सुरक्षा और कानूनी सहायता, साथ ही बरसात में स्वच्छता और संक्रमण से बचाव, इस विषय पर रहेगी आज चर्चा। पहनावा वार्ता क्रम में कैसा हो पहनावा आपकी लाडली का, इस विषय पर आज आप सुनेंगे शेफाली अग्रवाल से रश्मि शर्मा की बातचीत। दिन में 2:30 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

करें कि डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। प्रसारित कार्यक्रम का समय संध्या 7:05। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे देश हमारो क्रम में मथुरा वृंदावन में परिक्रमा का महत्व, इस विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगी लक्ष्मी शर्मा। शाम सुहानी कार्यक्रम का समय संध्या 7:31।

संध्या 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी हमारी दूसरी सभा में, जिसमें आज बरसात के मौसम में सड़क पर सावधानी बरतें और मोबाइल का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें इस विषय पर रहेगी चर्चा। साथ ही डॉक्टर अतुल सक्सेना से आप सुनेंगे भेंटवार्ता, पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कैरियर। बातचीत करेंगे आपसे सत्यव्रत सिंह। किसान भाई और बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी संध्या 6:15 पर। चर्चा रहेगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से खेत की सुरक्षा विषय पर। साथ ही आप सुनेंगे धान की रोपाई और फसल प्रबंधन पर भेंटवार्ता। विशेषज्ञ होंगे आज सुधीर अग्रवाल, आपसे बातचीत

0: रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रूपक यात्रा ब्रज की, आलेख मोहन स्वरूप पाटिया का, प्रस्तुति टीएन शर्मा की रहेगी। और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे, आज कलाकार होंगे कामोद मिश्रा, आप सुनेंगे इनसे ठुमरी और दादरा गायन। तो ये था विवरण हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती की बातें।
1: किसान भाइयों, जहाँ पर असिंचित क्षेत्र है और वो खेती विशेष रूप से वर्षा पर आधारित है और मध्यम और भारी भूमि है, वहाँ पर हम ज्वार की फसल लेकर के अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जहाँ तक इनकी प्रजातियों का सवाल है तो उन्नतशील प्रजातियाँ बाजार में आ चुकी हैं। किसान भाई लेकर के इनकी बुवाई जल्द से जल्द संपादित कर लें। चूंकि इसकी बुवाई जून के अंतिम सप्ताह से ही शुरू हो जाती है और जुलाई के प्रथम पखवाड़े तक किसान भाइयों को संपन्न कर लेनी चाहिए। उन्नतशील प्रजातियों में वर्षा एक प्रजाति है। इसके जो उपज है करीब 25 से 30 क्विंटल तक इससे ली जा सकती है और 125 से 130 दिन की ये फसल है। अगर हम CSB 13 और CSB 15 किस्म को लगाते हैं तो इसकी पकने की अवधि करीब 105 से लेकर के 112 दिन है और इससे उपज 22 से लेकर के 28 क्विंटल तक ली जा सकती है। और बुंदेला जो किस्म है वो 110 से 115 दिन में पककर के तैयार होती है, 30 से 35 क्विंटल तक इससे उपज ली जा सकती है। वैसे तो आजकल संकर प्रजातियां आ गई हैं जो कि उत्पादन की दृष्टि से उन्नतशील प्रजातियों से काफी अधिक हैं। संकर प्रजातियों से उत्पादन करीब 35 से लेकर के 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक लिया जा सकता है और इनकी पकने की अवधि भी 105 दिन से लेकर के 110 115 दिन तक होती है। संकर ज्वार में CSH 9, CSH 14, CSH 16, CSH 18 प्रजातियां हैं। इनका जो दाना होता है कुछ हल्का बादामी लिए होता है और सूखे चारे भी इससे मिल जाते हैं। हालांकि जो उन्नतशील प्रजातियां उसके अपेक्षा सूखा चारा इनसे कम मिलता है, करीब 80 से 100 क्विंटल तक सूखा चारा प्रति हेक्टेयर लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी खेती के लिए। देसी हल से जुताई करके, 2-3 बार ट्रैक्टर से आप जुताई करके खेत को समतल करके उसमें बुवाई की जा सकती है और एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 10 से 15 किलोग्राम बीज लगता है। बीज वैसे तो आजकल शोधित होते हैं तो उनको शोधित करने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी अगर आप चाहें तो 2.5 ग्राम थीरम से प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीज को शोधित कर लें। पंक्तियों में इनकी बुवाई की जाती है जिसमें 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बने कूड़ों में बीज को गिराया जाता है। जब आपकी फसल करीब 15 दिन की हो जाती है तो उस समय बिरलीकरण किया जाता है पौधों का और उसमें पौधों की आपसी दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर कर दी जाती है।
0: थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ता प्रधानमंत्री

सुरैया को अभी आपने सुना फिल्म गजरे में। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं तलत महमूद को फिल्म आशियाना में, गीत राजेंद्र कृष्ण का, संगीत मदन मोहन का।

अभी आप सुन रहे थे तलत महमूद को फिल्म आशियाना में, और आइए सुनते हैं जे नक्श का गीत संगीत खेमचंद प्रकाश का। फिल्म महल के इस गीत को आवाज दे रही हैं राजकुमारी।

अभी आपने सुना राजकुमारी को फिल्म महल में जय नक्ष का गीत संगीत खेमचंद्र प्रकाश का था, और आइए सुनते एक अलग रंग का गीत आज के भूले बिसरे गीत क्रम में।

जी हाँ, फिल्म नया दौर के इस गीत को आवाज दे रहे हैं मोहम्मद रफी, बलबीर और साथी गीत साहिर लुधियानवी का, संगीत ओपी नैयर का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म नया दौर से ये गीत। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी, बलबीर और साथियों की थी। गीत सायर लुधियानवी का, संगीत ओपी नैयर का था। फिल्म नया दौर के इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए जारी किए 1,320 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इको टूरिज्म का नया केंद्र बन रहा है चित्रकूट। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी। 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर की गई पूछताछ। और वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर बनाया जा रहा है देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से प्रदेश के 12 लाख शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने 1,10,00,000 विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए अभिभावकों के खाते में करीब 1,320 करोड़ रुपए की धनराशि का अंतरण भी किया। इस अवसर पर 10 लाख शिक्षकों और संविदा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एमओयू किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां इस योजना को लागू किया गया है।
1: हर एक शिक्षक को भी, शिक्षा मित्र को भी और अनुदेशक को भी एक नई गारंटी दी जा रही है, जिसमें अस्थाई शिक्षक और कार्मिकों को जिनका वेतन 10,000 रुपए से अधिक है उन्हें 10,00,000 का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस कवर, जिसमें 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 1 करोड़ का स्थायी दिव्यांगता कवर, 1.6 करोड़ का ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के साथ ही किसी अनहोनी की दिशा में शिक्षक या कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर इसमें प्रदान किया जाएगा। यह एक नई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिली है।
0: प्रदेश के अन्य जिलों में भी मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ के मौके पर कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इस अवसर पर सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित कार्यक्रम को डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने संबोधित किया। श्री पाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की इस पहल से शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के लाखों परिवारों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए आभार जताते हुए जौनपुर के शिक्षक राजेश पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस योजना के माध्यम से शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए समस्त शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना की जो शुरुआत की है, यह बहुत ही सराहनीय पहल है। इसके लिए पूरे शिक्षा विभाग की तरफ से सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह योजना लाखों लाख शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधी समस्याओं और उनकी चिंताओं का समाधान करेगा।
0: वाराणसी के बाद मुख्यमंत्री ने मिर्जापुर में पहुंचकर माँ विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया और विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। श्री योगी ने विंध्य मंडल के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं से संबंधित सभी प्रस्ताव 15 जुलाई तक शासन को भेज दिए जाएं। श्री योगी ने कहा कि 15 अगस्त तक स्वीकृत योजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की लागत वाली 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट में अब निवेश आ रहा है जिससे जनपद के विकास को गति मिल रही है।
3: अब निवेश यहाँ भी आ रहा है क्योंकि अब भय नहीं है, अब तो निवेश का वातावरण है। 4 लेन की सड़कें हैं, एक सुंदर चित्रकूट हम सबके सामने है और वह आज हम सबको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज तो यहाँ पे हम लोग एक पर्यटन के

0: नए केंद्र के रूप में, यानी ये आध्यात्मिक टूरिज्म तो था ही, अब इको टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में इसको विकसित करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रानीपुर टाइगर रिजर्व को भी यहाँ पे के लिए आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने कल तीन आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लोकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग भी पहुंची। वहीं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से कल कई साधु संतों ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद महंत राजकुमार दास ने कहा कि आगामी दिनों में ट्रस्ट में बड़े परिवर्तन होंगे, जिसकी जानकारी जल्द ही ट्रस्ट द्वारा साझा की जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास बनाया जा रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कल उन्होंने बताया कि 450 मीटर लंबा यह अंडरपास देश की अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। वहां ऊपर विमानों के संचालन के दौरान नीचे सड़क यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का कल 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में 1246 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने भाषा विश्वविद्यालय में शुरू होने जा रहे नए कोर्सेज के बारे में चर्चा की।
2: ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में पूर्व से संचालित भाषाओं के साथ साथ अब जर्मन, जापानी और चीनी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। यह पहल विद्यार्थियों के लिए विश्व के ज्ञान द्वार खोलने के साथ साथ उन्हें वैश्विक अवसरों से भी जोड़ेगी। इसके साथ ही अवधि भाषा में स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रयास विशेष रूप से अभिनंदनीय है।
1: प्रदेश में 12 जुलाई को होने वाले पौधरोपण महाअभियान को लेकर वन विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रदेश की 2600 से अधिक नर्सरियों में 57,62,00,000 पौधे तैयार किए गए हैं। प्रयागराज पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश के वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है।
3: पूरी दुनिया इस समय ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझ रही और इस बार 35 करोड़ जब हमारे यहाँ पेड़ लग जाएंगे, जब से 9 साल में हम लोग 275 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड, 35 करोड़ का इस बार का लक्ष्य है, उससे ज्यादा ही लगते हैं जितना लक्ष्य होता है, तो यह हम लगाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वन आच्छादन का जो क्षेत्र है वो घटा नहीं, वो बढ़ा है।
1: राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में कल हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। वहीं गोरखपुर सहित कई पूर्वी जिलों में हल्की बूंदाबांदी का क्रम जारी है। इस अंचल में हल्की हवाओं के चलने के बावजूद उमस का असर कायम है। इस बीच मौसम विभाग ने 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए जारी किए 1,320 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इको टूरिज्म का नया केंद्र बन रहा है चित्रकूट। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी। 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर की गई पूछताछ। और वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर बनाया जा रहा है देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास। इसी के साथ

0: प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

कार्यक्रम ब्रज माधुरी सुनने वाले सभी भैया बहनों को हमारी जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। भयाओ या ब्रज 84 कोस को जो ठाकुर जी को जे पवन पुनीत और अतुलनीय ये ब्रज धाम है या के विषय में अनेकानेक संतन ने समय समय पे अपनो भाव रखो है और ऐसो भाव या में अनुभव के आधार पे बिन्ने अपने साहित्य में अपने संगीत में अपने यहाँ के सभी दर्शन में भाव रखो है कि या भाव या धाम में जब हम भजन करे हैं ठाकुर ते नेह लड़ाए हैं तो कछु विशेष अनुभव हुए करे है या 84 कोस के या क्षेत्र में वहाँ को कारण जी भैयाओ के लाला ने हमारी किशोरी जू ने लाडली लाल सरकार ने यहाँ पे अपनो बाल्यकाल अपनो वो जो लीला धरी हैं यहाँ पे और अपने जो नन्हे नन्हे पाम या भूमि पे धरे हैं विनते ये भूमि आज पावन भई है और दूर दूर से श्रद्धालु जब धाम में पधारे हैं तो अपलक दृष्टि से ठाकुर को दर्शन करे हैं तो फिर बिनको अपने निज गांव में जावे को मन नाय हुई।

0: करे हे। और ऐसो भी वर्णन मिले हैं कि श्रद्धालु जब पधारे दूर दूर ते, तो वो जब कहें भैया हम तो यही चाहें कि हमें अनेक जन्मन में अपने ब्रज को ही वास मिले, और बिनको कछु ऐसो भाव कि हमें तो ब्रज धाम तज के मोक्षों ना चाहिए, जब जब जन्म मिले हम ठाकुर जी को या देह के माध्यम ते बिनको मनामे, बिनको रिझामे और बिनको भोग प्रसाद नित नित नए पोशाकन के माध्यम ते बिनको हम रिझामे। तो भैया भाव ये है कि जब हम अपने कन्हैया को अपने लाला को रिझामे, बिनको कहें कि यहाँ के धाम को, यहाँ के लीलान को और यहाँ के भजन को जब हम रसपान करें हैं, तो वह रस्ते हमारी आत्मा तृप्त हो करे हैं। कछु ऐसो ही भाव है संतन को या भूमि पे, ये प्रेम की भूमि है, ये सत्य की भूमि है, करुणा की भूमि है, आनंद की भूमि है। भैयाओ ये ब्रज कोई पर्यटन स्थल ना है, ये तो साक्षात हमारे श्री राधा जी हमारे कन्हैया की भूमि है, और श्रीधाम वृंदावन होए, गोकुल होए, नंदगाम होए, हमारो गोवर्धन होए और हमारो कामन होए, अनेक ऐसे ब्रज के अनुपम स्थल हैं कि बिनको तो कहबो ही कहा। और भैया आज आप सुनो लियो आनंद यह ब्रजवार्ता के माध्यम से कामन को महत्व एवं पंचकोशीय परिक्रमा या विषय पे आप सुनो ये भेंटवार्ता। विष्णु शर्मा से आप बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: बताओ यूं तो पूरा ब्रज योग योगेश्वर राज राजेश्वर की लीला स्थली है, जन्म स्थली है, लेकिन इसमें अगर हम काम मन की बात करें तो उसका एक अलग महत्व है। और ये काम मन क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें कौन कौन सी ऐसी स्थान है जिनको पवित्र माना गया है, पौराणिक माना गया है, और कौन कौन से ऐसे हैं जो प्रभु के धाम के रूप में वहाँ विराजते हैं, तो कामन के महत्व, उसके नामकरण और उसमें लगाई जाने वाली पंचकोशीय परिक्रमा के बारे में आज हम जानेंगे। हमारे साथ हैं श्री विष्णु कौशिक जी, आप सेवायत हैं श्री राधा वल्लभ मंदिर कामन के। प्रभु आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत, नमस्कार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद श्री राधे राधे
1: जी। तो मैं अगर ये जानूं कि जो कामन इतना महत्वपूर्ण है ब्रज धाम में, ये तो पूरा ब्रज धाम ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कामन की एक अलग छवि है, तो थोड़ा सा बताइए कि इसका जो महत्व है वो क्यों पर है।
2: कामन के बारे में तो बारह भगवान ने खुद पृथ्वी से कहा है, आदिवारा पुराण में इसका उल्लेख है कि उक्तम च पंचम काम्यकम वनम वनानाम वन उत्तमम तत्र गत्वा नरो देवी मम लोके महियते, कि हे पृथ्वी कि मेरे द्वारा जो कहे गए जो बारह वन है, उन बारह वनों में उक्तम च पंचम, ये जो पांचवा वन है काम वन, वनम वनानाम वन उत्तमम, वनों में भी सर्वोत्तम वन है। तत्र गत्वा नरो देवी, यहां जो कोई भी स्त्री पुरुष जाते हैं मम लोके महियते, मेरे लोक में वास करते हैं। कामवन के बारे में तो ब्रज में ये भी कहा जाता है कि कामवन आए से ही काम बन जाते हैं, ये कामवन केवल आने मात्र से इच्छाओं की पूर्ति करने वाला ये वन है, अगर इंग्लिश में बोले तो डिजायर की पूर्ति करने वाला इसको वन कहते हैं। और रही बात कामवन की, तो कामवन में आप यहाँ जो आप दर्शन करेंगे कोई साधारण नहीं है कामवन, यहाँ ठाकुर जी के 84 कुंड है। जब नंद बाबा यशोदा मैया को तीर्थ करने की इच्छा हुई थी तो ठाकुर जी ने यहाँ पर 84 कुंड, 84 मंदिर, 84 खंबा, 300 कूप, 6,60,000 सिंहासन ठाकुर जी ने यहाँ प्रकट किए थे। और यहाँ इन्हीं कामन में यहाँ आप दर्शन करेंगे ठाकुर जी की श्री चरण पहाड़ी का दर्शन है, श्री भोजन थाली का दर्शन है, श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन है, यहाँ मदन मोहन जी का दर्शन है, वृंदा देवी का दर्शन है, जगन्नाथ जी का दर्शन है, कामेश्वर महादेव, जो ब्रज के चार महादेव हैं उन महादेवों में एक प्रमुख महादेव कामेश्वर महादेव का यहाँ दर्शन है, वल्लभ संप्रदाय की दो पीठ हैं, तीर्थों के राजा विमल कुंड का यहाँ स्थान है। तो कामन तो बहुत महत्व रखता है,
1: मतलब जितनी नाम लेंगे और जितना ब्रज का है वो अगर हम कामन पहुंच जाते हैं तो सब साकार हो जाता
2: जी बिल्कुल। कहते हैं इस अधिक मास में, जो अभी अधिक मास समाप्त हुआ है, इस अधिक मास में यहाँ कामन में अगर कोई व्यक्ति भी आकर दो दिन भी या एक दिन भी अगर कोई वास कर लेता है, कहते हैं नौ देवी बारह ज्योतिर्लिंग यानी संपूर्ण भारत की यात्रा करने का फल इस केवल कामन के दर्शन मात्र से मिल जाता
1: जी,
2: है।
1: जी जी, शायद इसीलिए कि नंद बाबा और जो थी अपनी, हाँ, क्योंकि उनको जो बुजुर्ग हो गए थे, चल नहीं सकते थे, तो

0: प्रभु ने साक्षात
1: ठाकुर जी
0: सबके।
1: को ये था ना कि मैं इनको कहाँ कहाँ लेके जाऊंगा, क्योंकि अवस्था इनकी ज्यादा हो चुकी है, मुझे ब्रज में लीलाएं भी करनी है, सब कुछ मुझे करना है, तो अगर मैं इनको अगर लेके जाऊंगा तो मैं कैसे करा
0: मतलब
1: पाऊंगा सबको दर्शन, कई सालों लग जाएंगे।
0: समय में वो पूरा
1: ठाकुर जी ने
0: जो
1: सब
0: है
1: तीर्थों
0: सब
1: का आह्वान यहाँ पर कर दिया था कामवन में, तब जाकर के ये कामवन अपने स्वरूप में, यानी मूल वृंदावन इसको कहते हैं, सबसे पुराना वृंदावन कहते हैं इसको, आदि वृंदावन कामवन के नाम से
0: जी
1: जाना
0: जी
1: जाता है।
0: जी तो अब इसमें जैसे परिक्रमा हम लगाते हैं उसमें, तो कितनी कोसी परिक्रमा
1: देखिए
0: उसके?
1: कामवन की जो परिक्रमा वैसे अगर देखा जाए तो कामवन की टोटल 7 कोस में हो जाती है परिक्रमा, लेकिन राधा वल्लभ जी मंदिर के द्वारा कामवन की एक पंचकोसी परिक्रमा लगाई जाती है, जो कि भादो शुक्ल दशमी को, यानी जन्माष्टमी के बाद जो दूसरे दिन जो दशमी आती है, उस दशमी से यह परिक्रमा लगाई जाती है, जो कि पंच दिवसीय होती है, ना इसमें कोई चार्ज लिया जाता है किसी से, बिल्कुल फ्री यात्रा होती है, वैष्णव जन आते हैं, कम से कम 10 से 15 हजार लोग इसमें यात्रा में आते हैं, जिसमें प्रत्येक दिन में 1 कोस यात्रा यहां कराई जाती है। और कामवन में जहां जहां ठाकुर जी ने जितने भी मंदिरों पर जो मंदिर ठाकुर जी ने प्रकट किए हैं, जहां
0: जी जी
1: ठाकुर जी ने लीला की है, जो कुंड स्थापित किए हैं, उन कुंडों का महात्म कथा और संगीत के माध्यम से लोगों को सुनाया जाता है, वैष्णव जन आकर के वहां कथा का पान करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कामवन के वासी ही इस कथा को सुनते हैं, आसपास के अनेक राज्य से लोग, जैसे यूपी से हो गए, इधर राजस्थान तो है ही है,
0: हाँ,
1: यूपी एमपी साइड से भी लोग बहुत आते हैं,
0: श्रद्धालु
1: जो
0: बहुत
1: हाँ बहुत
0: पहुंचते
1: लोग आते हैं
0: हैं
1: जो
0: जी।
1: यहाँ ठाकुर जी की। और ऐसा है कि सुबह यात्रा स्टार्ट करते हैं, शाम को यात्रा समापन हो जाती है, फिर अगले दिन फिर दोबारा इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं, फिर शाम को समापन हो जाती है, यानी राधा वल्लभ मंदिर से यात्रा को उठाते हैं और
0: वहीं
1: राधा वल्लभ मंदिर पे ही आकर के इसका
0: समापन
1: समापन
0: करते
1: करा
0: हैं।
1: देते हैं।
0: जी। तो ये जो परिक्रमा है कि मतलब साल में कभी भी कर सकते हैं या कोई विशेष
1: नहीं
0: समय
1: नहीं
0: इसका?
1: विशेष दिन भादो की दशमी को ही ये परिक्रमा स्टार्ट होती है, जो कि अब सितंबर का जो महीना
0: जी
1: आएगा,
0: जी जी
1: 4 सितंबर को जन्माष्टमी है, तो 6 सितंबर से ये यात्रा प्रारंभ हो जाएगी,
0: जी
1: जो कि
0: जी
1: 5 दिन तक चलेगी, चतुर्दशी को ये यात्रा समाप्त हो जाती है। और यहाँ वैसे अगर इस परिक्रमा में हम देखते हैं तो राधा वल्लभ मंदिर से ये चालू होती है, जो वृंदा देवी मंदिर में जाती है, जो वृंदा देवी जयपुर के राजा जिनको यहाँ लेकर के आए थे, राजा को स्वप्न में दर्शन दिया था, जब राजा इनको लेकर के जब जा रहा था तो इनका रथ आगे नहीं बढ़ा था, राजा ने हजारों हाथी जोड़े थे इस रथ को चलाने के लिए, लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ा, तो देवी ने रात को स्वप्न में राजा को दर्शन दिया, राजा को बोला है कि मेरे रथ को यहां से तुम आगे मत ले जाओ, मुझे यहाँ इस कामवन में ही वास करना है, तो वृंदा
0: जी
1: रानी यह कामवन में आई, और उन्हीं वृंदा रानी के नाम से इस कामवन का नाम एक तरह से आदि वृंदावन कामवन भी कहते हैं फिर।
0: ओके जी। अब जैसे मैं जैसे एक बहुत चर्चा होती है चरण पहाड़ी की, ठाकुर जी के चरण चिन्हवा हैं, तो कैसे स्थापित हुए वो दिखते हैं, साक्षात दिखते हैं
1: जी
0: हमने।
1: जी बिल्कुल। देखिए जब ठाकुर जी नंदगांव से गैया चराते हुए जब कामवन में प्रथम बार जब आए थे, तो भोजन थाली पर ठाकुर जी ने भोजन कर लिया
0: हाँ
1: था,
0: जी
1: जो
0: जी
1: कि
0: पिछली बार आपसे
1: पिछली बार
0: चर्चा
1: आपको
0: हो
1: सुनाया था वो।
0: रही। हाँ
1: तो भोजन थाली पर जब भोजन कर लिया था, तो ठाकुर जी गौचारण की लीला करते हुए जब आगे बढ़े, तो चरण पहाड़ी के पास में ही एक लुकलुक कुंड नाम से जगह है, जहां ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ लुका छुपी का
0: लुका
1: खेल,
0: छुपी
1: हाँ
0: खेलते
1: जिसको
0: जी।
1: आजकल हम
0: हाँ
1: वो छुपा छुपी का
0: छुपे
1: खेल
0: जी
1: कहते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: लुका छुपी का जब खेल ठाकुर जी खेल रहे थे, तो बहुत देर हो गई ठाकुर जी को सब सखा पाए नहीं थे, बहुत देर हो गई है ठाकुर जी सब सखाओं को ढूंढ रहे हैं, और ठाकुर जी से सब सखा छुप गए थे, यानी एक तरह से ठाकुर जी की लीला आप उसको कह सकते हो, और गैया भी बहुत दूर चली गई। अब ठाकुर जी गैयान को जब आवाज देने लगे तो गैया भी नहीं आई है। अब ठाकुर जी ने क्या किया है कि ऊपर पहाड़ पर जाकर के जहां ठाकुर जी का अभी चरण चिन्ह है, वहां ठाकुर जी खड़े हो गए, और डेढ़ टांग पर, यानी एक पैर जमाया है, दूसरे पैर को अदर कर लिया है,
0: हाँ वो
1: और पहाड़ पर खड़े होकर ठाकुर जी बंसी को बजाने लगे। और जब जैसे ही ठाकुर जी ने जब अपनी मधुर बंसी बजाई है, तो गैयाएं वहां से खिंच करके आई हैं, गैयाएं तो आई तो क्या हुआ कि ठाकुर जी की बंसी की तान से जो पहाड़ है वो मोम की तरह पिघला है, और मोम की तरह पिघलते हुए ठाकुर जी का जो एक चरण चिन्ह है वो वहां चरण पहाड़ी पर जाकर के छपा है, जो आप कभी वहां जाकर के दर्शन करेंगे, ऊपर पहाड़ पर एक पैर है ठाकुर जी का पूरा चरण चिन्ह का, और उसी के पास में ही चरण पहाड़ी के थोड़ा पास में ही एक पहाड़ पर पर्वत पर एक ठाकुर जी ने अपनी बंसी को वहीं रखा था, तो एक पहाड़ पर एक बंसी की शेप की एक निशान है, चिन्ह बना हुआ
0: जी
1: है,
0: जी
1: हाँ, और उन्हीं के पास में 56 कटोरे भी ठाकुर जी ने सूक्ष्म रूप में
0: जी
1: वहां पर बनाए हैं।
0: तो एक जैसे विमल कुंड की बात होती है, आपने भी चर्चा की, इसका कुछ जो महत्व है इसको
1: देखिए
0: कुछ?
1: विमल कुंड की उत्पत्ति जो थी कि सिंधु देश में एक चंपक नगरी नाम के विमल नाम के राजा थे, उन राजा के अनेकों रानियां थी, परंतु राजा के कोई ना पुत्र था ना पुत्री थी, तो राजा इस चिंता में ही हर समय मग्न रहते थे।

0: तो एक बार याज्ञवल्क्य के ऋषि उनके राज्य में जब आए
1: जी
0: हैं
1: जी
0: तो राजा ने उनका स्वागत सम्मान किया। तो ऋषि ने पूछा कि राजन तुम्हारे मस्तक पर इतनी चिंताएं कैसी, जो चिंता की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। बोला राजन बिना पुत्र पुत्री के तो हर पिता का जीवन अधूरा होता
1: जी
0: है,
1: जी
0: और
1: जी
0: मेरा तो मेरी पत्नियों के जीवन में तो संतान का सुख ना मेरे जीवन में ना मेरी पत्नियों के
1: हाँ
0: जीवन में है। तो ऋषि ने बोला कि राजन तुम्हारे पुत्र का तो योग नहीं है लेकिन तुम्हारे पुत्रियों की संख्या अधिक होगी, यानी पुत्रियां अनेक होंगी। तो राजा विमल के ऋषि के आशीर्वाद से 16,100 रानियां जो पुत्रियां थी वो पैदा हुई थी। अब ये 16,100 पुत्रियां थी कौन, कि जब भगवान राम जी जब अपनी बारात लेकर के जब गए थे जनकपुरी
1: हाँ
0: तो हर अयोध्यावासी के मन में थी कि स्त्री के मन
1: मेरी
0: में थी कि ऐसा जो ये ऐसा लड़कियों के मन में था कि
1: हाँ।

0: स्त्री के मन में थी कि ऐसा जो
1: हाँ
0: ये ऐसा लड़कियों के मन में था कि
1: हम
0: ऐसा युवक मेरा मेरा भी पति हो।
1: बर हो।
0: तो ठाकुर जी ने उस समय तो माता सीता को एक पति का वचन दिया था कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई और स्त्री मेरे जीवन में नहीं होगी। तो जनकपुरी की जो स्त्रियां थी और अयोध्या की जो स्त्रियां थी,
1: जी
0: उनको ठाकुर जी ने बोला कि मैं अभी तो तुम्हारी इच्छा को पूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन द्वापर में जब मेरा कृष्ण रूप में अवतार होगा तो मैं तुम्हारे उस वरदान की पूर्ति करूंगा। तो राजा बम्मल के ये पुत्रियां तब अवतरित हुई हैं। तो भगवान कृष्ण ने इनके साथ विवाह किया, यानी द्वहेज स्वरूप याज्ञवल्क्य जी ने उनको बोला था कि आप अपनी इन पुत्रियों को कृष्ण भगवान को दहेज स्वरूप में सौंप देना। तो भगवान कृष्ण ने जब इनके साथ जब विवाह कर लिया था, तो भगवान कृष्ण जब इस काम मन से जब जाने लगे, तो उन पुत्रियों के विरह में जो आंसू निकले हैं ना, उन आंसुओं से ये जो विव्वल बोलते हैं जिनको, विव्वल
1: हाँ
0: होने से ये कुंड बनाता है जिसको विमल कुंड कहते हैं। कहते हैं कि भादो शुक्ल की दौज को यदि कोई इस पक्षी भी इस कुंड के ऊपर से अगर निकल जाता है तो तक्षण उसकी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। स्नान
1: जी
0: करने का तो महत्व बहुत हो जाता है, क्योंकि इस
1: जी
0: कुंड को ठाकुर जी ने तीर्थराज की उपाधि दी है।
1: जी तो कहें तो पूरा जो काम मन है और उसमें स्थित जो लीला स्थली है, चरण स्थली की बात की, जो भी मंदिर है, जो भी देवालय है, जो भी कुंड है, उसका अपना एक महत्व है, उसकी
0: जी,
1: अपनी एक कहानी है,
0: ये
1: उसका
0: सब
1: अपना एक वो है
0: ठाकुर
1: उसमें।
0: जी के ही समय के स्थापित ये चिन्ह हैं। यहां आप कभी आएंगे तो 84 खंभा का भी दर्शन करेंगे। कहते हैं कि जो 84 खंभा, दो कहानियां इसके पीछे की, एक तो ये है कि ये भूतों के द्वारा बनाए गए हैं एक रात्रि में,
1: जी
0: दूसरा इसका कहते हैं कि अगर कोई अगर इनको 84 गिन ले, पहली बात तो ये
1: हाँ
0: 84 कभी काउंट नहीं होते,
1: हाँ
0: कभी ये 80 होंगे कभी 90 होंगे,
1: घटते
0: लेकिन अगर कोई,
1: बढ़ते।
0: हाँ, अगर इनको कोई 84 अगर गिन लेता है तो कहते हैं कि 84 लाख योनियों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अगर मैं तो फिर भी आपके माध्यम से सभी श्रोताओं से कहूंगा कि अगर आपको काममन के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करना है, तो जब जन्माष्टमी के बाद का जो ये पर्व होता है, 10वीं तिथि से जो ये परिक्रमा प्रारंभ होती है भादो के महीने में, आप लोग आए और इस काममन के ठाकुर जी के जो प्राचीन लीला चिन्ह है, विग्रह हैं, स्थान है, उन कुंडों का दर्शन करें, आचमन करें, उनकी परिक्रमा करें। पंचदिवसीय यात्रा होती है, ज्यादा होता नहीं, 15 से 20 किलोमीटर इसमें चलना होता है 5 दिन में।
1: लेकिन उस एक बार जाना चाहिए, देखना चाहिए
0: तभी
1: और
0: तो कहते
1: इसके
0: हैं
1: महत्व को
0: कि
1: समझना
0: तभी तो
1: चाहिए।
0: कहा जाता है कि कामवन आए से ही काम बन जाता है, कि कामवन में केवल आने मात्र से काम बन जाता है।
1: जी जी तो श्रोता बंधु, आप थे श्री विष्णु कौशिक जी, सेवायत श्री राधा वल्लभ मंदिर कामन, और कामन में और भी बहुत सारी ऐसी कहानियां, लेकिन अभी समय की सीमा है तो ये कुछ प्रकाश उन्होंने डाला। और कलयुग जो चल रहा है, इसमें हम कहते हैं कि इच्छाएं प्रबल हैं, अपेक्षाएं बहुत हैं, तो अगर इनको हम पूरा करना चाहते हैं तो प्रभु कृपा से, प्रभु दया से काम बन चले जाइए, दर्शन का लाभ भी लीजिए और इच्छाएं पूरी करने का जो है महात्म्य, उसको भी आप चरितार्थ कर सकते हैं। विष्णु कौशिक जी आप आए और जानकारी दी कामन के इस महत्व के बारे में, कुछ मंदिरों के बारे में, कुंड के बारे में। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्राधे राधे।
1: जय श्री
2: भैयाओ, अभी आपने लियो आनंद या ब्रजवार्ता के माध्यम से सुनी आपने जे भेंट वार्ता, कामवन को महत्व एवं पंचकोशीय परिक्रमा या भेंट वार्ता में विष्णु कौशिक ते बत्यामते भय आप हते ओपी सिंह। और भैया लियो आनंद कार्यक्रम में अब या ब्रज लोकगीत को

भैया सुभाष चंद्र और साथी इनके पहते सुनो भैया, अभी आपने जो लोकगीत यही के साथ आज को ब्रजमादरी कार्यक्रम संपन्न हुए हैं, सभी भैया बहन को हमारी जय श्री कृष्ण जय श्री राधे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर

0: आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स है, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैं।

0: हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी

0: दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लोकसत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओज फोरम इन मेलबर्न, सेज इट इज नेचुरल एंड एसेंशियल फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू मूव फॉरवर्ड एज ट्रस्टेड पार्टनर्स इन अ वर्ल्ड मार्क्ड बाय अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शंस एंड एनर्जी क्राइसिस। Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of Khopra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history

0: by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities available in India across a number of sectors.
1: हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज, पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूअल कॉरिडोर्स और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं।
0: Mr. Modi invited Australian investors to take advantage of opportunities for long-term investments in the country and also welcomed the growing presence of Australian universities in India.
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap business event, a large gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides. Speaking about natural synergies between India and Australia, he highlighted that shared democratic values, a common vision for the Indo-Pacific, vibrant people-to-people ties and strong political understanding created fertile ground for the business partnership between the two countries to grow and prosper together.
1: लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयास में आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज का ये संवाद नए आइडियाज, नई पार्टनरशिप और नए कमिटमेंट्स को जन्म देगा।
0: Now we go over to our Melbourne correspondent who is sharing more details on the Prime Minister's visit.
2: The India-Australia CEOs Forum marked a decisive shift from parallel diplomatic tracks to an integrated, future-proof economic engine. Prime Minister Modi signaled a new era of decentralized economic diplomacy, calling for direct state-to-state corridors that link Australia's raw resources directly with India's massive clean energy, chip manufacturing and digital infrastructure pipelines. Echoing this vision, Prime Minister Albanese mapped out massive capital commitments, anchored by Australian super's multi-billion dollar investments, unprecedented higher education partnerships and landmark industrial projects like the Perdaman plant. Together, both leaders made it clear that while policy sets the runway, it is a direct synergy of our corporate titans and the unstoppable aspiration of 1 million strong diaspora that will pilot this relationship.

सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल को अभी आपने सुना, धुन तैयार करी थी डब्बू मलिक ने। और आइए सुने ये गीत कार्यक्रम गीतांजलि में इस व्यावसायिक अंतराल के बाद।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाए।

0: रहेगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और आइए सुनते हैं फिल्म हम दिल दे चुके सनम का टाइटल सॉन्ग। कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद सलामत और साथियों के स्वर में।

0: महबूब के गीत को संगीत दिया इस्माइल दरबार ने। फिल्म हम दिल दे चुके सनम से अभी आपने सुना ये गीत। आवाज़ दे रहे थे गीत को कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद सलामत और साथी।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और आइए सुने कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को लिया हमने फिल्म हमको दीवाना कर गए। जी हाँ, इस फिल्म से ये नगमा। आवाजें सोनू निगम और तुलसी कुमार की।

जय हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की। ई है

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और तुलसी कुमार को फिल्म हमको दीवाना कर गई। जी हाँ, इस फिल्म से ये नगमा और आई सुने कार्यक्रम का ये अगला गीत। इस गीत को

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे?

गीत अनजान का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। फिल्म डॉन के इस गीत को आवाज दे रहे थे किशोर कुमार। इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में आज गुरुवार 9 जुलाई को 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है युवतियों में व्यक्तिगत साफ सफाई, शारीरिक बदलाव एवं मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में। जी हाँ, इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सारिका गौतम, वरिष्ठ मनोचिकित्सक आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-25301355 पर फोन करके या मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में युवतियों में व्यक्तिगत साफ सफाई, शारीरिक बदलाव एवं मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है युवतियों में व्यक्तिगत साफ सफाई, शारीरिक बदलाव एवं मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में आज का विषय। श्रोताओं, यदि आप व्यक्तिगत साफ सफाई, शारीरिक एवं मानसिक बदलाव जैसे नियमित स्नान, वस्त्रों का चयन, मासिक धर्म की स्वच्छता, हार्मोनल परिवर्तन, शारीरिक विकास, वजन का बढ़ना, तनाव व चिंता, स्वच्छता का मानसिक प्रभाव, घबराहट के लक्षण जैसे लक्षणों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो पूछिए सवाल डॉक्टर सारिका गौतम से, वरिष्ठ मनोचिकित्सक आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन आज, समय दिन में 12 बजे से। हमारा टेलीफोन नंबर रहेगा 0565-25301355, व्हाट्सएप नंबर 9412225575। सूचना समाप्त हुई।

लीजिए सुनिए कथा क्रम में कहानी एक नई सुबह। कहानीकार हैं डॉक्टर दिनेश पाठक शशि।

0: आज की कहानी एक नई सुबह लेकर आ रहे हैं डॉक्टर दिनेश पाठक शशि और प्रस्तुति ओपी सिंह की है।
1: प्रत्येक प्राणी के जीवन में एक न एक दिन ऐसा होता ही है, या वह ही अपने जीवन की कहानी में एक असफल पात्र सिद्ध हुआ है। रह रहकर यह विचार विभू के मन में आंदोलन करने लगता है और सोचते सोचते उसके मस्तिष्क की शिराएं तनाव से भर जाती हैं। कैसी विचित्र पहेली है यह जीवन भी। आदमी सोचता कुछ है और उसके जीवन में घटित कुछ और ही हो जाता है। बचपन से ही विभू अपने भरे पूरे परिवार में 10 सदस्यों में सबसे छोटा होने के कारण सभी का स्नेह भाजन और लाडला बच्चा रहा था। माता पिता, बहन भाई और भाभियाँ सभी उसे पुत्रवत ही स्नेह करते थे। उसे याद आया बचपन में वह कितना जिद्दी था। माँ भोजन के लिए मनोहार करती और वह भिंडी नहीं खाऊंगा, अरहर नहीं खाऊंगा, यह नहीं खाऊंगा, वह नहीं खाऊंगा, जैसी जिद पकड़ लेता तो फिर मनाना मुश्किल हो जाता। माँ मनोहार करते करते बहुत सी चीज़ों के नाम ले लेकर उसे लुभाने का प्रयास करती। घी भूरे से खा ले, दही ले ले, ये ले ले, वह ले ले, पर उसकी जिद जब उसके सिर पर चढ़कर बोलती तो वह भोजन की थाली को एक तरफ खिसका कर रख देता। नहीं खाना तो नहीं खाना। माँ की वह बातें और मनोहार आज उसे रह रह कर याद आ रही हैं। पता ही नहीं चला कि बीतते समय के साथ साथ बचपन के उस जिद्दी बच्चे की सारी जिदें कब और कहाँ तिरोहित हो गईं। उसके स्वभाव में कब और कैसे परिवर्तन हो गया वह स्वयं भी न जान सका। विवाह हुआ, पत्नी आई, अच्छे पद पर, सरकारी नौकरी तो उसकी पढ़ाई पूरी करते ही लग गई थी। विवाह के बाद 2 पुत्र और 2 ही पुत्रियां भी हो गईं। पुत्रियों के विवाह के बाद एक एक करके दोनों पुत्रों के विवाह भी हो गए। समय अपनी द्रुतगति से भागता रहा। जीवन में सब कुछ उसकी सोच से भी अधिक मिला। समय किसी के रोके नहीं रुकता, अपनी गति से निरंतर प्रवाहमान रहता ही है। जाने कब सारा जीवन बीत गया। पुत्र और पुत्रवधुएं अपनी अपनी दिनचर्या, नौकरी और शेष बचे समय में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों में व्यस्त हो गए। विभू 60 वर्ष पूरे होते ही सेवानिवृत्त हो गया। कहते हैं कि बचपन में मिले संस्कार मनुष्य को ताउम्र प्रभावित करते हैं। विभू सोचता कि संसार के सभी प्राणी उसी की तरह निष्कपट और मानवीय गुणों से पूर्ण हैं। बचपन से ही पिताजी ने उसे मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सा पश्यति का पाठ पढ़ाया था, जो आज भी उसकी रग रग में समाया हुआ है। यही कारण रहा कि वह अपने आप को दुनियादारी में उस तरह नहीं रंग पाया जिस तरह अधिकांश प्राणी अपने मैं के अहंकार में डूबे रहते हैं, या फिर धन कमाने की लालसा में सारे नैतिक आचरणों को ताक पर रख देते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद कुछ दिन तो ठीक तरह से बीते, पर शीघ्र ही उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। विभू सेवानिवृत्त क्या हुआ, घर परिवार के लोगों के व्यवहार में उसके प्रति अकल्पनीय बदलाव नजर आने लगा। जहां विभू की सलाह के बिना कोई एक कदम भी नहीं चलता था, वहीं अब उसे नज़रअंदाज किया जाने लगा। जैसे सेवानिवृत्त होते ही उसके अंदर की सारी योग्यताएँ समाप्त हो गई हों। घर परिवार वालों की नज़र में अब उसकी कीमत एक ढेला बराबर भी न बची रह गई हो। जैसे सारी पढ़ाई लिखाई और पद प्रतिष्ठा जैसे सेवानिवृत्त होते ही समाप्त हो जाती हो। उसे लगने लगा जैसे सेवानिवृत्ति कोई ऐसी जादुई छड़ी हो जिसके मिलते ही मनुष्य अपनी सारी पढ़ाई लिखाई, विद्वता और चतुराई भूलकर अनपढ़ सरीखा हो जाता हो, या उसके अंदर किसी उचित अनुचित और दुनियादारी का ज्ञान ही शेष न रहता हो। घर वालों के व्यवहार से उसे कदम कदम पर महसूस होने लगा जैसे अब वह घर वालों के लिए निरा बोझ बनकर रह गया है, या कि एक ऐसा चौकीदार जिसकी उपस्थिति घर परिवार को सुरक्षा तो प्रदान करती है पर उसका स्वयं का अस्तित्व किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। उसकी बातों का जैसे कोई महत्व ही न हो। अब घर परिवार में अब उसकी बात सुनने के लिए किसी के भी पास समय नहीं है। किसी भी बात के बारे में जब वह अपने पुत्र या पुत्रवधु से कोई बात पूछना चाहता है तो दोनों में से कोई ही उत्तर नहीं देता, बस चुप लगा जाते हैं जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। सूर्य के आसमान में बहुत ऊपर तक चढ़ आने तक और शाम को सूर्यास्त के समय तक बहू को रोजाना सोता देखकर एक दिन विभू ने उसे समझाना चाहा था। बेटा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना इंद्र के भी वैभव को नष्ट कर देता है, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। उसने सोचा था कि उसकी बात से वह अपनी आदत में सुधार

कर लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अपितु उसकी बात का उस पर उल्टा ही असर हुआ। सुनकर वह खीज उठी। सब बेकार की बातें हैं पापा जी, कुछ नहीं होता, सुनकर चुप रह गया था वह। घर से बाहर कहीं भी जाने से पहले अब न बहू और न बेटा ही कोई भी उसे बताकर जाने की जरूरत महसूस नहीं करते। बहू हो या बेटा, जिसका जहाँ जाने का मन करता है वे चुपचाप वहाँ के लिए चल देते हैं, जबकि वह आज भी घर से बाहर जहाँ भी जाता है सबको कई कई बार बता कर जाता है। विभू को लगने लगा है कि अब किसी को उसकी उस तरह परवाह नहीं रह गई है जैसी उस समय होती थी जब वह नौकरी पर था। अब तो लगता है जैसे वह बिना वेतन का चौकीदार बनकर रह गया है, जिसे घर के मालिक के द्वारा कुछ भी बताए जाने की जरूरत नहीं होती। बेटा अपनी पत्नी के इंद्रजाल में सम्मोहित उचित अनुचित में भेद कर पाने की समझ खो चुका है। उसकी पत्नी अब रसोई घर में झांक कर भी नहीं देखती। वही सुबह नाश्ते से लेकर दोपहर और रात का खाना बनाने तक का सारा काम स्वयं ही करता है, यानी अपनी पत्नी की तीमारदारी में ही लगा रहता है। जबकि वृद्ध माता पिता ने सुबह से अभी तक कुछ खाया है या नहीं यह पूछने की भी उसे फुर्सत नहीं मिलती, और उसकी पत्नी को अपने सिवा पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी में कमियां ही कमियां नजर आती हैं, विशेषकर अपनी ससुराल पक्ष के प्रत्येक प्राणी में। अपनी सास को तो वह फूटी आंख नहीं देखना चाहती, भले ही अपने वैवाहिक जीवन के इतने वर्षों में कभी अपने सास ससुर को दो समय का भोजन बनाकर न दिया हो, पर मैं तो इस घर में कामों में खटते खटते थक गई का राग कभी भी अलापने लग जाती है। पापा जी, पापा जी, किस सोच में खोए हुए हैं आप? चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। पुत्रवधू की आवाज़ से विभू की सोच भंग हुई तो विभू ने प्रश्नवाचक दृष्टि से पुत्रवधू के चेहरे की ओर देखा। कहाँ जाना है बेटी? अरे आप पहले तैयार तो हो जाइए, अभी बताती हूँ कहाँ जाना है, कहकर लबड़ दबड़ करते हुए वह स्वयं भी चेंज करने लग गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि उससे बिना पूछे या बिना बताए कोई कार्यक्रम बना लिया गया हो। शायद सेवानिवृत्त आदमी, चाहे वह घर का मुखिया ही क्यों न हो, उससे किसी को किसी भी सलाह की जरूरत नहीं होती। इसलिए पुत्रवधू की बात सुनकर वह असहज नहीं हुआ, बल्कि यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि अब उसे ऐसी बातों में किसी मान अपमान की अनुभूति नहीं होती। अब न जाने कितनी बार ऐसा होता रहा है कि पुत्र पुत्रवधू का कहीं भी जाने का कार्यक्रम अचानक से तय हो जाता है और फिर ठीक ऐन वक्त पर विभू को बताया जाता है कि चलो तैयार हो जाओ, उस जगह चलना है। शुरू शुरू में बच्चों का यह व्यवहार विभू को बहुत ही अटपटा सा लगता था, इतना कि विभू झिझुला उठता था। क्यों बेटा, हर बार आप लोगों के कहीं जाने के सारे कार्यक्रम अचानक ही बनते हैं क्या? और उस झुंझलाहट में उसे याद आते अपने पुराने दिन। दफ्तर से छुट्टी लेकर कभी एक दिन के लिए भी कहीं जाना होता था तो एक महीने पहले से कार्यक्रम निर्धारित कर लिया जाता था। घर में छोटे बड़े सभी की जानकारी में भी यह बात डाल दी जाती थी कि एक महीने बाद इस तारीख में कहीं जाना है, किस समय जाना है और किस साधन से जाना है, आदि आदि सारी सूचनाएँ पहले ही तय करके सबको बता दी जाती थी। किंतु देखते ही देखते अब सब कुछ कितना बदल गया है। बच्चों की यह हालत देख देख कर विभू कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाता है और अपने पुराने समय के उदाहरण दे देकर बच्चों को समझाने का प्रयास करता कि बेटा घर से बाहर कहीं भी जाओ, कम से कम घर वालों को तो पहले से बता दिया करो और कुछ दिन पहले तो पूरी तैयारी कर ही लिया करो। किंतु बच्चों के अजीब अजीब से तर्कपूर्ण उत्तर सुनकर वह निरुत्तर हो जाता है। हार कर धीरे धीरे उसने भी अपने आप को ही समझा लिया है। अब उसे बच्चों का कोई व्यवहार बुरा नहीं लगता, न उसका बिना बताए कहीं जाना और न कोई अन्य व्यवहार ही, या कहिए कि समय ने उसे बदले हुए जमाने के साथ साथ चलने का मंत्र दे दिया है। गीता के उपदेशों के अनुसार चलते हुए सांसारिक प्रपंचों को देखते हुए भी न देखता सा दूर खड़े एक दृष्टा के रूप में निहारता रहता है। जीवन की पहेली को अब विभू ने अपने ही तरीके से हल करने का तरीका खोज लिया है। उसे लगता है कि इस उम्र तक आते आते धन पद और मान जैसे शब्द अपनी सार्थकता खो चुकते हैं। अब उसे इन लोगों पर दया आने लगी है जो सांसारिकता की आपाधापी में इतने लिप्त नजर आते हैं कि अपने धन पद और मान के आगे उनको दूसरे सभी लोग तुच्छ नजर आते हैं। जबकि प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी समय नहीं गुजरा है, जब कोविड-19 ने धन और पद जैसी चीज़ों को तुच्छ ही नहीं निरर्थक सिद्ध कर दिया था।
बच्चों के विविध प्रश्न

0: और शिकायतें अब विभू को विचलित नहीं करती। पुत्र वधुओं की यह शिकायत कि पापा जी आप किसी से कुछ कहते क्यों नहीं, या कि पापा जी आप हमेशा दूसरों का ही पक्ष क्यों लेते हैं, हमारे पक्ष में नहीं बोलते, सुनकर वह धीरे से बस इतना ही कहता है कि बेटा मैं केवल सही बात का पक्ष लेता हूँ, अपने और पराए का ध्यान रखकर नहीं। पर विभू यह भी जानता है कि उसके उत्तर से बच्चों को प्रसन्नता नहीं होती, लेकिन अब इस बात का भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह दार्शनिक बना अपने आप में ही डूबा रहता है। कोई मान अपमान प्रशंसा या बुराई कुछ भी तो उसे प्रभावित नहीं करते। कितना बदल गया है विभू, वह स्वयं ही सोच सोचकर आश्चर्यचकित होता है। बावजूद इस सब के विभू के हृदय में आजकल एक हलचल सी मची हुई है। एक अंतःस्फुरण उसे बार बार स्मरण कराने लगता है कि वह अपने जीवन का असफल किरदार तो कभी न था और न अब हो सकता है। उसने अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ से वह सब प्राप्त किया है जिसे आज की पीढ़ी लाख प्रयासों में भी प्राप्त नहीं कर सकती। फिर क्यों निराश हो जाए वह अपने आप से। घर से बाहर आज भी उसके अनेक प्रशंसक हैं और उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं और उसका भरपूर आदर करते हैं। कौरवों के रचे चक्रव्यूह को देखकर क्या अभिमन्यु घबराया था? नहीं, मरकर भी वह कौरवों से जीत गया। विभू भी अपने जीवन के इस चक्रव्यूह से नहीं घबराएगा। जीवन में ऐसे क्षणों का सामना करने के लिए वह स्वयं को तो मजबूत बनाएगा ही, औरों को भी प्रेरित करेगा। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के अनुभवों से सीख लेकर ही लाभान्वित हो सकती है, उनकी अवहेलना करके नहीं। दूसरे दिन सुबह को विभू तैयार होकर घर से निकल पड़ा, जैसे सज धरकर कभी अपने दफ्तर के लिए जाता था। आज उसके चेहरे पर अलग ही दीप्ति थी और आगे बढ़ते हर कदम में एक आत्मविश्वास। वह अपने घर परिवार के सीमित दायरे को तोड़कर समस्त समाज के हित के लिए, लोगों के हृदय में चेतना का संचार करने के लिए आगे बढ़ रहा था। विभू समझ चुका था कि सीमाएं हम स्वयं बनाते हैं। प्रकृति एवं समाज तो खुला है, सीमाएं तोड़कर ही हम स्वयं को खोल पाते हैं, और यह तब होता है जब हम देना शुरू करते हैं। देना धन का ही नहीं, देना विचार सुझाव भी हो सकता है, सेवा में भी हो सकता है। विभू आज देने के सुख की अनुभूति के लिए निकल रहा है।
1: अभी आप सुन रहे थे कथाक्रम में कहानी एक नई सुबह। कहानीकार थे डॉक्टर दिनेश पाठक शशि, प्रस्तुति ओपी सिंह की थी। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए लखनऊ और रामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मुमताज अली का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। लखनऊ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ा। लखनऊ में यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ एक रोजगार योजना से कहीं अधिक है। यह एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य पहली नौकरी में प्रवेश करने वाले युवाओं की आकांक्षाओं को मजबूत करना और उद्योग व कार्यबल के बीच एक मजबूत सेतु का निर्माण करना है।
2: हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है। हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से EPFO की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया। पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया। लाखों नए

0: कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया।
1: लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र अब क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 जून 2026 को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में की। इस अवसर पर भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज लखनऊ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। यह विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो काम पिछले 65 वर्षों में नहीं हो पाया उसे बीते एक दशक में पूरा करने का प्रयास किया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में आधुनिक मौसम उपकरणों की स्थापना से अब सटीक और समय पर पूर्वानुमान लगाना संभव हो सकेगा। योजना भवन लखनऊ में 25 जून 2026 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हाई लेवल समीक्षा बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं, चना, मसूर जैसी फसलों की एमएसपी पर खरीद अवधि 24 जून से 8 जुलाई 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी का पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नए चरण के तहत यूपी के लिए 6,18,482 पक्के मकानों की स्वीकृति का अनुमोदन पत्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया। केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री रोनीत सिंह बिट्टू 1 जुलाई 2026 को लखनऊ स्थित अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन RDSO पहुंचे। उन्होंने जानकारी दी कि स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच अब भारतीय रेलवे के 3,500 किलोमीटर से अधिक नेटवर्क पर तैनात हो चुका है। यह प्रणाली ट्रेन की टक्कर रोकने और यात्री सुरक्षा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 4 जुलाई 2026 को प्रथम लखनऊ आगमन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंह, लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित कैबिनेट मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और विधायकों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय तक निकली अभिनंदन यात्रा में 42 स्थानों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन श्री नवीन ने 5 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के सहयोगी दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। नितिन नवीन ने दावा किया कि 2027 में प्रचंड बहुमत से लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून 2026 को लखनऊ के विभिन्न स्थानों पर योग अभ्यास किया गया। योग अभ्यास कार्यक्रमों में अधिकारियों, कर्मचारियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और समाज के संभ्रांत नागरिकों के साथ गणमान्य लोगों ने भी भाग लिया। 22 जून 2026 को लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में एक व्यवसायिक इमारत में आग लगने से 15 लोगों की जान चली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विभिन्न नेताओं ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद घायलों से अस्पताल में जाकर मुलाकात। मामले की जाँच के लिए गठित 2 सदस्यीय विशेष जाँच दल SIT ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। यह जांच रिपोर्ट जल्दी मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और ADG जोन लखनऊ प्रवीण कुमार को सौंपी थी। 23 जून 2026 को दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कारों का वितरण किया। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में लखनऊ के प्रसिद्ध रंगकर्मी डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी भी शामिल थे। लखनऊ के कलाकार को पद्म पुरस्कार मिलने पर शहरवासियों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। पूरे विश्व में ताजियादारी और अदादारी के लिए मशहूर लखनऊ में मुहर्रम का महीना शोक के साथ मनाया जा रहा है। इमाम बारगाहों, इमामबाड़ों और घरों में मजलिसों का दौर जारी है। 26 जून 2026 यानी 10 मुहर्रम को ताजियों को जुलूस की शक्ल में करबला तक ले जाकर दफन किया गया। पहली मुहर्रम को शाही दरी का जुलूस अपने रवायती अंदाज में निकला। 7 मुहर्रम को मेहदी और 8 मुहर्रम को अलम फातह अफराद के बाद 9 मुहर्रम को अलम शब आशूर का जुलूस गमगीन माहौल में निकाला गया।
2: लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शन्नू खान का।
3: रामपुर में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं नकल विहीन वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा जनपद के केंद्रों पर शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप कड़ी सुरक्षा एवं प्रशासनिक निगरानी के बीच आयोजित कराई गई। परीक्षा में 92% उपस्थिति दर्ज हुई। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई थी। सभी अधिकारियों ने अपने दायित्वों का पूरी सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया, जिससे परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। जिलाधिकारी अजय द्विवेदी ने स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि बेहतर जीवन जीने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, बैंकिंग, डिजिटल सेवाओं तथा दैनिक आवश्यकताओं को सहज रूप से पूरा

0: करने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं व्यक्तित्व निर्माण का आधार है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों का वातावरण बच्चों के लिए आकर्षक एवं प्रेरणादायी होना चाहिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी ने मिशन कायाकल्प के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम प्रधानों तथा नामांकन अभियान में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। रामपुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को एक अनुरोध पत्र सौंपा। इस अवसर पर संगठन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश अग्रवाल ने कहा कि PPE मॉडल पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए 100 बीघा भूमि ग्राम जगतपुर व ग्राम बेनजीर में अधिग्रहण की कार्रवाई की गई है। कॉलेज स्वीकृत हो चुका है, लेकिन भूमि अधिग्रहण कार्रवाई पूर्ण न होने से मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं हो पा रहा है। मेडिकल कॉलेज शुरू न होने से आम जनता समय से बेहतर इलाज न मिल पाने से परेशान है। संगठन ने मांग की है कि भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई जल्द पूरी होनी चाहिए। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जनपद योग में दिखाई दिया। जिला प्रशासन एवं आयुष विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पनवड़िया स्थित सांस्कृतिक सद्भावना मंडप में जनपद स्तरीय भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, विद्यार्थियों एवं आमजन की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही। योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में सभी प्रतिभागियों ने कॉमन योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत विभिन्न योगासनों, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास किया। मुख्य अतिथि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज विश्व के अनेक देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत की प्राचीन योग, आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा परंपरा को विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करने में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। योग हमारी हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो आज पूरे विश्व को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रहा है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र कुमार मीणा ने तहसील सदर के परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में आए लोगों को पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मां के सम्मान में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए तथा उसके वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल एवं संरक्षण भी सुनिश्चित करे।
1: जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है एक पेड़ मां के नाम, उसको जरूर अपनाएं और सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कम से कम एक पेड़ जरूर अपने संरक्षण में उसको बड़ा करें।
0: रामपुर में पल्स पोलियो अभियान का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक सिंह द्वारा किया गया। डॉक्टर दीपक सिंह द्वारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाबाद गेट स्थित पोलियो बूथ पर फीता काटकर एवं बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाकर अभियान की शुरुआत की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस मौके पर कहा कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक अभिभावक जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आबो हवा। आज का विषय है बड़े भोजनालयों की किचन का कचरा निस्तारण। इस विषय पर वार्ताकार हैं डॉक्टर महावीर प्रसाद गुप्ता।
4: किसी पर्यावरणविद ने सही ही कहा है कि मैन इज ए वेस्टफुल क्रीचर इन नेचर, जिसका मतलब है प्रकृति में मनुष्य व्यर्थता से परिपूर्ण प्राणी है। वनस्पतियों तथा जीवधारियों के उत्पाद तो किसी न किसी रूप में मानव अथवा अन्य जीवधारियों के लिए उपयोगी हैं, परंतु मनुष्य द्वारा उत्पादित एवं उत्सर्जित किसी भी भौतिक पदार्थ का जीवों व वनस्पतियों के लिए कोई उपयोग नहीं है। सजीव जगत में मनुष्य का स्थान उपभोक्ता के रूप में ही बना हुआ है, जो खाता है और व्यर्थ पदार्थ अर्थात कचरे का उत्पादन करता है। घरों, भोजनालयों, चिकित्सालयों, कारखानों, अन्य प्रतिष्ठानों अथवा जीवधारियों द्वारा दैनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादित अनुपयोगी पदार्थ कचरे की श्रेणी में आता है। कचरा 2 प्रकार का होता है, एक तो आसानी से व जल्दी अपघटित हो जाने वाला और दूसरी श्रेणी में वे पदार्थ आते हैं जो देरी से अपघटित होते हैं अथवा अपघटित नहीं होते। कचरा कोई सा भी

हो, यदि उसका समय पर उचित निस्तारण नहीं किया जाता तो वह हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। रोटी अर्थात भोजन हमारे जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। जो लोग अपने परिवारों के साथ रहते हैं, उनका भोजन तो भारतीय परंपरा अनुसार परिवार की स्त्री सदस्य रसोई घर में बना लेती हैं। परंतु जो लोग पढ़ने, मजदूरी करने या नौकरी पेशे के कारण अकेले बाहर रहते हैं, उन्हें खाने के लिए होटलों या मैसों पर निर्भर रहना पड़ता है। विद्यार्थियों, कर्मचारियों तथा मुसाफिरों को भोजन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छोटे बड़े कई मैस व ढाबे उपलब्ध हैं। इन मैसों से प्रतिदिन ढेर सारी सब्जियां, रोटियां, चावल, प्लास्टिक के आइटम्स व बर्तन साफ करने का कचरा आदि कूड़े के रूप में फेंका जाता है। जहाँ कई बार घरों के कचरे के निस्तारण की ही समस्या आ जाती है, होटलों, मैसों व कचरे के निस्तारण की बड़ी समस्या है। नगर निगम के कर्मचारी घर घर कचरा लेने आते हैं, आप उनसे बात करके मैस का कचरा उनके सुपुर्द करने की व्यवस्था कर सकते हैं। इधर उधर फेंका हुआ कचरा उड़कर वातावरण को दूषित तो करता ही है, साथ ही कई पशु इनमें मुंह मारते रहते हैं। झूठे भोजन के साथ साथ प्लास्टिक के बर्तन व थैलियां भी उनके शरीर में चली जाती हैं, जो उनकी मौत का कारण बन जाती हैं। प्रशासन एवं वैज्ञानिकों के लिए ये एक चुनौती है कि अनुसंधानों के माध्यम से कोई ऐसी व्यवस्था तलाशी जाए जो इस कचरे से ऊर्जा उत्पत्ति अथवा कोई ऐसी ही रचनात्मक विकल्प की तलाश करें। होटल व मैसों के व्यर्थ पदार्थों के निस्तारण के लिए स्थानीय प्रशासन को तो सजगता बरतनी ही है, साथ ही मैस व होटल प्रबंधकों को भी उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वे अपना नैतिक दायित्व समझते हुए व्यर्थ पदार्थों का उचित निस्तारण करावें और अपने नगर के वातावरण को दूषित होने से बचावें। मेरा विश्वास है कि होटल के संचालक और मैसों के संचालक भविष्य में ऐसी योजना बनाएंगे जिससे उनके द्वारा जो कचरा है उसका सही निस्तारण हो सके तथा नगर शुद्धता की छाया में सांस ले सके।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबो हवा। आज का विषय था बड़े भोजनालयों की किचन का कचरा निस्तारण। इस विषय पर वार्ताकार थे डॉक्टर महावीर प्रसाद गुप्ता। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गैर फिल्मी गजलों का। ये कार्यक्रम पहली प्रस्तुति आबिदा परवीन के स्वर में।

हमको या दर दर फिराया यार ने। अभी आपने सुनी ये प्रस्तुति आबिदा परवीन के स्वर में, और आइए सुनते हैं भूपेंद्र के स्वर में ये अगली रचना। आज ले रहे हैं आनंद FM 102.2 MHz पर आप आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से गैर फिल्मी गजलों का। आइए सुनते हैं भूपेंद्र से ये अगली गजल।

चित्रा सिंह और भूपेंद्र सिंह को अभी आपने सुना इस प्रस्तुति में, और आइए सुनते हैं जगजीत सिंह के स्वर में ये अगली गजल।

राजेश रेड्डी की रचना को अभी आपने सुना जगजीत सिंह के स्वर में, और आइए सुनते हैं अगली गजल, गालिब की रचना और आवाज इसमें मानिक आदित्य की।

0: मिर्ज़ा गालिब की इस गज़ल को आवाज़ दे रहे थे मानिक आदित्य।
1: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन, इजी एक्सेस।

0: and seamless travel, Noida International Airport, where dreams take off.
1: और आइए सुनते हैं फिल्म संगीत FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में आज यानी गुरुवार 9 को दिन में 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है युवतियों में व्यक्तिगत साफ सफाई, शारीरिक बदलाव एवं मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सारिका गौतम, वरिष्ठ मनोचिकित्सक आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके या मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में युवतियों में व्यक्तिगत साफ सफाई, शारीरिक बदलाव एवं मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है युवतियों में व्यक्तिगत साफ सफाई, शारीरिक बदलाव एवं मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में। श्रोताओं, यदि आप व्यक्तिगत साफ सफाई, शारीरिक एवं मानसिक बदलाव जैसे नियमित स्नान व वस्त्रों का चयन, मासिक धर्म की स्वच्छता, हार्मोनल परिवर्तन, शारीरिक विकास, वजन का बढ़ना, तनाव व चिंता, स्वच्छता का मानसिक प्रभाव, घबराहट के लक्षण जैसे लक्षणों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो पूछिए सवाल डॉक्टर सारिका गौतम से, वरिष्ठ मनोचिकित्सक आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। श्रोताओं, ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन यानी कि आज 9 जुलाई समय दिन में 12 बजे से। हमारा टेलीफोन नंबर रहेगा 0565-2530-135, व्हाट्सएप नंबर 9412225575। सूचना समाप्त हुई। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये गीत फिल्म पुकार से। आवाज दे रहे हैं गीत को कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण, गीत मजू सुल्तानपुरी का, संगीत AR रहमान का।

गीत मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत एआर रहमान का। फिल्म पुकार से अभी आपने ये गीत सुना और अपनी आवाज से सजा रहे थे इस गीत को स्वर्णलता, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। और कार्यक्रम का लेते हैं अगला गीत फिल्म काइट से, आवाज इस गीत में KK की।

अभी आपने सुना फिल्म काइट में केके को, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत जिसे लिया हमने फिल्म दयावान से। आवाज इस गीत में अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की, गीत आजिज कैसी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आजिज़ कैसी के गीत को संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और आवाज़ दे रहे थे गीत को अनुराधा पौडवाल, पंकज उदास। फिल्म दयावान से लिया था ये गीत। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसे लिया फिल्म लम्हे से। आवाज़ है ए हरिहरन और लता मंगेशकर की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत

लम्हे में आनंद बख्शी के गीत को संगीत दे रहे थे शिव हरि। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का ये गीत फिल्म लक्ष्य से, आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की।

गीत जावेद अख्तर का संगीत, शंकर एहसान लॉय का आवाज दे रहे थे गीत को अलका याग्निक, उदित नारायण फिल्म लक्ष्य के लिए। प्रातः के 10:30 होने को है। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में आज दिन में 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है युवतियों में व्यक्तिगत साफ सफाई, शारीरिक बदलाव एवं मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सारिका गौतम, वरिष्ठ मनोचिकित्सक आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-253013 पर फोन करके या मोबाइल नंबर 9412225 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में युवतियों में व्यक्तिगत साफ सफाई, शारीरिक बदलाव एवं मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय युवतियों में व्यक्तिगत साफ सफाई, शारीरिक बदलाव एवं मानसिक स्वास्थ्य। श्रोताओं, यदि आप व्यक्तिगत साफ सफाई, शारीरिक एवं मानसिक बदलाव जैसे नियमित स्नान, वस्त्रों का चयन, मासिक धर्म की स्वच्छता, हार्मोनल परिवर्तन, शारीरिक विकास, वजन का बढ़ना, तनाव व चिंता, स्वच्छता का मानसिक प्रभाव, घबराहट के लक्षण जैसे लक्षणों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो पूछिए सवाल डॉक्टर सारिका गौतम, वरिष्ठ मनोचिकित्सक आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओं, ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन यानी कि आज 9 जुलाई है, दिन में 12 बजे से ये कार्यक्रम प्रसारित होगा। हमारा टेलीफोन नंबर एक बार फिर से आप नोट करें 0565-253013, व्हाट्सएप नंबर 9412225। सूचना समाप्त हुई।

गुलजार के गीत को संगीत दिया AR रहमान ने। आवाज सजा रहे थे गीत को श्रेया घोषाल, मोहित चौहान। फिल्म जब तक है जहां, अभी आपने सुना इस फिल्म से ये गीत। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म खाकी से ये गीत। गीत समीर का, संगीत राम संपत का, आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की।

गीत समीर का, संगीत इस फिल्म में था राम संपत का। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म जब वी मेट से, आवाज़ इस गीत में मीका सिंह की।

तमिल का संगीत प्रीतम का, आवाज दे रहे थे गीत को मीका सिंह और साथी फिल्म जब वी मीट से था ये नगमा। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत जिसे लिया फिल्म रंग दे बसंती से। आवाज इस गीत में नरेश अय्यर और मोहम्मद असलम की।

नरेश अय्यर, मोहम्मद असलम और साथियों को सुना आपने फिल्म रंग दे बसंती में। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत FM 102.2 MHz पर। आइए सुने जिंदगी न मिलेगी दोबारा फिल्म से ये गीत, आवाज़ें फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन, अभय देओल और साथियों की।

ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर और अभय देओल को साथियों को अभी सुना फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जी हाँ, इस फिल्म से अभी आपने सुना ये गीत और लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मस्ती से। गीत समीर का, संगीत आनंद राज आनंद का।

को स्वर दे रहे थे आनंद राज आनंद। फिल्म मस्ती के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम अब संपन्न होता है। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में आज दिन में 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है युवतियों में व्यक्तिगत साफ सफाई, शारीरिक बदलाव एवं मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञों की डॉक्टर सारिका गौतम, वरिष्ठ मनोचिकित्सक आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530135 पर फोन करके या मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में युवतियों में व्यक्तिगत साफ सफाई, शारीरिक बदलाव एवं मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है युवतियों में व्यक्तिगत साफ सफाई, शारीरिक बदलाव एवं मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में। श्रोताओं, यदि आप व्यक्तिगत साफ सफाई, शारीरिक एवं मानसिक बदलाव जैसे नियमित स्नान, वस्त्रों का चयन, मासिक धर्म की स्वच्छता, हार्मोनल परिवर्तन, शारीरिक विकास, वजन का बढ़ना, तनाव व चिंता, स्वच्छता का मानसिक प्रभाव, घबराहट जैसे लक्षणों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो पूछिए सवाल डॉक्टर सारिका गौतम से, मनोचिकित्सक आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 12 बजे से यानी कि आज। मोबाइल नंबर एक बार फिर से आप नोट करें 0565-9412225575। हमारा टेलीफोन नंबर 0565-2530135। सूचना समाप्त हुई।

0: लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। कार्यक्रम लेके आ रहे हैं आपके बीच देवराज कृष्ण दीक्षित।
1: हेलो आकाशवाणी, हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हां श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 एसटीडी कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो आकाशवाणी
3: दीक्षित जी, नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका।
3: धन्यवाद सर। सर मैं आपका नियमित श्रोता, ब्रजी रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह, ग्राम नगला राणा, सिहोरा मथुरा, उत्तर प्रदेश से मुखातिब हूँ।
2: जी चौधरी साहब, कैसे हालचाल हैं? अब तो मौसम भी अच्छा हो गया है
3: सर, इस बारिश से जलते हुए बदन को शीतलता प्राप्त हुई।

0: यानी शांति मिली है।
1: जी जी बिल्कुल। और खेती बाड़ी के कार्य शुरू हो गए हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, आज का किसान जो है बारिश पे ही निर्भर है सर, ये बारिश हो जाए तो धान की रोपाई भी हो जाए।
1: सही कहा आपने। और कुछ कहना चाहेंगे कार्यक्रम में?
0: आदरणीय उद्घोषक महोदय, मैं अपनी ओर से आपको याद दिलाना चाहूँगा
1: जी,
0: 31 जुलाई को मोहम्मद रफी साहब की पूर्ण तिथि है।
1: जी बिल्कुल।
0: संगीत प्रेमी श्रोताओं के लिए रफी साहब पर केंद्रित कोई कार्यक्रम जरूर पेश करें आप।
1: बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे श्रोताओं की फरमाइश पर खरे उतरने की, आपको ये कार्यक्रम सुनने को मिले, हम ऐसा प्रयास करेंगे।
0: एक बात और कहना चाहूँगा अपने उन श्रोताओं के लिए, उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा
1: जी,
0: इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता बोलते ही जाते हैं, प्रोग्राम का वक्त जाया करते हैं, कृपया उतना ही बोलें जितना उन्हें बोलना है,
1: क्योंकि इस समय हमारे बहुत सारे श्रोता लाइन पर होते हैं तो कम समय में अपनी बात कहें वो ज्यादा बेहतर है।
0: तो महोदय, मौसम के अनुकूल आज मेरी पसंद रहेगी फिल्म का नाम है फागुन।
1: जी,
0: आशा जी का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत गीत है जिसके बोल हैं, बरसोरे वेरी बदरवा बरसोरे।
1: चौधरी साहब, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर, यहाँ मैं अपने एक श्रोता साथी का नाम लेना चाहूँगा अगर आप इजाजत हो।
1: जी
0: तो।
1: जी बिल्कुल।
0: मोहम्मद रईस अब्बासी साहब हैं ऊपरकोट चौखुंटी बुलंदशहर से, ये गाना उनके लिए डेडिकेट कर रहा हूँ मैं।
1: सुनिए अपनी फरमाइश, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी
1: महोदय, सादर नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी हृदय से धन्यवाद। मानवर में आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो से होता है मित्र।

0: शारदा प्रसाद प्रजापति से राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। मानवर हमारे मथुरा वृंदावन में इस वक्त बारिश का माहौल है, रिमझिम बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है और मौसम बहुत ही खूबसूरत सुहाना हो गया है। तापमान गिरकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है।
1: जी प्रजापति जी, बिल्कुल मानसून इस समय सक्रिय है और मौसम सुहावना हो गया है, सभी को गर्मी से राहत मिली है।
0: जी निसंदेह गर्मी से काफी राहत मिल चुकी है।
1: बताइए आज के कार्यक्रम में प्रजापति जी क्या सुनेंगे?
0: मानवर आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है लगान।
1: जी।
0: काले मेघा पानी तो बरसा, ये गीत सुनना चाहता हूँ मथुरा वृंदावन से।
1: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रजापति जी।
0: जी हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। सादर नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी नमस्कार जी।
0: नमस्कार।
1: और कैसे हैं आकाशवाणी टीम?
0: एकदम अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: हाँ सर, हम भी बढ़िया हैं।
0: शुभ नाम बता दीजिए अपना।
1: मैं सुरेश चंद शर्मा बोल रहा हूँ, सहरसे सैनी मोहल्ला।
0: शर्मा साहब, मौसम सुहाना हो गया है, अब तो मानसून आ गया है, बारिश हो रही है।
1: हाँ जी, रात को 3 बजे बरसात हुई थी शहर में भी।
0: जी जी,
1: अब भी बरसात हो रही है।
0: कैसा लग रहा है ये बारिश का मौसम?
1: बढ़िया लग रहा है, सुहाना मौसम है।
0: अच्छा, तो बताइए आज क्या फरमाइश रहेगी आपकी?
1: गदर फिल्म का गाना है, उड़ जा रे कारे को ले जा संदेश मेरा।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया।
1: श्री हरदास।
0: श्री हरदास।

0: हेलो आकाशवाणी
1: जी भैया नमस्कार।
0: नमस्कार भैया जी, क्या हाल चाल हैं?
1: बढ़िया है। योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: बारिश कैसी हो रही है बेमेतरा में?
1: 4 दिन तक लगातार बारिश हो रही है भैया, एकदम लबालब भर गए हैं खेत वगैरह सब।
0: जी जी, जिसका इंतजार था काफी दिनों से, अब वो घड़ी आ गई है।
1: जी,
0: खेती बाड़ी के काम शुरू हो गए?
1: शुरू हुआ ही था भैया, फिर लगातार बारिश शुरू हो गया ना, तो उसके बाद से थोड़ा सा रुका हुआ है काम।
0: अच्छा,
1: ज्यादा बारिश की वजह से।
0: जी जी
1: जी,
0: बताइए आज क्या फरमाइश रहेगी आपकी?
1: फिल्म का नाम है नमक हलाल।
0: जी,
1: और गीत के बोल है आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो।
0: जी जी, इस गीत के बहाने ये संदेश कि बरसात में अपना ध्यान रखें।
1: जी जी जी जी,
0: सावधानी पूर्वक चलें।
1: जी जी,
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार सर।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
0: मैं चंद्रपाल शर्मा बोल रहा हूँ, गांव पचावर से सर।
1: चंद्रपाल जी, कैसे हैं आप?
0: बहुत बढ़िया है, आप दोबारा बात हो रही है।
1: क्या करते हैं चंद्रपाल जी?
0: हम अपना ही काम करते हैं, खेती बाड़ी का किसान लोग हैं।
1: जी जी।
0: अब नहीं करते, पहले नौकरी की थी।
1: अच्छा, ये जो बारिश हो रही है इससे खेती को फायदा है ना?
0: इससे अब फायदा है, और आकाशवाणी टीम और आप सब बढ़िया
1: एकदम अच्छे हैं। आपके परिवार में कैसे हैं सब?
0: सब बढ़िया है, हमारे परिवार में जाते हम तो सब अच्छे हैं।
1: जी, क्या फरमाइश रहेगी आज आपकी?
0: गाना है, हम आपके हैं कौन, सामने समझी जी गा रही समझन है।
1: लीजिए, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार सर।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति थी देवराज कृष्ण दीक्षित की। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर।

9 जुलाई को 12 बजे से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है युवतियों में व्यक्तिगत साफ सफाई, शारीरिक बदलाव एवं मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सारिका गौतम, वरिष्ठ मनोचिकित्सक, आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-25-30-135 पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412-22-55-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में युवतियों में व्यक्तिगत साफ सफाई, शारीरिक बदलाव एवं मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है युवतियों में व्यक्तिगत साफ सफाई, शारीरिक बदलाव एवं मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में। श्रोताओं, यदि आप व्यक्तिगत साफ सफाई, शारीरिक एवं मानसिक बदलाव जैसे नियमित स्नान व वस्त्रों का चयन, मासिक धर्म की स्वच्छता, हार्मोनल परिवर्तन, शारीरिक विकास, वजन का बढ़ना, तनाव व चिंता, स्वच्छता का मानसिक प्रभाव, घबराहट के लक्षण जैसे लक्षणों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो पूछिए सवाल डॉक्टर सारिका गौतम से, वरिष्ठ मनोचिकित्सक, आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। श्रोताओं, ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार यानी कि आज 9 जुलाई 2026 को, समय दोपहर दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत के इस सफर में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र उषा पांडे। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम हर बार आपसे करते हैं चर्चा फिल्म संगीत के सफर में किसी न किसी विषय पर, तो आज का हमारा विषय है जो केवल किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी मानवता का विषय है। कहा भी गया है, भूख से बड़ी कोई पीड़ा नहीं, सम्मान से बड़ा कोई धन नहीं, जिस घर में मुस्कान बस जाए उससे सुंदर कोई जीवन नहीं। श्रोताओं, जब दुनिया का कोई भी व्यक्ति भूख, अभाव और बेवसी के जीवन बिताने के लिए मजबूर हो, तब विकास अधूरा रह जाता है। यही सोच, यही बात हमें जोड़ती है संयुक्त राष्ट्र के थर्ड यूनाइटेड नेशंस डिकेड फॉर द एराडिकेशन ऑफ पावर्टी 2018 से 2027 तक के इस विषय की ओर। इस विषय पर आज के इस विशेष कार्यक्रम में, यानी बातचीत में साथियों, हम जानेंगे कि यह दशक क्यों घोषित किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, दुनिया और भारत इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, और हम सब इसमें अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। और साथ में आपसे होती रहेगी छोटी छोटी विषय पर बातचीत, छोटी छोटी पंक्तियों के माध्यम से आपके और हमारे दिल की बात। जैसा कि किसी ने खूब कहा है कि ना कोई भूखा सोए, ना कोई आंसू बहाए, ऐसा सुंदर संसार हो, हर चेहरा मुस्कुराए, जहां मेहनत को मिले सम्मान, वहीं बसता है सच्चा इंसान। अब हम बात करेंगे दशक के बारे में कि दशक क्या है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साथियों 2018 से 2027 की अवधि को थर्ड यूनाइटेड नेशंस डिकेड फॉर द एराडिकेशन ऑफ पावर्टी, अर्थात गरीबी उन्मूलन के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया। इस दशक का उद्देश्य है दुनिया भर में गरीबी को समाप्त करने के प्रयासों को अधिक तेज करना, और अधिक तेज करना संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य, विशेषकर लक्ष्य संख्या एक यानी गरीबी का अंत यानी नो पावर्टी को प्राप्त करना है। इस दशक का संदेश है किसी को भी पीछा न छोड़ा जाए, क्योंकि जब तक समाज का सबसे कम

कमजोर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा तब तक वास्तविक विकास संभव नहीं होगा। चलो ऐसा दीप जलाएं, हर घर में खुशियां ले आएं, न भूखा बच्चा सोने पाए, हर आंगन मुस्कान से भर जाए, हर आंगन मुस्कान से भर जाए।

मेहनत को सम्मान मिले, सबको जीवन का अधिकार मिले, गरीबी केवल इतिहास में ही बनकर रह जाए, इतिहास और वर्तमान के पन्नों में अब केवल मुस्कान मिले। गरीबी केवल धन की कमी नहीं साथियों, गरीबी का अर्थ केवल आय का अभाव नहीं है, गरीबी का अर्थ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाना। हम जब किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है और धन की पूर्ति हमारी योग्यता पर निर्भर है, हमारी गुणवत्ता पर, हमारे जीवन शैली पर निर्भर है। उचित स्वास्थ्य सुविधाओं का न मिल पाना गरीबी के अंतर्गत आता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाना, पर्याप्त

अंतर्गत आता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाना, पर्याप्त भोजन और स्वच्छ पानी का अभाव, सम्मानजनक रोजगार न मिलना, सुरक्षित आवास और सामाजिक सुरक्षा का अभाव, ये सब गरीबी के अंतर्गत आते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र गरीबी को बहुआयामी चुनौती मानता है। जब कोई बच्चा केवल साथियों इसलिए विद्यालय नहीं जा पाता क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, तब केवल एक बच्चा नहीं बल्कि समाज का भविष्य प्रभावित होता है। जब किसी परिवार को उपचार नहीं मिल पाता, तब केवल बीमारी नहीं बढ़ती बल्कि असमानता भी बढ़ती है। इसीलिए गरीबी मिटाना केवल आर्थिक लक्ष्य नहीं बल्कि मानव गरिमा की रक्षा का संकल्प है। रोटी से बढ़कर सम्मान मिले, हर जीवन को पहचान मिले, ऐसा भारत, ऐसी दुनिया हो जहां सबको समान स्थान मिले, सबको समान स्थान मिले।

साथियों, आइए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिकताओं के बारे में कि उन्होंने इस विषय को लेके, ये विषय यानी गरीबी उन्मूलन के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र दशक, इस विषय पर प्राथमिकताएं क्या क्या हैं। प्राथमिकताएं हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, महिलाओं का सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल, टिकाऊ विकास, समान अवसर। और इसमें हमारे भारत की भूमिका है। भारत ने भी गरीबी कम करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, कौशल विकास अभियान, स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना। इन प्रयासों का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। साथियों, सरकारें अपनी भूमिका निभाती हैं, लेकिन समाज की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। भोजन की बर्बादी हम रोक सकते हैं, जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा में हम सहयोग कर सकते हैं, गरीब बच्चों का सम्मान कर सकते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई के संसाधन जुटा सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, कौशल विकास और स्वरोजगार को प्रोत्साहित कर सकते हैं, सामाजिक कार्यों में भागीदारी दे सकते हैं। याद रखिए, छोटे छोटे प्रयास से ही बड़े परिवर्तन की नींव बनती है, यानी एक सशक्त मजबूत नींव रखी जा सकती है। एक दीप अगर तुम जलाओ, एक दीप अगर मैं जलाऊं, मिलकर रोशन हो जाएगी राह, नई उम्मीदें फिर जगाऊं। हाथों में जब हाथ मिलेंगे, सपनों को फिर पंख मिलेंगे, गरीबी की हर बेड़ी टूटेगी जब मानव मानव से जुड़ेंगे। साथियों, महात्मा गांधी ने कहा था, पृथ्वी पर हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लालच के लिए नहीं। यदि संसाधनों को न्यायपूर्ण उपयोग हम करें, अवसर समान हो और समाज संवेदनशील बने, तो गरीबी को काफी हद तक समाप्त किया जा सकता है। प्रिय श्रोताओं, गरीबी किसी व्यक्ति की पहचान नहीं, बल्कि एक ऐसी चुनौती है जिसे मिलकर दूर किया जा सकता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाने का संकल्प लें, जहां कोई भूखा न सोए, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, कोई परिवार उपचार के अभाव में न रहे, हर व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। इसी शुभकामना के साथ आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

उम्मीद का सूरज हर दिल में जलाना होगा, नफरत नहीं प्रेम का दीप जलाना होगा। जब साथ चलेगा सारा संसार, तभी मिटेगा गरीबी का अंधियार। चलो मिलकर एक ऐसा कल बनाएं दोस्तों, हर चेहरे पर मुस्कान सजाएं दोस्तों। यही हो मानवता का सच्चा धर्म, सबको सम्मान और अवसर दिलाएं दोस्तों। इसी के साथ फिल्म संगीत का सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर। आज का विषय है युवतियों में व्यक्तिगत साफ सफाई, शारीरिक बदलाव एवं मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सारिका गौतम, वरिष्ठ मनोचिकित्सक, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स मथुरा।
1: सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपने मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर शिरादा वैली मथुरा।
2: श्रोताओ नमस्कार, एक बार पुनः आपके अपने कार्यक्रम जिसका नाम है आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे जो युवतियां जो थोड़ी सी बड़ी हो रही हैं परिवार में, हम सब जानते हैं, तो उनकी कुछ ऐसी शारीरिक बदलाव, कुछ मानसिक स्वास्थ्य और उनकी व्यक्तिगत साफ सफाई कितनी महत्वपूर्ण है उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके विकास के लिए और उनको आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जिन पर हम ध्यान नहीं देते लेकिन हमारे व्यक्तित्व विकास में उन चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपने भी देखा होगा कि हम भारतीय समाज में रह रहे हैं, घर परिवार अब छोटे हो रहे हैं। एक समय ऐसा था जब एक ही परिवार में 10-20 लोग रहते थे, कई पीढ़ियाँ रहती थी, तो बहुत सारी चीज़ें हम स्वाभाविक तौर पर बढ़ते बढ़ते सीख जाते थे। लेकिन अब वो मौके कम हो रहे हैं, छोटे परिवार हो रहे हैं, माँ बाप नौकरियों पर जा रहे हैं, तो बच्चा जिन परिस्थितियों में बड़ा हो रहा है, जिन परिस्थितियों से सीख रहा है, तो सीखने के मौके कहीं हम देखेंगे कि कम हो रहे हैं। तो उन कम होते हुए मौक़ों में हम कैसे तालमेल बिठाएं, क्योंकि कई बार छोटी सी नासमझी या जानकारी का अभाव हमारे लिए बड़ी समस्या हो सकता है। तो इन बिंदुओं पर आप अपने परिवार की जो बच्चियां हैं उनके संबंध में पूछ सकते हैं, कुछ समस्या, कुछ जानकारी, कुछ सुझाव अगर आपके साथ हैं तो शेयर कर

0: सकते हैं। दो टेलीफोन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिखिएगा। 2530-135 बेसिक नंबर है, और 565 मथुरा का कोड है, यानी जब आप लगाएंगे आजकल, क्योंकि मोबाइल से ही लगाना होता है, तो पूरा डायल करें 0565-2530135। एक व्हाट्सएप नंबर है 94-122-25-575, ये लाइन भी खुली हुई है। तो जब तक आपके सुझाव, कोई प्रश्न, कोई जानकारी मेरे तक चल करके आती है, मैं आज हमारे साथ डॉक्टर सारिका गौतम साहब हैं, वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं, आकाश एम्स हॉस्पिटल मथुरा में। मैडम, मैं आपका स्वागत करता हूँ, नमस्कार
1: थैंक यू सो मच। नमस्ते
0: जी।
1: सर।
0: तो समस्या तो मैं अपने श्रोताओं के साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन समस्या नहीं, ये आज का बड़ा मुद्दा है।
1: जी
0: घर परिवार में जो बच्चियां बड़ी हो रही हैं, तो निश्चित तौर पे मैं व्यक्तिगत साफ सफाई से चलना चाहूँगा। कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ बच्चियों को और परिवार को भी काउंसलिंग के तौर पे भी और उनको जानकारी के तौर पे भी उनको बताना है कि भाई ये चीज़ें बहुत स्वाभाविक हैं, सहज हैं और जीवन से जुड़ी हुई हैं, वहाँ आपको हिचक नहीं करनी है, शेयर करना है, जानकारी करनी है। तो थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या समस्याएं रहती हैं, उन पर कैसे हमें दो चार होना है बच्चियों के साथ।
1: थैंक यू। आपने एक बहुत ही बर्निंग इशू है, अगर
0: जी
1: आप
0: जी
1: हम आज
0: जी
1: के सोसाइटी में देखें तो, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, और आज से अगर 20 साल पहले की बात करें, तो जैसे आपने कहा कि संयुक्त परिवार होते थे, कोई ना कोई हमारे बड़ी बहन, बुआ, मौसी, कोई ना कोई वहाँ पे होता था बच्चियों को बताने के लिए। अभी चूंकि एकल परिवार हैं और पेरेंट्स भी कई बार अपने में बिजी होते हैं, या यूँ कहें कि हमारे समाज में एक शारीरिक बदलाव को लेके जो चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा हो नहीं रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक झिझक, जिसे हम शर्म कह देते हैं
0: जी
1: या अदब कह देते हैं, उसके चलते जैसे बच्चियों में शारीरिक बदलाव के साथ साथ मासिक धर्म का शुरू होना,
0: जी जी जी
1: ये एक बड़ी समस्या नहीं कहेंगे, लेकिन एक
0: नहीं,
1: मुद्दा जरूर
0: हाँ
1: है
0: हाँ जी
1: कि बच्चियों को पता नहीं होता। और आज के लिए प्यूबरिटी है, यूं कहें कि टीनेज थोड़ा जल्दी शुरू हो जा रहा है, कई बार 8 साल की बच्चियां, 9 साल की बच्चियों में ये
0: हाँ, जो जो
1: शुरू हो जा रहा
0: तेरह
1: है।
0: चौदह पंद्रह में
1: हाँ,
0: होता
1: होता
0: था,
1: था
0: वो
1: वो
0: दस
1: अभी
0: से पहले आ
1: दस
0: गया।
1: से पहले आ जा रहा है। ऐसे समय में बड़ा ये सोचने वाली बात है कि पेरेंट्स पहले से बच्चियों को तैयार रखें इस चीज के लिए, क्योंकि हम भी जब याद करते हैं अपना पहला मासिक धर्म, तो बड़ा वो अजीब और बड़ा डरा हुआ, सहमा हुआ एक एक्सपीरियंस होता है।
0: जी जी
1: लेकिन चूंकि हमारे घर में बहनें होती थी तो वो बता देती थी। अभी या तो बच्चे सिंगल हैं या लड़की एक ही है, तो वो किससे डिस्कशन करें।
0: जी
1: तो
0: जी
1: यहाँ परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि जैसे ही आपकी बच्ची 7, 7.5, 8 क्रॉस कर रही है, वहीं आप मासिक धर्म से जुड़ी हुई सारी चीजें उसको एक कहानी के तौर पे, या उसको
0: जी
1: अपने
0: जी
1: शारीरिक स्वास्थ्य के तौर पे उसको बताना शुरू करें। और आपको लग रहा है कि आप नहीं बता पा रहे हैं, या आपके पास वो स्टोरी टेलिंग का नहीं है कैपेसिटी,
0: जी
1: तो आप किसी गायनेक या किसी भी एक्सपर्ट से ले जाके उसका काउंसलिंग करवाएं। कई बार अचानक शुरू हो जाता है, पेरेंट्स को एक्सपेक्टेड नहीं होता कि इतनी जल्दी हो जाएगा। उस समय बच्चियों में वो एक डर का जो माहौल होता है, या वो बड़ी अजीब सा जो फील करती हैं, उसके लिए फिर वो कई बार ट्रॉमाटाइज हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता।
0: जी
1: तो
0: जी
1: ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी है कि बच्चियों को, या बच्चों को, दोनों ही जेंडर के बारे में मैं बोलूंगी, कि
0: जी
1: प्यूबर्टी का डिस्कशन एक अर्ली एज में शुरू कर देंगे तो वो उनके लिए बेहतर
0: जी
1: रहेगा।
0: मतलब एक शारीरिक, जब हम बड़े हो रहे हैं, शरीर भी बड़ा हो रहा है, हम उम्र से भी बड़े हो रहे हैं, अनुभव से भी हो रहे हैं, तो कुछ चीज़ें स्वाभाविक होंगी, आप ये कहना चाह
1: बिल्कुल
0: रही हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो उसको बच्चे को पहले से बता दें
1: हाँ
0: और उसकी तैयारी कैसे रखनी है। क्योंकि
1: हाँ
0: बच्चियाँ अब जिस एज की आप बात कर रही हैं, 8 साल, 9 साल, 10 साल, उस समय स्कूल जा रही होती हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो अब माँ, ये प्राकृतिक चीज़ है, कहीं भी हो सकती है,
1: कहीं भी
0: कभी भी
1: हो
0: हो
1: सकता है,
0: सकती है।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर पहले से हम जानकार होंगे, समझदार होंगे, बल्कि
1: हाँ,
0: उनके बैग में आप वो छोटी सी
1: सैनिटरी
0: जो, हाँ,
1: पैड रख
0: सैनिटरी
1: सकते
0: पैड रख
1: हैं, उनके
0: सकते
1: बैग में कुछ खाने के
0: हैं,
1: लिए अलग से रखते
0: हाँ,
1: हैं।
0: या मान लो स्कूल में हुई पैड नहीं भी है, तो स्कूल में वो चीज़ें आजकल विद्यालय
1: हाँ
0: भी जागरूक
1: बिल्कुल,
0: होने लगते
1: अवेलेबल
0: हैं,
1: होती
0: तो
1: हैं।
0: तुरंत जाके अपने मैडम से बात करनी
1: हाँ
0: है, विद्यालय के
1: हाँ
0: प्रशासन से बात करनी है, तो वो होगा तभी जब बच्चा
1: हाँ
0: पहले से
1: वो
0: अवेयर होगा।
1: घबराए नहीं कि ये मेरे साथ क्या हुआ।
0: हाँ, सही बात है।
1: घबराहट में बच्चे कई बार ऐसा भी करते हैं कि अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, तो आजकल इंटरनेट सबके पास अवेलेबल है, फिर बच्चे इंटरनेट पर वो जानकारियां ढूंढ रहे हैं, और कई बार इसमें बच्चों के स्वास्थ्य को बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि पेरेंट्स ध्यान रखें।
0: जी। श्रोता हमसे जुड़ने लगे, हम बात करते हैं। हेलो। हेलो, चलिए जब तक प्रश्न आता है फिर से मैं। अब जैसे आपने कहा कि ये समस्या हो गई, कुछ नुकसान भी हो सकता है, कोई जानकारी हमने ऐसी जगह

0: प्राप्त की वहां से नहीं लेना हाँ। चाहिए, या किसी ने आधी अधूरी जानकारी किसी साथी नहीं दे दी, जब परिवार में इन चीजों की चर्चा नहीं होती, बड़े लोग चर्चा नहीं करते, तो फिर कहीं से तो बच्चा लेगा,
1: क्योंकि साथी तो वही है ना, दे आर सेलिंग ऑन सेम बोट,
0: हाँ
1: वो तो उसी नाव में
0: सवार है, जानकारी भी कम है उनकी भी जानकारी है। तो इसमें अब इसमें जैसे व्यक्ति की साफ सफाई आपने कहा कि वो पीरियड फिर 2-3 दिन का रहता है,
1: बिल्कुल।
0: अब वहां भी सिर्फ हो जाना या उससे दो चार होना ही नहीं है, उस दौरान की भी साफ सफाई, तो वो बहुत महत्वपूर्ण
1: साफ सफाई में। उसमें भी क्या होता है, जब पीरियड शुरू हो रहा है बच्चियों में, तो वो ऐसे नहीं होता कि रेगुलर होगा या उसका एक फ्लो होगा, कई बार वो 10 दिन भी जा रहा है, या कई बार 2-3 महीने नहीं भी आया,
0: तो क्योंकि शुरू हो रहा है,
1: रेगुलर तो है नहीं, रेगुलर होगा वो 2-3 साल बाद। कई बार बच्चों में बुखार आ जाना, दर्द होना बहुत ज्यादा, और हम ये कहते हैं कि ये तो नेचुरल है, सबके साथ होता है, लेकिन सबका शरीर अलग रिएक्ट करता है,
0: सबके सिम्टम अलग आएंगे,
1: सबके सिम्टम अलग आएंगे।
0: बहुत से बच्चियों को इस दौरान बड़ा, जिसे आपने कहा, बड़ा सीवियर पेन होता है उसमें।
1: हाँ
0: तो एक श्रोता जुड़ रहे हैं। हेलो
2: हेलो
0: जी, नमस्ते।
2: नमस्ते सर।
0: बेटा अपना नाम बताओ।
2: मेरा नाम जया है।
0: जया है, डॉक्टर साहब से बात करिए आप। हैं जी,
1: हेलो।
2: हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते।
1: नमस्ते जया, कैसी हैं?
2: हाँ जी,
1: उम्र बताइए।
2: मेरी उम्र 28 साल है
1: जी, बताइए जया।
2: मैं पीरियड्स होती हूँ तो 10 दिन तक होती हूँ, और फिर 3-4 दिन तक ऐसे जाते हैं, मतलब बोटी सी मास, और पेट में भी ज्यादा दर्द होता है।
1: अच्छा, आपने कहीं किसी डॉक्टर से आपने इस बारे में मिली है, आप कंसल्ट किया है?
2: नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया।
1: दर्द बहुत तेज होता है या हल्का फुल्का?
2: दर्द 2 दिन तक तो बहुत तेज रहता।
1: अच्छा, आप जया किसी गायनेक से मिलिए जाके, क्योंकि आजकल पीसीओडी पीसीओएस की संभावना बहुत ज्यादा होती है, यानी कि पेट में गांठ हो जाना, कई बार बताते हैं ना कि गांठ हो गया है आपको, और ये जो आप बता रही हैं ये सिम्टम उसके बहुत ज्यादा मैच कर रहे हैं, तो आप किसी लेडी डॉक्टर से जाके मिलिए, तो वो आपका अल्ट्रासाउंड कराएंगे, और अगर सब कुछ ठीक होता है तो वो कुछ आपको ऐसे मेडिसिन दे देंगे जिससे आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, और ये आपको इस तरह की समस्या नहीं होंगी, ठीक है?
2: कभी एक महीना तो सही आता है, और दूसरे महीने में मतलब जल्दी आ जाता है, 15 दिन में 10 दिन।
1: तो ये पूरे चांसेस हैं आपको पीसीओडी या पीसीओएस होने के, ठीक है? तो आप जाके लेडी डॉक्टर से मिलिए इसके बारे में।
2: ओके।
0: अब जैसे इन्होंने कहा, एक मीनाक्षी अग्रवाल मैडम, ये व्हाट्सएप से हमें मिला है संदेश, अलीगढ़ से है, उम्र इनकी 51 साल है
1: जी।
0: आप लिखते हैं, आजकल देखने को आता है कि किशोर किशोरियां छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, माता पिता की बातों का विरोध करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, क्या यह केवल हार्मोनल बदलाव का प्रभाव है या मानसिक तनाव, सोशल मीडिया और बदलती जीवन शैली का परिणाम है, ऐसे में माता पिता को क्या करना चाहिए? कुछ नोट लिख रही है कि पुरानी पीढ़ी यानी दादा दादी पापा मम्मी पापा, हम जिस समय में पले बड़े हैं, बच्चे उन बातों को बिल्कुल मतलब एक तरह से तवज्जो नहीं रखते, उनका कोई पीढ़ी अंतराल की बात कर रही, कई सारी चीजें उन्होंने लिख दी है,
1: उन्होंने अपना पूरा कंक्लूजन दे दिया अपने जनरेशन गैप का। नमस्कार मीनाक्षी जी, इसको हम जनरेशन गैप कहते हैं, कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, और आजकल चूंकि समय बहुत बदल रहा है और हम ग्लोबल रूप से कनेक्ट हैं, पहले चूंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं होते थे कि हम अपने परिवार या अपने उस गांव या अपने उस परिवेश से बाहर के लोगों को जान सकें, अभी जब कल्चरल एक्सचेंज की बात आती है, चूंकि हम सोशल मीडिया पर कनेक्ट हैं, हमारे पास और जैसे रेडियो हो गया या FM हो गया, TV हो गया, गूगल हो गया, तो बच्चे बहुत सारी बातें वहां से उठाते हैं कि उस देश में या उस समाज में ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ क्यों नहीं। यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि बच्चे तवज्जो नहीं देते, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम रेडियो सुनते हैं तो एक ट्यून पे आना जरूरी है ना, अच्छी आवाज सुनने के लिए फ्रीक्वेंसी मैच करना, यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि पेरेंट्स उनसे क्या चाहते हैं, डिसिप्लिन और अपनी बातों को थोपना, दोनों में बड़ा अंतर है। कई बार हम वहां अटके होते हैं कि हमारे परिवार में केवल ऐसा होता आया है, हम वहीं अटके हुए हैं, भले उसका कोई
0: स्ट्रॉन्ग
1: बैकग्राउंड है कि नहीं है, और बच्चे चूंकि बच्चों के लिए दुनिया आकाश एकदम खुल गया है, वो हर चीज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो यहाँ कई बार वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो पेरेंट्स को यह जानना पड़ेगा कि

0: बच्चे की परेशानी, देखिए हार्मोनल चेंजेस तो होते ही हैं उसमें। एक टीनेज जैसे ही बच्चा 10-11 का होता है, 8-9 का होता है, उसके बाद ही उसमें वो एंगर इशू आने लगता है, क्योंकि वो शारीरिक बदलाव हो रहे हैं, उनसे डील नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। तो या तो बच्चों को आप इतना सहज रूप से उनके शारीरिक बदलाव के बारे में बताएं, बड़े खुल के बात करें, आप नहीं कर पा रहे कहीं लेके जाएं, कि बच्चे उसमें एडजस्ट होना शुरू करें कि हाँ ये नॉर्मल है और सबके साथ होता है, इसको लेके मुझे डरना या घबराना नहीं है। दूसरा, पेरेंट्स को ये जानने की ज़रूरत है कि क्या हम अपने विचार सिर्फ थोप रहे हैं या बच्चे का भी सुन रहे हैं। तो यहाँ दोनों ही चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे के शारीरिक बदलाव होंगे तो 2-3-4 साल का वो फेज चलेगा, क्योंकि हर उम्र के अपने कुछ अलग सिम्टम्स होते हैं और रिएक्शन भी वैसे ही होते हैं।
1: जी, अब इसमें डॉक्टर साहब जैसे कई बार रिएक्शन इन्होंने जैसे लिखा कि बच्चियां एग्रेसिव हो जाते हैं, विरोध करते हैं, बात नहीं मानते, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा एकाकी हो जाता है,
0: हाँ,
1: अकेला रहने लगता है,
0: हाँ
1: सुस्त रहने लगता है। इस पर हम
0: हेलो
1: चर्चा करेंगे, पहले एक श्रोता हमसे जुड़ रहे
0: जी,
1: हैं। हेलो
0: हेलो
1: जी, नमस्ते भैया, बात बताइए, नाम बताइए अपना।
0: जी, मैं अमित कुमार बोल रहा हूँ साहब,
1: अमित भैया कहाँ
0: अमित
1: से?
0: महोली रोड मथुरा से।
1: महोली से बोल रहे हो, ठीक है। डॉक्टर साहब बैठिए, बात करिए आप।
0: मैडम नमस्ते।
2: नमस्ते सर।
0: मैडम एक समस्या है,
2: जी
0: समस्या ये है कि मेरी पत्नी को जो है वो अत्यधिक साफ सफाई का एक आदत सी पड़ गई है।
2: अच्छा, क्या एज है उनकी?
0: उनकी एज करीब ऐसे है 38 to 40 के अराउंड। तो
2: ओके।
0: उनका क्या है कि जैसे मतलब ओवर हाइजीनिंग की उनको एक समस्या है कि जैसे यदि मैं अपने घर जाता हूँ और कुर्सी पे बैठ गया तो वो कुर्सी को धो
2: धो
0: देती हैं।
2: देती हैं।
0: जी, और वो बच्चों को बाहर खेलने नहीं जाने देती हैं कि तुम गंदे हो जाओगे, इस तरीके से।
2: ये
0: तो
2: कब
0: इसका
2: कब से है
0: कोई
2: सर?
0: इलाज
2: ये
0: संभव है?
2: कब से है?
0: करीब करीब 8 साल करीब हो गए इस बार।
2: 8 साल। इससे पहले आप किसी से मिले हैं इस बारे में?
0: नहीं मैडम, मैंने वैसे इलाज कराया और न्यूरो वगैरह का, तो
2: नहीं नहीं
0: वो लोग तो वो ट्रीटमेंट वैसे दे
2: नहीं
0: देते हैं, तो
2: इसे
0: उससे कोई
2: सर
0: फायदा नहीं, उससे
2: ऐसी
0: नींद
2: प्रॉब्लम को
0: वगैरह
2: हम
0: आती
2: ओसीडी
0: ज्यादा।
2: कहते हैं सर।
0: जी
2: इसे हम ओसीडी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जब
0: जी
2: कुछ
0: जी
2: चीजें अननेसेसरी होने लगती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता।
0: जी जी
2: 8 साल बहुत लंबा समय हो चुका है, और आप जल्दी से इनको हॉस्पिटल में
1: काउंसलिंग कराए ना।
2: काउंसलिंग कराएं, और इनको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, न्यूरो की नहीं।
0: जी,
1: तो इस तरह
2: हाँ
1: की समस्याएं और भी सुनी है डॉक्टर साहब, जैसे
2: जी
1: उसमें के जैसे ये साफ सफाई की करें, बहुत से लोगों को और किसी चीज का वो है तो वो ओवर एक्सेस हो
2: ये
1: जाता है
2: ओसीडी ही
1: उसमें,
2: होता
1: है
2: है
1: ना,
2: सर।
1: और हर चीज में वो ही देखते हैं।
2: हाँ
1: तो कोविड
2: हाँ
1: के बाद
2: ये
1: कुछ
2: ज्यादा
1: लोगों ने,
2: हुआ है,
1: हाँ कुछ
2: बिल्कुल
1: हुआ है, तो इन चीजों के भी मतलब एक तो
2: बिल्कुल
1: साइकोलॉजिकली
2: बिल्कुल, ये साइकोलॉजिकल रीजन होते हैं। मैं बताती हूँ, ओसीडी की समस्याएं अधिकतर फीमेल में ज्यादा होती हैं, जहां फीमेल अपने आप को इमोशनल लोनली फील करती है, जहां उसको लगता है कि मेरे पार्टनर से या मेरी फैमिली से मुझे इमोशनल सपोर्ट नहीं है, उस के बाद जब वो अकेला फील करने लगती है तब उसमें ओसीडी की समस्या ये होने लगती है। ये जनरलाइज ऑब्जर्वेशन है
1: तो
2: हमारा।
1: ये क्या धीरे धीरे शुरू होती है,
2: जी
1: हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाती है तब
2: हाँ,
1: हमें लगता है ये तो
2: हमें ऐसा
1: ज्यादा हो
2: लगता है कि
1: गया।
2: ये बस कर रही है, ये अपने मन की कर रही है, या कोई भी अपने मन की कर रहा है, जबकि
1: हाँ
2: उसका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है,
1: कंट्रोल नहीं, वो फिर वो आदत हो गई है
2: फिर वो आदत हो जाती है, और ये
1: उसमें।
2: मानसिक
1: तो क्या अपने
2: समस्या
1: आप को
2: है।
1: ओवर बिजी रखने के लिए या दूसरी तरफ से ध्यान हटाने के
2: जी
1: लिए? ऐसा
2: जी
1: भाई कोई इग्नोर कर रहा है तो क्या करे,
2: हाँ, क्या करें? कुछ
1: कुछ तो कर लेते, फिर
2: कपड़े
1: वो
2: धो
1: आदत
2: लिया,
1: बन गई,
2: काम
1: मतलब
2: कर लिया, साफ सफाई कर ली,
1: साफ
2: फिर
1: कपड़ों को भी दोबारा धो दिया।
2: हाँ, फिर वो आपके बिहेवियर पैटर्न हो जाता है।
1: ये समस्या तो अब हम जिस उम्र में रह रहे हैं तो बातें रोजाना ऑफिसों में होती हैं,
2: जी
1: समाज में भी हम देखते हैं, घर परिवारों में अब ये बहुत हो गया है कि
2: हाँ
1: हर आदमी कहता है यार मैं तो जब जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि घर ही नहीं है मेरा, कहाँ
2: हाँ
1: बैठूँ।
2: हाँ
1: अब इतना हमने साफ सुथरा कर दिया, सोफा साफ, घर साफ, बेड साफ, तो कई बार आदमी को ये लगता है कि मैं बैठूँ भी कि
2: तो
1: नहीं, मेरे बैठने से ऐसा तो नहीं कि चद्दर मेरी सलवट
2: हाँ,
1: आ जाएगी तो फिर
2: ये
1: मेरी पत्नी का
2: बहुत
1: काम बढ़ जाएगा।
2: बड़ा मतलब कई बार हमें अफसोस होता है कि ये समस्या बड़ी बढ़ती जा रही है।
1: मतलब इतना नहीं होना चाहिए,
2: नहीं,
1: चीजों का महत्व
2: लेट
1: तो
2: इट
1: है
2: गो, उतना
1: लेकिन
2: नहीं।
1: उतना नहीं कि चीजें आते ही बिगड़ जाए, बैठते ही बिगड़ जाए, इतना ध्यान नहीं देना,
2: नहीं नहीं नहीं
1: ध्यान देना है हमें। तो अब बात हम वहां कर रहे थे कि एक बच्चा तो ऐसा है कि रिएक्ट कर रहा है,
2: हाँ
1: एक बच्चा चुप हो गया, तो ये क्या सब जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि शारीरिक बदलाव हो रहे हैं,
2: हाँ
1: उम्र बढ़ रही है,
2: हाँ
1: हार्मोनल चेंज होंगे तो फिर वो शरीर पे कुछ तो दिख रहा है
2: कुछ तो दिख
1: लेकिन
2: रहा
1: कुछ
2: है।
1: व्यवहार में आ रहा है, तो
2: हाँ
1: वो फिर वहाँ हमें मतलब ये नहीं कि कोई चीज हो रही है तो आप उससे होने दो या हमारे बस में नहीं है, आज चीजों के समान

0: ना नहीं,
1: नहीं
0: हम
1: सब
0: जाएं डॉक्टर से
1: ना,
0: मिलें,
1: देखिए
0: काउंसलिंग कराएं।
1: होने दो, इसके लिए आपका इंटेलेक्चुअल होना भी तो जरूरी है।
0: हाँ
1: आप एक 10-12 साल के या 14-15 साल के बच्चे से 40 साल की मैच्योरिटी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?
0: हाँ सही बात। और जो जिसके साथ वो अभी अभी शुरू हुआ
1: अभी
0: है।
1: अभी शुरू हुआ है ये, वैसे ही
0: हाँ
1: हो गया कि 10th करने के बाद, नौकरी में आने के बाद आपको 10th क्लास बड़ा इजी लगता है,
0: सही बात है।
1: लेकिन आप याद करिए जब आप 10th में थे तब कैसा था?
0: तब कैसा था। एक श्रोता जुड़ रहे हैं। हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार,
0: नमस्ते भैया, नाम बताओ।
2: राहुल कुमार बोल रहे हैं,
0: राहुल कुमार जी कहाँ से बोल रहे
2: वृंदावन से।
0: हो? राहुल वृंदावन से। बताइए, बताओ भैया समस्या। डॉक्टर साहब बैठी हैं और हम परिवार में बढ़ती हुई युवतियों के बारे में बात कर रहे हैं। बात करिए
2: जी नमस्ते मैम।
1: आप। नमस्ते नमस्ते, बताइए।
2: मैम जी हमारा वजन बहुत ज्यादा कम हो गया है तो,
1: क्या एज है
2: और
1: आपकी?
2: अभी हमारा है 26 साल है, तो मतलब कि जैसे सोचता बहुत हूँ मैं, बोलते
1: अच्छा,
2: हैं इसलिए तुम्हारा वजन नहीं बढ़ रहा है।
1: नहीं सोचते क्यों हैं उस पे ध्यान देने की, ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूं। इसके लिए ना आप प्रॉपर हॉस्पिटल में आके कंसल्ट करिए, तो वहाँ डिटेल में जब बात होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा सोचना किसी भी एक समस्या पे, सोचते रहना, जैसे हमारे अभी पिछले कॉलर से भी बात हुई थी कि ये
2: जी
1: ऑब्सेशन
2: मैम,
1: होता है किसी भी चीज में, आप नहीं चाहते लेकिन तब भी वो विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं।
2: जी मैम जैसे 10 काम करने हैं तो उसमें से 15 काम सोच लिए, उसमें से 2 ही 3 काम हुआ, तो फिर
1: हाँ
2: कल वही 10 काम सोचेंगे, फिर भी
1: हाँ
2: उसमें से एक ही काम होगा।
0: नहीं तो आप फिर डेली का रूटीन नहीं बनाते कि 15 काम तो हैं, ये 15 काम मुझे 10 दिन में करने हैं, लेकिन आज मैं कौन से दो काम ऐसे हैं जिनको प्राथमिकता से लूंगा। अगर वो हो गए तो उनकी संतुष्टि भी तो आपके जीवन में आनी चाहिए।
2: नहीं सर रूटीन तो नहीं बन पाती ना, ये
1: हाँ
2: रेगुलर
1: नहीं
2: नहीं
1: बन
2: बन
1: पाता,
2: पाता है।
1: इसके लिए आप ना अस्पताल में आके एक बार कंसल्ट करिए, क्योंकि ये मानसिक समस्याएं ऐसे ही शुरू होती हैं।
2: जी मैम,
1: हमें लगता है कि धीरे धीरे शुरू हो खत्म हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ये समस्याएं बढ़ती जाती हैं, तो आप इसके
2: जी
1: लिए आके
2: मैम
1: कंसल्ट
2: ऐसा
1: करिए।
2: लगता है मतलब सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा।
1: नहीं होगा जब तक आपको सही चीजें पता नहीं चलेंगी और आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये हो क्यों रहा है।
2: और कोई भी काम करने मतलब पूरी तरह मतलब जो विश्वास होता है या
1: वो
2: कॉन्फिडेंट
1: नहीं हो
2: होता है ना,
1: पाता
2: वो
1: है।
2: पूरी तरह नहीं बन पाता, वो
1: हाँ
2: अंदर
1: हाँ
2: से कुछ रहता है कि कंफ्यूजन या भ्रम या कुछ रहता है, ऐसा ना हो जाए
1: आप
2: उसका काम
1: फैसला
2: जो
1: नहीं
2: है।
1: कर पाते,
0: जी
1: हाँ
0: मैम, सही हुआ कि नहीं ये
1: वो डर लगा
0: कॉन्फिडेंस
1: रहता
0: नहीं है
1: है।
0: ना।
1: हाँ
2: जी,
1: तो
2: जी
0: आप मिलिए फिर, ये जो वो है जो हम बात कर रहे हैं, एक मनोचिकित्सक का की साइकेट्री का ही ये वो
1: हाँ
0: है, इसमें आप जाके अपने सोचने के तरीके पे, व्यवहार के
1: हाँ
0: तरीके पे, जीवन शैली के तरीके पे बात करिए तो चीज़ों के समाधान आएंगे, है ना। एक दूसरे कॉलर जुड़ रहे मैडम। हेलो
3: हेलो
0: जी, नमस्कार,
3: नमस्कार जी,
0: शुभ नाम बताइए।
3: मेरा शुभ नाम डालचंद है जी,
0: डालचंद जी कहाँ से बोल रहे हैं?
3: अड़िंग से बोल रहा हूँ जी।
0: अड़ीन से। उम्र बताइए।
3: मैं अपनी नातनी के बारे में पूछ रहा ना चाह
0: चलिए
3: रहा था
0: ठीक,
3: मेरी
0: बताइए बताइए। हाँ डॉक्टर साहब से बात करें।
3: मेरी नातिन है,
1: जी
3: उसकी एज लगभग 10 साल की होने जा रही है,
1: जी
3: 2 जनवरी को हो जाएगी, लेकिन बॉडी का डेवलप नहीं हो रहा है उसका, हमने काफी जो है उसको दिखा भी रहे हैं।
1: अच्छा,
3: जी
1: बॉडी, केवल बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा या और भी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, जैसे
3: नहीं,
1: बात
3: वैसे तो
1: करना?
3: माइंड माइंड रूप से तो ठीक है, वो पढ़ाई में भी ठीक है,
1: हाँ
3: लेकिन
1: हाँ
3: शारीरिक रूप से काफी कमजोर है।
1: शारीरिक रूप से तो
3: हाँ,
1: क्या, क्या डॉक्टर ने क्या बताया है कि क्यों ऐसा हो रहा है?
3: खान पान की बता रहे हैं, लेकिन खाने की कहते हैं तो वो कुछ जो खाती है वो खा लेती है।
1: तो उनका खान पान ही आप ठीक करिए, हो सकता है वो जंक फूड पे ज्यादा डिपेंड हो बच्चा।
3: खाना ज्यादा ज्यादा, एक चपाती बड़ी मुश्किल से खा
1: नहीं
3: पाते हैं,
1: नहीं
3: कि
1: लालचंद
3: आधी
1: जी
3: चपाती।
0: अड़िंग में रहते हैं आप?
3: जी हाँ
0: अड़िंग में रहते हैं, एक छोटा टाउन
1: हाँ मैं
0: कस्बा है।
1: पता है
0: हाँ
1: मुझे। आप एक बार या ना बच्ची को लेके आइए सर, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम 10 साल की एज में बात कर रहे हैं, बच्चे कई बार
3: जी
1: उनके मन में क्या चल रहा होता है उसको लेके बड़े परेशान होते हैं, और कई बार शेयर नहीं कर पाते, इस वजह से उनकी भूख खत्म होने लगती है। अब या
3: जी
1: तो ये शारीरिक जो आप बात कर रहे हैं ये शुरू से ही उसका कम है डेवलपमेंट,
3: हाँ
1: या
3: बिल्कुल बिल्कुल, शुरू से ही है जी। लेकिन
1: अच्छा
0: मानसिक उनके दबाव नहीं है, वो तनाव चीजों का
1: देखिए दो
0: नहीं ले
1: चीजें
0: रही
1: हैं,
0: अंदर
1: अगर
0: अंदर।
1: मानसिक तनाव नहीं है और खाने पीने में बच्चा ठीक है, केवल शारीरिक कमजोर है, तो फिर इसमें क्या ही किया जा सकता है, फिर तो वो जेनेटिक या शुरू से है। लेकिन अगर ये अचानक आप उसमें कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं कि नहीं इतना तो नहीं होना चाहिए था?
3: नहीं बदलाव तो कुछ नहीं है, शिक्षा में ठीक है, टाइम से पढ़ने जाना, सब कुछ,
1: अच्छा
3: नहाने धोने की सारी चीजें सही है,
1: बातचीत
3: अपने
1: करती
3: बाल।

0: ठीक से
1: करने की। हाँ, बातचीत बढ़िया है, ठीक है, एकदम कोई ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन हम जो डॉक्टर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषि गोयल के जो बच्चे हैं उनको दिखा करके लाए थे, उन्होंने केवल खाने के लिए ही बता रहे कि आप अच्छा खाना दें और ये बस यही चीज है। और कुछ दवाई भी नहीं,
2: एक बार अगर उससे फर्क नहीं लग रहा, एक मनोचिकित्सक है मैडम से आप मिल लीजिएगा। तो कई बार होता है क्रॉस क्वेश्चन में चीजें कुछ अलग से आइडेंटिफाई होती हैं, तो वहां से कुछ समस्या का समाधान निकलेगा। तो उसमें अच्छा है आप इस बारे में सोच रहे हैं, ठीक है।
1: अच्छा,
2: तो एक बार मिल लीजिएगा, सिम्स ये हॉस्पिटल है जो, वहां जाके सारिका मैडम से बात करी ने, उनसे बात कर लीजिएगा आप, ठीक है।
1: ठीक
2: जी, जी जी जी, धन्यवाद आपका। अब ये मैडम व्हाट्सएप से एक मिला है, आप सुभाष गोदरा जी लिख रहे हैं फजिल का पंजाब से। ये हमारा कार्यक्रम चूंकि ऐप पे ऑल ओवर इंडिया सुना जा रहा है, आप लिखते हैं कि आजकल कई बच्चे बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं जैसे अभी ये बात कर रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तनाव है, चिंता है, अवसाद है, डिप्रेशन है, ऐसी चीजों से जूझ रहे होते हैं। इसमें ऐसे कौन से शुरुआती संकेत है जिन्हें माता पिता और शिक्षक समय रहते पहचान ले ताकि स्थिति गंभीर होने से पहले उनको मदद मिल सके।
0: उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया उन्होंने। जब हम बच्चों के शुरुआती व्यवहार की बात करते हैं तो शुरुआत में सबसे पहले कि या तो बच्चा एकदम शांत हो जाएगा जैसे हमने बात की थी, या वो घर से बाहर रहना ज्यादा शुरू करेगा। ऐसा कोई भी बदलाव कि जो अचानक आपको लगा है कि ये 2-4 दिन में चेंज हुआ, क्या तो वो रात रात भर जाग रहा है या घर से बाहर ही रह रहा है या खाना खा ही नहीं रहा है या अचानक से उसने फोन का यूज बहुत शुरू कर दिया या अपने आप को कमरे में बंद करके रहने लगा है, ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम कहते हैं कि आजकल सभी बच्चे ऐसा करते हैं। सभी बच्चे इसलिए ऐसा करें क्योंकि उनका एज ग्रुप सेम है, उनके सिम्टम सेम है, लेकिन अंदर ही अंदर बच्चे के साथ क्या चल रहा है वो हम कई बार नहीं पता लगा पाते। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके दोस्तों के बीच में थोड़ा सा बैठें। कई बार पेरेंट्स कहते हैं क्या दोस्ती लगाई हुई है आपने, अब घर से घर में नहीं आना, लेकिन नहीं, उनसे ज्यादा उनके दोस्तों के दोस्त बन के रहेंगे ना तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से पता चलेंगी, क्योंकि दोस्त लोग बड़े प्यार में आ जाते हैं, दोस्त का मम्मी या पापा हमें बड़ा मानते हैं, तो फिर वो छुपा नहीं पाते। तो अपने बच्चों के तो दोस्त बनिए, उनके दोस्तों के भी दोस्त बनिए आप,
2: जहां से आपको मतलब आजकल एक ये हुआ है, माता पिता ने कहा कि नहीं पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई आवश्यक हो सकती है, लेकिन इतना भी नहीं कि जो बाहर की जो चीजें हैं उनसे हम उनको
0: पढ़ाई और कमाई जीवन से ज्यादा आवश्यक कभी नहीं,
2: कभी नहीं है, होंगी भी नहीं। एक प्रश्न आ रहा है, ले लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते।
3: हेलो,
2: हाँ बोलो
3: सर जी। नमस्कार।
2: नमस्ते भैया, नाम बताइए।
3: मैं जितेंद्र दोसारसिया, ग्राम मऊ, तहसील खैर, जिला हरिगढ़, यूपी से बोल रहा हूँ।
2: बताइए बताइए डॉक्टर साहब से, सीधे बात करिए, समय कम है। हाँ
3: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार सर,
3: मेरे छोटे छोटे 3 सवाल हैं।
0: जी बताइए।
3: पहले तो मैम ये हमारा ये लाइफ स्टाइल खाने पीने का सब चेंज हो गया
0: जी,
3: घर की चीज बदलते बाहर की चीजें पे एक्टिव रहते हैं। इस पर क्या कहते हैं? और नींद पीते 12-12, 1-1 बजे तक रहते हैं, इस पे क्या कहते हैं? और खान पान और लाइफ स्टाइल पूरा ही बदल गया तो क्या है, फिर परेशानी तो आएगी ना।
0: बिल्कुल,
3: तो बताइए मैम इस पे क्या
2: इसके साथ ही चलिए मैडम पहले इनका बता।
0: इसके लिए आप ये देखिए कि खान पान जो बदल रहा है वो हम केवल बच्चों पे दोष दे रहे हैं या हमारा भी बदल रहा है?
3: हाँ, वो लाड़ प्यार में पैसे देते हैं ना।
0: हाँ, तो वो नहीं देना है ना। देखिए, आप डिसिप्लिन बनाएंगे, कई बार ऐसा होता है कि दादी दादा नानी नाना या कोई आया वो दे गया, कह रहे तुम्हारे बच्चे हैं। डिसिप्लिन बनाना प्रॉपर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, मम्मी पापा की, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, ना दादी दादा का लाड़, जैसे फोन पकड़ा दिया बच्चे को दादी दादा ने या किसी ने भी, मम्मी मना कर रही है तो ये हो गया, कह रहे तुम्हारे बच्चे हैं क्या, उसमें भले आपके पेरेंट्स बुरा माने या भला माने, क्योंकि उनके बच्चे तो अच्छे पल गए, अब आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो कई बार हमें डिसिप्लिन की तरह रखना पड़ता है, उसमें कोई भी इफेंट बट नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपके बच्चे को 9 बजे सुलाना है क्योंकि उसे सुबह स्कूल भेजना है, 9 बजे के बाद आप सीधा मना कर दें कि ना कोई फोन देखेगा ना टीवी देखेगा, और घर में अगर आपको लग रहा है कि बाकी लोग भी देख रहे हैं तो या तो उनको अलग कर दें, उनका कमरा अलग कर दें, है ना।
3: अगर मैम ये अनुशासन घर में रहेगा तो ऐसी समस्या आएगी।
2: कई बार माँ बाप ही देखते हैं, बड़े लोग ही,
3: नमस्कार,
2: कोई सीरियल देख रहे हैं,
0: हाँ
2: उसका लेट नाइट टाइम है,
0: और बच्चों से कह रहे हैं आप सो जाओ जाके,
2: तो
0: वो नहीं होता है।
2: जो मतलब आप फॉलो कर रहे बच्चे भी वही कर
0: वही फॉलो करेंगे।
2: एक परमेश किशन जी मोहाली से लिख रहे हैं मैडम, आप लिखते हैं कि अब हमारे इस कार्यक्रम का जो अंतिम पड़ाव है वो भी यही है कि हार्मोनल बदलावों का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, किशोरावस्था में कई लड़कियों का वजन अचानक से घटने बढ़ने लगता है, क्या ये चिंता का

0: है, और आजकल फैशन का भी दौर है, पहनने ओढ़ने में भी बड़े वो हो गए, खाने पीने और सोने की भी बात ये कर रहे हैं, जो अभी हमारे जितेंद्र जी कर रहे थे, तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन इन पे वही वाली बात है, अनुशासन देखना और ध्यान देना।
1: देखिए, जब हम अनुशासन की बात करते हैं तो अनुशासन और डिक्टेटरशिप में बड़ी बारीक सी लाइन होती है।
0: हाँ, सही बात है।
1: अनुशासन का मतलब होता है कि घर में सब उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे 10 बजे सोना, अगर देखिए किसी का काम है तो एक अलग बात है,
0: हाँ
1: बच्चे
0: सही
1: उसको तो
0: बात
1: समझते हैं
0: है, लेकिन
1: कि भाई
0: नियम
1: काम
0: नियम
1: करके बाद,
0: एक
1: लेकिन नियम होना चाहिए कि बच्चों को अगर आपने कहना है कि हेल्दी खाना है तो हेल्दी खाना फिर सबके लिए होना चाहिए।
0: हाँ सही बात
1: तो
0: है।
1: अनुशासन बच्चे कहने से नहीं सीखते, बच्चे देख के फॉलो करते हैं। और रही बात कि उनको स्ट्रेस होता है जब उन्हें मानसिक बदलाव होता है या उनका वजन, चूंकि बच्चे आजकल बॉडी को लेके बहुत कॉन्शियस हैं, क्योंकि सबसे पहले बॉडी शेमिंग की जो हम बात करते हैं वो घर से ही शुरू होती है कि कोई भी आए आपके घर में, शायद अरे बच्चा बड़ा सूख रहा है, बच्चा बड़ा मोटा हो रहा है। तो इन सब चीजों में आप अपने जो जानने वाले पहचानने वाले लोग हैं, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चा बुरा फील करे उससे पहले आप बच्चे के लिए स्टैंड लें,
0: स्टैंड है, बिल्कुल सही
1: बच्चे का
0: बात है।
1: वजन कम है या
0: मतलब
1: ज्यादा है।
0: एक सुझावात्मक तो हो सकता है, ये अगला प्रश्न भी है, चलते
1: जी
0: चलते हम इस पे चर्चा करेंगे। आप राधा विनोद जी हैं, किशोरी
1: जी
0: देवी और सुल्तानपुर से लिख रही हैं, यही है कि बच्चे स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर नहीं समझते। कई बार घर वालों की अच्छी बातों के बजाय बाहर वालों की सामान्य बात भी उनको अपील करती है। तो आपने कहा जैसे कि बस ठीक है, हमारी नहीं मान रहे तो हमारे दोस्त की मान लो, तो
1: हाँ
0: घर परिवारों में जाना मिलना जुलना ये भी आवश्यक है। शायद परिवारों की चीज़ें और समाज की ज़रूरत इसीलिए थी कि चीज़ें, हर चीज़ माँ बाप ही नहीं सिखाते,
1: बिल्कुल,
0: समाज भी सिखाता है,
1: समाज भी
0: परिस्थितियाँ भी
1: सिखाता है
0: सिखाते
1: उनके,
0: हैं।
1: हमारे हमें इसीलिए सोशल एनिमल हमें इसीलिए शायद कहा जाता है कि हर चीज़ क्या हमें, अब जैसे खाना है, क्या हमें एक ही खाने से सारा न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिल जाएगा, जगह जगह कार्ब्स फैट सब चाहिए। वैसे ही एक ही रिलेशनशिप से या एक ही रिसोर्स से हमें सारा हमारा मेंटल वेलनेस नहीं हो जाता। अगर आपको लगता है कि बच्चा आपकी नहीं मान रहा है तो आप काउंसलर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, मतलब कोई भी ऐसा, या उसके स्कूल टीचर से आप बात कर सकते हैं और आप भी समझें कि बच्चा आखिर क्या चाहता है। कोई भी बच्चा या कोई भी टीनेज में जब जा रहा होता है उसके बिहेवियर पे कई बार कंट्रोल नहीं होता। कई बार बच्चे ऐसा कहते हैं हमारे पास आके कि मैम ये करना नहीं चाहते, बस हो जाता है,
0: हो
1: पता
0: जाता
1: नहीं
0: है।
1: क्यों हो जा रहा है। या फिर बच्चे ये कहते हैं कि जैसा घर में माहौल है, जैसे कई बार पेरेंट्स ही बड़ा टॉक्सिक माहौल करके रखते हैं कि घर में चार चार दिन झगड़ा हो रहा है, बातचीत नहीं
0: हाँ,
1: कर रहे हैं,
0: तनाव
1: उसका
0: हो रहा है।
1: असर बच्चों पर बहुत आता है।
0: मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक घटना बिल्कुल अलग है, दूसरी अलग है, एक चीज़ को आप अपने मन के हिसाब से कर सकते हैं, फिर उसका ये सोचेंगे कि उस पर परिवार का मतलब बच्चों पर असर नहीं जाएगा। तो चीज़ें जुड़ी हुई हैं,
1: बिल्कुल,
0: बच्चे हमको भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं,
1: हाँ
0: हमें भी देखते हैं कि
1: हाँ
0: एक तरफ तो हमारा नज़रिया अलग है, दूसरी बात पे अलग
1: अलग है।
0: है।
1: अब हम कई बार जो बच्चों के लिए अनुशासन बना रहे हैं, क्या वो हम
0: हाँ
1: उसे फॉलो कर रहे हैं?
0: जी जी जी
1: तो ये
0: जी
1: बस वैसा ही है कि अनुशासन बना के उसको सिरे से फॉलो करें, फर्स्ट स्टेप से, फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स, फिर बच्चे।
0: जी
1: और अगर
0: जी
1: इस पे भी आपको लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से 100% हमारी फैमिली दे रही है, बच्चे में फिर भी कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज एक्सपर्ट से जाके मिलें। कई बार इस तरह की कोई मेंटल इलनेस या कहें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं।
0: जी हो सकती है, और चीज़ों पे खुल के चर्चा की जानी चाहिए।
1: बिल्कुल की
0: समय
1: जानी
0: अब वो आ
1: चाहिए।
0: गया है कि चीज़ें जिनको हम नहीं कह पा रहे, हो सकता है कि हम झिझक रहे हो या हमारी
1: हाँ
0: जानकारी भी पूरी हो, कोई
1: उतनी नहीं
0: ज़रूरी,
1: है।
0: हाँ तो
1: हाँ
0: फिर एक अच्छे डॉक्टर से, अच्छे हॉस्पिटल में, अच्छे
1: हाँ
0: उससे जाके मिल लीजिए। इसमें अगर 1,500 रुपये खर्च होते हैं, एक दिन लग जाता है, दो दो घंटे लग जाते हैं, तो बच्चों के उसके लिए सब कुछ तो उन्हीं के लिए कर रहे, तो ये भी कर सकते हैं
1: बिल्कुल
0: हम। और
1: बिल्कुल
0: ऐसी समस्या जिसको आज हमने उठाया है बच्चियों के संबंध में, वो किशोरों के संबंध में भी हो
1: वो
0: सकती है,
1: दोनों के
0: जरूरी
1: संबंध
0: नहीं
1: में।
0: लड़
1: हाँ
0: लड़के
1: हम तो एज
0: लड़के।
1: अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, हम जेंडर में कभी बायस होते ही नहीं हैं, क्योंकि इमोशंस और थॉट्स और फीलिंग्स का कोई जेंडर नहीं
0: कोई
1: होता।
0: जेंडर नहीं होता, वो बढ़ती हुई उम्र के साथ आते हैं
1: बिल्कुल
0: और बड़े सैलाब के साथ आते हैं, तो उस सैलाब को रास्ता देना बहुत ज़रूरी है, उसको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग हम भी करें, दायरों में करें, सीमित मर्यादाओं में करें, और हमारे अगर घर की उसमें नहीं आ रही है उसमें, तो फिर एक्सपर्ट से जाके
1: ये
0: मिलना।
1: वैसे ही मानिए कि बदलते मौसम में जब सर्दी जुकाम होता है तो हम घर का सारा होम रेमेडी करते हैं, नहीं कंट्रोल होता तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं।
0: जी
1: ये
0: जी
1: बिल्कुल वैसे ही है
0: वैसे ही
1: कि जब
0: है,
1: व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है और आपको लग रहा है कि बच्चा हमसे नहीं समझ रहा है तो
0: हाँ
1: तुरंत आप जाके एक्सपर्ट से मिले,
0: एक्सपर्ट से मिलिए, उसमें कोई हानि नहीं है
1: कोई हानि
0: और
1: नहीं
0: कोई
1: है।
0: देरी भी नहीं होनी
1: नहीं
0: चाहिए।
1: बिल्कुल नहीं।
0: तो श्रोता बंधु, ये समस्या हमने उठाई, बच्चे

0: बच्चियों के संदर्भ में कोशिश करेंगे कि ये बच्चों पे भी ये बात करें, और निरंतर इस तरह की बात हम भी करते रहेंगे, लेकिन आपके परिवार में भी ये चीज़ें रेगुलर डिस्कस होनी चाहिए, समझनी चाहिए। अगर घर परिवार में बच्चा है, कई पीढ़ियां पहले, जैसे शुरुआत में हमने कहा था, पहले साथ रहती थी, चीज़ें हमारी समझ में आ जाती थी, कोई ना कोई बता देता था, लेकिन अब छोटे परिवार हैं, न्यूक्लियस परिवार हैं, और माँ बाप जिम्मेदारी के लिए, नौकरी के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को फिर हम ऐसे ही नहीं छूट सकते, समय पे और परिस्थितियों पे उनके लिए हमें स्टैंड लेना पड़ेगा, एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, ओपिनियन लेनी पड़ेगी और बच्चे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। कि मैडम चलते चलते कुछ और कहना चाहें?
1: बस यही कि अपने बच्चों के फ्यूचर बनाने के चक्कर में, करियर बनाने के चक्कर में इतने मत गुम हो जाइए कि उनका प्रेजेंट ही गड़बड़ा जाए।
0: खत्म हो जाए उसमें, तो वर्तमान में जिए, उसका आनंद
1: बिल्कुल
0: लीजिए और जीवन का भी आनंद लीजिए। आज हमारे साथ जुड़ी थी डॉक्टर सारिका गौतम साहब, वरिष्ठ मनोचिकित्सक, आकाश सिम्स हॉस्पिटल। जानकारी आपको हमने बताई युवतियों के व्यक्तिगत साफ सफाई, शारीरिक बदलाव और मानसिक स्वास्थ्य पर। अभी इतना ही, अब विदा लेते हैं डॉक्टर साहब। आपका आने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स मथुरा।
3: सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपने मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली मथुरा। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपने मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली मथुरा।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रजलोक गीत। आज के कलाकार हैं बालकिशन भारती।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट.

0: where dreams take off.
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या?
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रजलोक गीत का। आज के कलाकार हैं बालकिशन भारती।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे श्रोता साथी आनंद ले रहे हैं बालकिशन भारती के द्वारा गाए हुए कुछ ब्रज लोक गीतों का।

0: कार्यक्रम ब्रज लोकगीत अब यहीं समाप्त होता है। आज के कलाकार थे बाल किशन भारती। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। FM 102.2 MHz पर इस समय अपराह्न के 1 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
2: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय पश्चिम बंगाल,

0: गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी दिन में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भाग, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त देखी गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण एक छोटे से अंतराल के पश्चात।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी कि अपराह्न 1:10 पर श्रोता साथी सुनेंगे संवेद स्वरों में देशगान। अपराह्न 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोग, जिसमें होगी चर्चा। विषय होगा घरेलू हिंसा से सुरक्षा और कानूनी सहायता, बरसात में स्वच्छता और संक्रमण से बचाव विषय पर होगी चर्चा। साथ ही आप सुनेंगे पहनावा वार्ता, कैसा हो पहनावा आपकी लाडली का, जानकारी देंगी शेफाली अग्रवाल और इनसे बातचीत करेंगी रश्मि शर्मा। अपराह्न 2:30 पर NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 4:00।

संध्या 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज की बात के अंतर्गत बरसात के मौसम में सड़क पर सावधानी बरतें और मोबाइल का प्रयोग करते समय बरतें सावधानी विषय पर होगी चर्चा। साथ ही आप सुनेंगे भेंटवार्ता, पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में करियर जानकारी देंगे डॉक्टर अतुल सक्सेना और इनसे बातचीत करेंगे सत्यव्रत सिंह। संध्या 6:15 पर किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। कार्यक्रम में होगी चर्चा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से खेत की सुरक्षा एवं खेतों में जल संरक्षण की आधुनिक तकनीकें विषय पर। साथ ही आप सुनेंगे भेंटवार्ता, धान की रोपाई और फसल प्रबंधन। वार्ताकार होंगे सुधीर अग्रवाल और इनसे बातचीत करेंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। संध्या 7:05 पर ब्रजसाहित्यिक कार्यक्रम में देश हमारो क्रम के अंतर्गत मथुरा वृंदावन में परिक्रमा का महत्व विषय पर जानकारी देंगी वार्ताकार लक्ष्मी शर्मा। फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन संध्या 6:45 पर आप सुन सकेंगे। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी प्रस्तुत किया जाएगा संध्या 7:31 पर।

रात्रि 9:15 पर चित्रपट संगीत सुहाने तराने का आनंद आप ले सकेंगे। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम कंट्री वाइड, रात्रि 9:45 पर कार्यक्रम इनसाइड दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात्रि

10 बजे श्रोता साथी सुनेंगे रूपक यात्रा ब्रज की। आलेख मोहन स्वरूप भाटिया, प्रस्तुति होगी टीएन शर्मा की। रात्रि 10:30 पर उपशास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में ठुमरी दादरा गायन आप सुनेंगे कलाकार श्री कामोद मिश्रा जी के द्वारा।

0: अभी श्रोता साथी जानकारी प्राप्त कर रहे थे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम के विषय में। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है समवेत स्वरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशगान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर।

0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुँचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम वनितालोक।

अनजान सी राहों पर चलने का तजुर्बा हुआ तो देखा कि उस राह ने मुझे हुनरमंद राही बना दिया। ये तोहफा है उनकी मोहब्बत का, जिनकी छाया ने जिंदगी का फलसफा सिखा दिया। इन्हीं पंक्तियों के साथ बहनों आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम वनिता लोक में, और मैं हूं आज आपके साथ आपकी सखी सहेली उषा पांडे। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। बहनों कैसी हैं आप? आशा है स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी, और बरसात की इस फुहार के साथ अपने अपने जीवन में आप व्यस्त होंगी। साथियों, मौसम ने करवट ली है, फिर से ठंडी ठंडी फुहार पड़ी है, बरसात हुई है, और आशा है कि आपके मन में एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ जीवन के उन आयामों को छू लेने का फिर से जज्बा शुरू हो गया होगा, एक तरंग आपके अंदर पैदा हुई होगी। चलिए आपसे हम चर्चा करेंगे कुछ बिंदुओं पर, कुछ विषयों पर, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत, और इसी गीत के साथ आप और हम जुड़े रहेंगे इस कार्यक्रम में आगे भी।

साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम वनिता लोक में। इस प्यारे से गीत के बाद हम बात करेंगे आपसे घरेलू हिंसा जो हमारी महिलाओं पर, हमारी बहनों पर होती है, तो घरेलू हिंसा से सुरक्षा और कानूनी सहायता क्या है, इस विषय पर आज हम लेके आए हैं आपके लिए चर्चा, जिसके बारे में जागरूक होना हर महिला और हर परिवार के लिए आवश्यक है। घरेलू हिंसा से सुरक्षा और कानूनी सहायता किस प्रकार हम ले सकते हैं? साथियों, घरेलू हिंसा केवल मारपीट तक सीमित नहीं है। घरेलू जो महिला है, किसी भी महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, अपमानित करना, गाली गलौज करना, आर्थिक रूप से निर्भर बनाकर रखना, मतलब अपने ऊपर निर्भर बना के रखना, उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करने के लिए मजबूर करना, उसे डरा कर रखना, ये घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। कई महिलाएं समाज, परिवार या बदनामी के डर से चुप रह जाती हैं, लेकिन यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हिंसा सहना और किसी समस्या का समाधान नहीं है। हर महिला को सम्मान और सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार है। साथियों, बहनों, भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू है। इस कानून के तहत पीड़ित महिला को सुरक्षा, रहने का अधिकार, आर्थिक सहायता, चिकित्सा सुविधा और कानूनी संरक्षण मिल सकता है। यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो वो पुलिस, महिला हेल्पलाइन, संरक्षण अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या न्यायालय की सहायता ले सकती है। यदि किसी महिला को तत्काल खतरा महसूस हो तो बिना देर किए

पुलिस से संपर्क करना चाहिए। अपने किसी विश्वसनीय परिजन, मित्र या पड़ोसी को भी स्थिति की जानकारी देना उपयोगी हो सकता है। यदि संभव हो तो धमकी, चोट या प्रताड़ना से जुड़े प्रमाण सुरक्षित रखें, क्योंकि वे कानूनी प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। साथ ही समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाओं को नज़रअंदाज न करें। यदि आपके आसपास कोई महिला हिंसा का शिकार है तो उसका मोबाइल नंबर आप लें और पुलिस को सूचित करें। उसका मनोबल बढ़ाएं, उसे उचित सहायता देने के लिए प्रेरित करें। आइए हम सभी मिलकर एक ऐसा समाज बनाने का संकल्प लें जहां हर महिला सुरक्षित, सम्मानित और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन जी सके।

बहनों, बेटियां केवल परिवार की शान नहीं बल्कि समाज के भविष्य की पहचान हैं। उनका व्यक्तित्व उनके संस्कार, आत्मविश्वास और विचारों से निखरता है, केवल पहनावे से नहीं। हमारे समाज में बेटियों के पहनावे को

0: लेकर अक्सर तरह तरह की राय सुनने को मिलती है। कोई इसे परंपरा से जोड़ता है तो कोई आधुनिकता से। लेकिन क्या किसी बेटी का व्यक्तित्व केवल उसके कपड़ों से आंका जा सकता है? क्या पहनावा ही उसके संस्कारों और चरित्र का प्रमाण है? दरअसल आवश्यक ये नहीं है कि हमारी लाडली क्या पहनती है, बल्कि ये है कि वो जो भी पहने उसमें वह सुरक्षित, सहज, आत्मविश्वासी और परिस्थितियों के अनुरूप महसूस करे। साथ ही उसे यह समझ भी हो कि व्यक्तित्व की सबसे सुंदर पहचान उसके संस्कार, शालीन व्यवहार, आत्मसम्मान और विवेक में होती है। तो इसी बात पर चर्चा करने के लिए और आपके साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए पहनावा वार्ता के अंतर्गत हम ये विषय आपके लिए लेके आए हैं, कैसा हो पहनावा आपकी लाडली का। इसमें जानकारी दे रही हैं शैफाली अग्रवाल और उनसे बातचीत कर रही हैं रश्मि शर्मा।
1: बहनों, जब बिटिया सयानी होने लगती है तो एक माँ को हमेशा उसकी चिंता रहती है, उसके खाने पीने की, उसके पढ़ाई लिखाई की, साथ ही साथ उसके वस्त्रों को लेकर भी माँ चिंतित रहती है कि उसका पहनावा किस तरीके का हो। और अब चूंकि जमाना बदल रहा है, अब थोड़ा सा वेस्टर्न के साथ साथ वेस्टर्न आउटफिट भी हमारी जो युवतियां हैं वो पसंद करती हैं, लेकिन उनमें भी कुछ एक बातें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी। और साथ ही साथ हमें ये भी सामंजस्य स्थापित करना होगा कि फैशन भी हमें जो आज के समय की मांग है उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो चलिए बहनों, आज आपकी जो बिटिया है उसके जो वस्त्रों का चुनाव किस प्रकार से करना चाहिए, उसी संबंध में आज हमें जानकारी देंगी श्रीमती शैफाली अग्रवाल। शैफाली जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जब चेहरा सुंदर हो, परवरिश संस्कारों के अनुरूप हो, अदा में तहजीब झलके, आवाज में संगीत गुला हो, परिधान में परंपरा और शालीनता हो, तो बिना श्रृंगार के भी सुंदर लगता है आपकी लाडली का रंग रूप।
1: शैफाली जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि फैशन और खूबसूरती, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है?
2: देखिए, खूबसूरती हमेशा फैशन की भांति में चलती है। अगर आप खूबसूरत दिखना चाहती हैं और खूबसूरती को नया अंदाज देना चाहती हैं, तो आपको फैशन की हर अदा पर नजर रखनी होगी, पर एक अपनी सीमाओं को ध्यान में रख करके।
1: जी, और जैसा कि आप देख रही हैं कि आधुनिक हम होते जा रहे हैं और हमारा जो पहनावा है उस पर भी हम ध्यान देते हैं कि भाई जो हमारा पहनावा है वो भी आधुनिक हो, तो आधुनिकता के साथ साथ हम परंपरा का कैसे ध्यान रखें, क्योंकि हमारी परंपराएं भी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, तो इन दोनों का जो सामंजस्य है वो किस तरीके से हम स्थापित करके अपने ड्रेसेस का चुनाव कर सकते हैं?
2: देखिए, परिधान आधुनिक हो पर उसमें अश्लीलता नहीं झलकनी चाहिए। शुरू से हम बच्चों में जैसी आदत डाल देते हैं वही उनके व्यवहार में आ जाती है। नारी का आभूषण वैसे ही उसकी लज्जा है। आज की पीढ़ी कॉम्बिनेशन चाहती है जो फैशन ट्रेंड बन गया है। जैसे आजकल जमाना मिक्स एंड मैच का है, यदि बच्चे चाहते हैं जीन्स पहनना तो उनके साथ लॉन्ग कुर्ती पहनी जा सकती है, शॉर्ट स्कर्ट पहनना चाहे तो उसके साथ पजामी या जिसको हम लैकिंग बोलते हैं वो पहनी जा सकती है। इसी तरह के हम साड़ी के साथ डिजाइनर ब्लाउज पहन के उसमें भी हम आधुनिक लग सकते हैं और उतनी सुंदर दिखाई दे सकती हैं।
1: ये तो आपने बताया कि भाई हम आधुनिक भी होना चाहते हैं और साथ ही साथ हम परंपरा का भी ध्यान रखना चाहते हैं, तो हम किस किस तरीके से परिधान पहनना चाहिए। लेकिन जो हमारी युवा पीढ़ी है उसकी जो सोच है वो कुछ अलग ही है। हमारी युवा पीढ़ी हमारे जो ड्रेसेस हैं उनके हिसाब से क्या सोचती है, क्या चाहती है?
2: देखिए, सबसे पहले हम कहीं भी कपड़े पहन रहे हैं उसमें हमें मौसम, हम किस अवसर के लिए पहनने, ये सब बातें ध्यान रखने चाहिए। जैसे गर्मियों के मौसम में ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें, हल्के रंग जो हमें गर्मी से राहत दिलाते हैं, और टाइट फिटिंग के कपड़े ना पहने, नहीं तो पसीने के कारण एलर्जी वगैरह होने का भी डर रहता है। साथ ही हमें बॉडी टाइप के अनुसार कपड़ों को चुनाव करना चाहिए। यदि हम बहुत हैवी शरीर है तो एकदम टाइट फिटिंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और प्रिंटेड और लंबी धारियों वाले कपड़े पहने जिससे आप पतले दिखाई देंगी। और यदि दुबले पतले हैं तो एकदम फिटिंग वाले ना पहनकर शरीर से चिपकने वाले कपड़े या लाइक्रा वगैरह ऐसे कपड़े ना पहने जिसमें आप और भी ज्यादा पतली दिखाई दें। कोई भी आउटफिट हम खरीदें उससे पहले उसके रंग पर जरूर ध्यान दें। यदि आपका कॉम्प्लेक्शन गहरा है तो लाल, पीले, नारंगी ऐसे चटक रंगों से बचना चाहिए। गोरे रंग के कॉम्प्लेक्शन पर हल्के रंग, गहरे रंग, सभी प्रकार के रंग सूट करते हैं। हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए।
1: शैफाली जी,

0: पारंपरिक के साथ यदि आप आधुनिक भी दिखना चाहते हैं तो किस तरीके का आपका जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से होना चाहिए?
1: देखिए, यदि आप पारंपरिक के साथ आधुनिक भी दिखाई देना चाहिए तो हमें ध्यान रखना चाहिए हम भारतीय हैं। यदि वेस्टर्न लुक भी अपनाना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे हम आपकी लाडली स्कर्ट पहनना चाहती है तो उसकी स्कर्ट यदि वेस्टर्न हो तो आप उसका जो ऊपर का टॉप पहना है वो ट्रेडिशनल हो, यदि टॉप स्टाइलिश हो तो स्कर्ट ट्रेडिशनल हो,
0: जैसे कि जयपुरी प्रिंट का। हाँ,
1: आजकल जैसे कुर्ती वगैरह
0: बांधनी का है,
1: बांधनी कुर्ती वगैरह जैसे चल रही है उसमें ये मतलब जो है हमारा रंग रूप भी अच्छा दिखाई देता है और अश्लील भी नहीं दिखाई देता है
0: जी। और जब हम मार्केट जाते हैं तो अक्सर कर क्या हमारे जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वही ये चाहते हैं कि भाई हम अपनी जो ड्रेसेस हैं वो खुद खरीदें, या फिर वो अपने माता पिता के साथ में भी अगर ड्रेस लेने जाते हैं तो माँ की राय कुछ और होती है, बिटिया की राय कुछ और होती है। तो ऐसे समय में माता पिता अपने बच्चे का परिधान का जब वो चुनाव कर रहे हो तो किस तरीके से उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं?
1: देखिए, टीन एजर्स के फैशनेबल कपड़े और स्टाइल पर आप जितना रोक टोक करेंगे वे उसे उतना ही ज्यादा अपनाएंगे। बेहतर होगा कि उन्हें उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में समझाएं और उनके कपड़े चुनाव करते समय उनका सही हम मार्गदर्शन करें, तभी वो जो है अपने लिए सही कपड़े जो है वो उसका चुनाव कर सकते हैं। और हम जो है उनका चाहते हैं कि आपकी लाडली जीवन में एक मुकम्मल स्थान हासिल करे, कामयाब बने, तो उसका हर कदम पे आप उसकी सहभागी, मार्गदर्शक और उसका हमदर्द बनना चाहिए।
0: देखिए शेफाली जी, जो कि आधुनिकता की जो हम सभी में एक आ गई है कि भई हम आधुनिक दिखना चाहते हैं, उसके लिए हम अपने वस्त्रों का चुनाव या फिर हमारे मेकअप हो या फिर हमारे स्लीपर्स ही क्यों ना हो, हम सभी चीजों में चाहते हैं कि कहीं कोई मतलब हमारा एक अपना स्टाइल हो। अब जब आप स्टाइल की बात करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारा पैसा उसके लिए खर्च भी करना होता है। सपोज आप पूरा ऊपर से नीचे तक कोई चीज अपनी ड्रेस ले रही है, उसके मैचिंग चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हर चीज अलग से खरीदनी होगी। अब जो लोग मिडिल क्लास के हैं या जो मध्यवर्गीय हैं, उन लोगों के लिए तो ये एक बड़ी कहना चाहिए कि वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो भाई क्या महंगे कपड़े ही आपको अच्छा लुक देंगे? भाई उन लोगों के हिसाब से भी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो वो अपना आधुनिक भी दिख सकते हैं, अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें बहुत ज्यादा खर्चा भी ना उठाना पड़े।
1: देखिए, जरूरी नहीं है कि महंगे कपड़े आपको अच्छा लुक दें, थोड़ी सी समझदारी से भी आप खूबसूरत नजर आ सकती हैं। आउटफिट खरीदते समय कीमत क्वालिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है उसकी फिटनेस। यदि ये ड्रेस फिट स्मार्ट और आप पर सूट करती है तो कम कीमत होकर भी वो स्टाइलिश लुक देगी। और आजकल ब्रांडेड जो कपड़े हैं वो खरीदे जा सकते हैं, ब्रांडेड भी होते हैं साथ ही उनकी कीमत भी कम होती है और उसमें वैरायटी भी हमको ज्यादा मिल जाती है
0: जी।
1: तो आजकल जो युवा पीढ़ी है वो ज्यादा ब्रांडेड कपड़े पहनना इसीलिए ज्यादा पसंद करती है, उनका जो आकर्षण होता है वो ब्रांडेड कपड़ों की ओर इसीलिए ज्यादा होता है।
0: और जबकि जरूरी नहीं है, ब्रांडेड कपड़े माना कि बहुत अच्छे होते हैं, जो भी अच्छी कंपनी से आप कोई भी चीज लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटी दुकानों से की गई खरीदारी भी
1: हमारी अच्छी हो जाती है। बस यही आपका कपड़ा जो है वो आपने पहना है वो सूट करता हो, जो देखने वाला है उसकी आंखों को भी अच्छा लगे और आप भी उसमें जो है आकर्षक दिखाई दें।
0: मान लीजिए अगर किसी की बिटिया थोड़ी सी शर्मीली है और वो खुद को आकर्षक दिखाना चाहती है तो वो अपने मतलब किस तरीके के कपड़े पहनेगी, किस तरीका उसका स्टाइल होना चाहिए और क्या आकर्षक दिखने के लिए क्या वेस्टर्न स्टाइल को ही अपनाना ज्यादा जरूरी है?
1: देखिए, सबसे पहले ये ध्यान में रखें कि जो भी आपने पहना है या आपकी बिटिया को आप जो पहनाना चाह रहे हो उसमें वो कम्फर्टेबल महसूस करे और तभी आकर्षक दिखेगी, तभी वो उसके साथ ही आकर्षक दिखने के साथ साथ स्टाइलिश भी दिख सकती है। यदि आप ये सोचती हैं कि ज्यादा ऊंचे ऊंचे उसको टॉप पहनाएंगी या लो वेस्ट जीन्स पहनकर ही वे सुंदर दिखेगी, यह गलत है क्योंकि फैशन हमेशा बदलता रहता है और स्टाइल वही सूट करता है जो सुविधाजनक लगे। आप जो है सूट पहन के भी आकर्षक लग सकती हैं, सूटों में भी अलग अलग, सलवार सूट में भी अलग अलग स्टाइल आने लगी हैं, उसको अलग अलग स्टाइल से भी पहना जा सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो जीन्स टॉप पहन रही है लड़की वही ज्यादा सुंदर लगेगी, आपकी लड़की जो है आपकी लाडली है वो सलवार सूट साड़ी इनमें ही उतनी सुंदर लग सकती है, बचाए उसकी हम उसको अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्टाइल से पहना सकते हैं, जैसे आजकल चूड़ीदार सलवार है या जैसे बांधनी के जो कुर्ते चल रहे हैं उसको पहन करके उसमें जो है नग वगैरह का जो प्रिंट चल रहा है वर्क करवा करके

0: ये उसको अच्छी तरह से हम कलर का उसके रंगों को चुनाव करके उसको सूट वगैरह पहना सकते हैं, उसमें भी वो अच्छी लग सकती है।
1: यानी कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहली बात कि हमारे बच्चों का फिगर कैसा है, वो मोटे हैं या पतले, उस हिसाब से हमें दूसरा सीजन को हमें ध्यान रखना होगा कि सीजन के हिसाब से कपड़े
0: बच्चे चुने
1: और उनका रंग कैसा है। साथ ही साथ ओकेजन को भी ध्यान में रखकर आप अपने बच्चों को कपड़े पहनाएं।
0: ऑफिस जा रही है यदि आपकी बिटिया, तो उसको ये नहीं है कि आप जो है कोई ऐसा परिधान पहना दे जो वो हंसी का पात्र बने ऑफिस में जाके। ऑफिस में जा रही है वो उसी तरह का परिधान पहने, स्कूल जा रही है तो उसी तरह का, या पार्टी में जा रही है तो वो उसी तरह का, जैसा वक्त हो जैसा मौका हो अवसर के अनुसार ये परिधान का चुनाव करना चाहिए।
1: जी तो शेफाली जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई और हमें बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आपने सुनी ये पहनावा वार्ता के अंतर्गत वार्ता, कैसा हो पहनावा आपकी लाडली का, जानकारी दे रही थी शेफाली अग्रवाल और इनसे बातचीत कर रही थी रश्मि शर्मा। बहनों, बरसात का मौसम शुरू हो गया है, फुहारें पड़ने लगी हैं, मौसम ने करवट ली है, कभी तेज़ बारिश कभी ठंडी ठंडी फुहार। बरसात का मौसम जहाँ ठंडक और हरियाली लेकर आता है बहनों, वहीं कई तरह के संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है, ये आप और हम दोनों ही जानते हैं। इसलिए इस मौसम में थोड़ी सी सावधानी हमें स्वस्थ रख सकती है, जो कि पहली प्राथमिकता है किसी भी बदलने वाले मौसम से पहले की। सबसे पहले हमेशा स्वच्छ और सुरक्षित पानी का ही सेवन करें। यदि पानी की शुद्धता पर संदेह हो तो उसे उबाल कर या उचित तरीके से शुद्ध करके ही पिएं। खाने पीने की वस्तुओं को ढक कर रखें। खुले में बिकने वाले कटे हुए फल या लंबे समय से खुले रखे हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें। अक्सर हमारे बच्चे बाजार में जब हम जाते हैं तो जिद करते हैं, हम भी कहीं ना कहीं अपने मन के वशीभूत होकर के इस तरह का काम कर लेते हैं, बाजार में खुली बिकने वाली चीज़ों का सेवन कर लेते हैं और कुछ ही समय बाद हमारा जो पेट है वो खराब हो जाता है या किसी भी तरह की परेशानी हो जाती है, हम संक्रमित हो जाते हैं। बारिश में भीगने वाले जो लोग होते हैं, भीगने के बाद जल्द से जल्द सूखे कपड़े यदि नहीं पहनते तो लंबे समय तक गीले कपड़े या जूते पहनने से त्वचा संबंधी संक्रमण फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोने की आदत हमें बनानी चाहिए, विशेषकर भोजन करने से पहले और शौचालय के बाद। घर और आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि जमा हुआ पानी मच्छरों के पनपने का सबसे बड़ा कारण होता है। इससे डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। पानी की टंकियों, कूलरों और गमलों की नियमित सफाई करें, देखें कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो रहा हो। आवश्यकता होने पर मच्छरदानी या मच्छर रोधी उपायों का उपयोग करें। बरसात के मौसम में संतुलित और ताज़ा भोजन करें। मौसमी फल, पौष्टिक आहार शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। यदि तेज बुखार, लगातार दस्त, उल्टी, त्वचा पर चकत्ते या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण आपको दिखाई दें तो स्वयं दवा लेने की बजाय तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर को दिखाएं। याद रखिए, आपकी ये जो छोटी छोटी सावधानियां हैं ये बड़े संक्रमणों से हमें बचा सकती हैं। स्वच्छता अपनाइए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए। साथियों, यदि हम स्वस्थ हैं तो हम औरों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। हमें खुद तो इन छोटी छोटी बातों से जागरूक होना चाहिए, साथ ही अपने साथियों को जागरूक करना चाहिए। जिस तरह से हम और आप आपस में चर्चा कर रहे हैं प्रत्येक विषयों को लेकर के, अलग अलग विषयों पर, जैसे आज बरसात में हम किस तरह से संक्रमित हो जाते हैं, हमें बरसात अच्छी लगती है, हम भीगते हैं, आनंदित होते हैं, मौसम भी बदलता है, हमें ठंडक मिलती है और साथ ही साथ चारों ओर हरियाली पनपने लग जाती है। हरा भरा बागान देख करके, बगीचा देख के, पेड़ पौधे देख करके हमारा मन प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित होता है। लेकिन हर बात का एक साइड इफ़ेक्ट होता है। यदि कुछ चीज़ें हमें खुशियाँ देती हैं तो अगर असावधानी हम करते हैं उन खुशियों के साथ में, तो हमें दुख का सामना भी करना पड़ता है और वो दुख है हमारा बिगड़ता हुआ स्वास्थ्य। तो आशा है हमारी चर्चा के बाद आप जागरूक हुए होंगे, स्वयं भी जागरूक हुए होंगे और अपने परिवारजनों को भी आप जागरूक करेंगे।

इसी चर्चा के साथ, इसी बात के साथ कार्यक्रम का समय हो चला है समाप्ति की ओर। अब हमें अनुमति दीजिए कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की। उषा पांडे का स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोक, FM 102.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी आप आनंद ले रहे थे श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार की जुगलबंदी में फिल्म गुरु के इस गीत का। गीत को लिखा गुलजार ने और संगीत एआर रहमान का। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की जुगलबंदी में फिल्म जान की कसम के इस गीत का भी लिया आपने आनंद। समीर ने गीत को लिखा और संगीत नदीम श्रवण का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला और आखिरी गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म का नाम है नमक हलाल।
1: अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। सफ़र को तय किया आपने अपनी रेडियो मित्र उषा पांडे के साथ FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 2 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: and dedicated critical minerals corridor, Australia and India partnership on cyber critical technologies and supply chains becomes operational. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne, says bilateral relationship entered an expansive era anchored in deep mutual trust. Vice President C.P. Radhakrishnan unveils national mission for sustainable use of high seas fishery resources in Bhubaneswar. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
2: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
3: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
2: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
3: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
3: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है जो दोनों देशों के लिए

0: बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
1: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
0: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
2: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
3: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहे हैं। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
2: And critical minerals.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विथ इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
5: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
4: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
1: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलांग में इंडियन

0: काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि यह सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
1: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले NCR दिल्ली की बात करें, तो NCR दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान है। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
4: चलो, मेरी फ्लाइट है।
5: आराम से मैडम।
4: क्या
5: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
6: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
7: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कम्फर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Book your tickets now. Noida International Airport, जहां सपने भरे उड़ान।
3: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग पर। प्रस्तुत है NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी जोहार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
3: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लवण्य कश्यप।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
2: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं। और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी, उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
2: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबियलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
3: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत
2: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और

0: पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं, ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
1: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
0: बिल्कुल।
1: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
0: जी।
1: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
0: जी जी जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4,850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
1: माना जाता है श्रोताओं की इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2,800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
0: जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
1: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
0: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
1: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
0: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
1: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वलय सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: आज का प्रश्न है, क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
0: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

0: भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले से रहते थे।

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। ये नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: अरे वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है।
1: इसने मेरी काली और लाल दोनों मटकियां तोड़ दी है। हाँ
2: अरे धृताची।
3: हाँ भैया।
2: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दिया।
3: अच्छा।
0: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो, अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
2: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
4: अरे भाई ये क्या हो रहा है आज? अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? अब तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
2: जी,
4: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
2: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियां टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़इयों और लोहारों के घर गया है, उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
4: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
2: जी पिताजी।
4: उसमें रखकर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
2: ठीक है।
4: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है, कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
2: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
4: अरे प्रवाहन।
1: जी पिताजी।
4: तुम मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
1: वो पिताजी,
4: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है, कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
1: जी वो
4: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
1: पिताजी हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
0: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे, क्यों देवदत्त?
2: हाँ हाँ पिताजी।
1: और पिताजी हम तो अपने साथ हरिराज और शत्रु मर्दन को भी ले जा रहे हैं।
0: हाँ।
1: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे, खेत बस तैयारी समझिए।
4: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रु मर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
1: जी
4: उन्हें कल हस्तिनापुर जाना है।
0: पर क्यों पिताजी?
4: वहाँ महाराजा हरिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी, वहाँ रथों की दौड़ भी होगी।
0: पिताजी हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
2: जी पिताजी,
0: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं।
4: बहुत अच्छा।
0: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
1: पिताजी देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
0: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
4: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं जौ और चावल ले जाना।
0: जी पिताजी।
4: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
0: अच्छा पिताजी।
4: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं, यही नहीं गुरुकुलों के ब्रह्मचारी, गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
1: अच्छा पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
3: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जाए?

0: रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
1: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
0: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना। सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
2: चल चल बढ़िया है कंगन वाली, पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने,
3: और क्या,
2: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
0: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
2: अच्छा अच्छा चल ठीक है, ले ही आएंगे, अब तो खुश।
1: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो, कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों, चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ

0: इस रास्ते वाले वन में शेरों, चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है।
1: जी
0: अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
2: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पैने तीर भी रख लिए हैं, भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे।
1: और पिताजी, एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
2: भैया, सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेह से भी रथ आ रहे हैं।
1: हाँ,
2: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
0: हाँ, ये तो है।
3: हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
4: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: पूरा कुछ कह रहे हैं।
1: इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
2: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है।
1: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
2: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
1: चलो देखते क्या होता है।
3: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
4: अरे वो देखो वो देखो,
1: क्या
4: रथ की दौड़ शुरू हो गई। देखो
1: तो बांके और सजीले सवार है। वाह वाह
4: वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
5: पहुंच गया।
6: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते थे।

0: अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा। धन्यवाद
1: मित्र। कुलपति का आदेश सुना तुमने?
2: कैसा आदेश मित्र? मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
1: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
2: अच्छा,
1: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
3: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
4: अरे हाँ, चलो पास से देखते हैं।
3: हाँ, चलो।
4: अरे देखो कितना अच्छा घोड़ा।
1: वाह, इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
4: इसे पकड़ लेते हैं। हाँ, इसे पकड़ लेते हैं।
3: चलो।
4: अरे वाह, अरे चलो इसे पकड़ लेते हैं।
3: ये पकड़ा।
1: अरे ये कोलाहल कैसा है?
5: छोड़ दो। ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
1: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
3: अरे चलो भाग चले, आचार्य को बता दे, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
1: अरे रुको तो सही। अरे देखो
3: क्या
1: आचार्य तो वहीं पहुंच गए हैं। और हाँ, वो देखो आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
3: अच्छा हुआ, संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
1: हाँ।
3: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
1: हाँ।
3: उनका प्रभाव, कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
6: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए।

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी एवं सीआईटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

102.2 मेगा हर्ट्स पर इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। संध्या के 4 बजे हमारी दूसरी सभा के प्रसारण में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय संध्या के 4 बजे हैं। अब हमारी दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर लेकर हाजिर है शाहिद। और यहां पर संदेश टू सोल्जर में हमेशा हम बात करते हैं अपने वीर साहसी सैनिकों के बारे में और उनकी गाथाएं हम सुनते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं और हम उनकी जीवनी उनके करियर के बारे में भी जानते हैं और अपने प्रोग्राम में हम उनकी लाइफ में झांक करके उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं और उनके स्ट्रगल को उनके करियर को उनके जोश और जज्बे को भी हम जानने की कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज संदेश टू सोल्जर्स के खास प्रोग्राम में शाहिद आपके साथ। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर। आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल SSB, जो राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता, अदम्य साहस, सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित हैं और इसके अलावा कई सारे कमेंडेशंस एप्रिसिएशंस से भी नवाजे जा चुके हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट SSP। तो बहुत जल्द इस गाने के बाद हाजिर होते हैं और मिलाते हैं आपको आपके आज के हमारे खास मेहमान संदेश टू सोल्जर्स के।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स शाहिद आपके साथ और आज के हमारे खास मेहमान हैं संदेश टू सोल्जर्स में श्री शिवम कुमार सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स के हमारे प्रोग्राम आकाशवाणी रेनबो पर।
1: धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक इन्फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट सेल और FM रेडियो रेनबो का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज हमें मौका दिया गया है कि मैं अपने संदेश को पूरे देश और विदेश के सभी लोगों के साथ साझा कर सकूं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप हमारे पास आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आने का।
1: सर धन्यवाद।
0: आपको बता दें कि श्री शिवम कुमार असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता, अदम्य साहस, सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं और इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स, मेडल्स, कमेंडेशंस और एप्रिसिएशंस सर्टिफिकेट्स तो उनको मिले ही हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो सर एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं संदेश टू सोल्जर्स में और आपसे जानना चाहते हैं कि सर आपके बारे में हमने जब जाना तो आपने फैशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री हासिल की विद डिस्टिंक्शन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो SSB और NIFT तो काफ़ी मतलब सिमिलैरिटी नहीं है, तो कुछ बताइए इसके बारे में।
1: सर इसके बारे में मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि अंग्रेजी के एक पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय।
0: ओके,
1: मेरी कहानी है कुछ ऐसी ही रही है
0: जी।
1: जब शुरुआत से बचपन से तो यूं मैं नहीं कहूंगा कि मुझे फौज में आने का शौक था
0: जी,
1: लेकिन जब मैं नौकरी कर रहा था NIFT के उपरांत तो हमारे सोसाइटी में एक शहीद मेजर नितेश राय थे।
0: ओके,
1: जो शहीद हुए थे अफगानिस्तान के इंडियन आर्मी के एक मिशन में।
0: Okay.
1: और उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था हमारे सोसाइटी में जिसमें मुझे होस्ट करने का मौका मिला।
0: अच्छा, तो आप उस जमाने में पढ़ रहे थे?
1: नहीं, मैं कॉलेज के बाद में नौकरी कर रहा था।
0: अच्छा,
1: तो उसके जब उस होस्टिंग के दौरान मुझे उनकी पूरी जीवनी जानने का मौका मिला, उन्होंने क्या क्या त्याग किए हैं देश के लिए इसको जानने का मौका मिला, उनके साहस और शौर्य से वो कहीं ना कहीं मेरे हृदय के किसी कोने में जाके बैठ गई
0: जी।
1: उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे भी यही करना है, वर्दी तो धारण करनी है देश के लिए और राष्ट्र सेवा में ही
0: जी। तो जो शहीद मेजर थे वो आपके प्रेरणा स्रोत बने और आप फैशन टेक्नोलॉजी से सीधा सशस्त्र सीमा बल।
1: जी बिल्कुल, फैशन से ये सशस्त्र सीमा बल का जो सफर है
0: जी,
1: उसको
0: जी।
1: उनको मैं शहीद मेजर नितेश राय को डेडिकेट करता हूँ।
0: क्या बात है सर। सर यहाँ ये भी बताइए हमें शिवम कुमार जी के ये जो सफर आपका रहा, मतलब आपने जैसे कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया उससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा, आपने क्या महसूस किया उस वक्त, जो जज्बा आपका रहा होगा वो प्लीज बताइए।
1: उस वक्त जब मैंने ये जाना, उनके जीवन के बारे में जाना, उनके महज 25 साल की उम्र में वो शहीद हो

0: गए और उन्होंने देश के जो के लिए जो किया है, तो ये वाकई में एक प्रेरणा स्रोत था मेरे लिए। मैंने देखा कि आपके व्यक्तित्व के कई ऐसे आयाम हैं जिससे कि आप अपरिचित होते हैं, लेकिन जब आप फौज की नौकरी में आते हैं तो ये विभिन्न आयाम से आप परिचित होते हैं, तो आपको लगता है कि व्यक्ति से बड़ा समाज है, समाज से बड़ा राष्ट्र है।
1: क्या
0: इस जज्बे को मैंने पहचाना जब मैं फौज की ट्रेनिंग में आया, जब मैं फौज में आया।
1: क्या बात है सर, देशभक्ति से बढ़कर मोहब्बत कोई नहीं हो सकती।
0: जी बिल्कुल।
1: तो फिर आपका ये सफर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शन हासिल करने के बाद एक फैशन ग्रेजुएट बनता, फिर सशस्त्र सीमा बल का एक सिपाही बन जाता है, तो वो सफर अब आगे जब शुरू होता है उसके बारे में बताइए।
0: जी, 2018 यूपीएससी में मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। 2020 के जनवरी माह में सशस्त्र सीमा बल एकेडमी में मैं बतौर डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट वहां पे अपनी बेसिक ट्रेनिंग की शुरुआत हुई
1: जी।
0: और एक साल के कठिन परिश्रम के उपरांत, एक साल की कठिन ट्रेनिंग के उपरांत, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग थी मेरे लिए क्योंकि मैं फिजिकली उस टाइम पर बहुत ज़्यादा साउंड नहीं था, उस ट्रेनिंग के उपरांत मैंने जाकर के फिर वो तमगा हासिल किया। मैं असिस्टेंट कमांडेंट बतौर फील्ड में उसके बाद मेरी नियुक्ति हुई।
1: जी जी, तो वो सफर जिस तरीके से रहा, आपको फैशन एक बिल्कुल ही अलग एक फील्ड हो गई और उसके बाद आप फौज का एक हिस्सा बनते हैं, आप एक फौजी बन गए, एक सोल्जर बन गए, तो वो जो हथियारों के साथ जब आपका एक रिश्ता बना तो वो कैसा महसूस आपने किया? एक आम जनमानस जो है, एक आम इंसान जो है, वो इस चीज़ को शायद आपकी बातों से कुछ महसूस कर पाए, उस जज्बे को।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो हमें एक चीज़ सिखाई जाती थी
1: जी,
0: जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी
1: जी,
0: माता और मदरलैंड इससे ये स्वर्ग से भी ऊपर है, और इस चीज़ को आपके हृदय में, आपके खून में, आपके अंतर मन में अंतर्निहित कर दिया जाता है ट्रेनिंग के अंदर
1: जी।
0: और यही मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैंने ठान लिया कि आज से मेरी दो माएँ हैं
1: जी,
0: एक मेरी माँ अपनी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है और एक मेरा
1: मातृभूमि।
0: मातृभूमि,
1: क्या बात है सर। यही जो आपके जोशीले और जज्बात से भरे हुए जो जज्बा है आपका, जो शब्द हैं आपके, आप इस मौके पर, अभी हम आगे बढ़ेंगे, आपके करियर को जानेंगे, आपके अचीवमेंट्स को जानेंगे, आप हमारे जो देश का युवा है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे इसी जज्बे के साथ?
0: जी, मैं देश के युवाओं के लिए एक पंक्ति है जो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा
1: जी,
0: कि देश के युवाओं में अपने आप के अंदर, उसके अंदर पौरुष होना चाहिए। पौरुष सबसे पहले युवाओं में जरूरी है, क्योंकि जिसके अंदर पौरुष है, जिसके अंदर पुरुषार्थ है, आप उसी से, आप उसी के प्रति आप अपनी इज्जत रखते हैं, आप उसी के प्रति अपनी सांत्वना रखते हैं। अगर आपके अंदर पौरुष नहीं होगा तो आप समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये सब सर्वोपरि है। आप अपने अंदर पुरुषार्थ को धारण करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो फौज की सेवा में आके हो, या आप वो टीचर बन के हो, या आकाशवाणी की सेवा में जैसा आप कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ होना सबसे आवश्यक है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए, और हम समझते हैं कि जो आपने बात की बहुत ही सच्ची और बहुत ही दिल से आपकी जो बात निकली है वो दिल तक पहुंचेगी, हमारे माध्यम से भी और आपके जरिए भी, दिल से दिल तक, आकाशवाणी के माध्यम से। आपने जो एसएसबी जब ज्वाइन किया तो आपने बताया कि किस तरीके से आपकी ये शुरुआत हुई, लेकिन आपने इसके अलावा ज्वाइन करने के बाद भी कई प्रोफेशनल कोर्सेज किए, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव और सिक्योरिंग, आपने पहली पोजिशन भी हासिल करी थी। उसके अलावा आपने GIS कोर्स किया SSB की अकेडमी भोपाल से, तो वो जो एक कोर्स आपने किया आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, वो कितना, मतलब क्या बहुत खतरनाक, बहुत आसान था? क्योंकि देखने में, पढ़ने में नहीं लग रहा कि बहुत आसान रहा होगा।
0: जी बिल्कुल, ये भारत के बदलते सुरक्षा परिदृश्य में
1: जी
0: एक्सप्लोजिव IED जैसी घटनाएं आमतौर पर कई ज्यादा देखने को मिलती थी, तो बतौर अ सोल्जर ये एक व्यक्ति को ट्रेन होना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा एरिया में कहाँ एक्सप्लोजिव लगाया जा सकता है, कैसे एक्सप्लोजिव को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन चीज़ों के विषय में इस कोर्स में बताया गया, ताकि उस क्षेत्र की जो जनता है उस क्षेत्र में फोर्स ऑपरेट कर सके और उस क्षेत्र की जनता को सुरक्षित कर सके।
1: जी, तो शिवम कुमार जी, हमें ये भी बताइए कि आपने GIS कोर्स, क्योंकि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कोर्स आपने किया, उससे आपकी ट्रेनिंग के लिए और आपकी जो सेवाएं हैं उसमें किस तरीके से आप उसको और बढ़ा सके, सेवाएं अपनी और बढ़ा सके आप?
0: जी बिल्कुल, ये हमारे जनरली जो हमारा इलाका होता है जहां पे कि हम अपनी सेवाएं देते हैं, वो बहुत सुदूर और रिमोट एरियाज में रहता है, तो वहाँ पे हमको एक रेडी टू अवेलेबल एक मैप चाहिए होता है जिसको कि हम डिजिटली देख सकें और देख सकें कि कहाँ कहाँ हमारी तैनाती हुई है। तो इसके लिए ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम अपने ट्रूप्स के मूवमेंट पे नज़र रख सकें।

0: वो कहाँ कहाँ हमारी तैनाती है इस पर नजर रख सकते हैं, इसके लिए जी एस कोर्स महत्वपूर्ण है।
1: तो आप ऑलरेडी एक सहायक कमांडेंट थे, उसके बाद भी एसएसबी के ही आप जरिए ये सब कोर्सेस कर पाए, इतना आगे और बढ़ पाए, अपनी स्किल्स को और ज्यादा बढ़ा पाए और इम्प्रूव कर पाए, तो इसमें फिर आपको आगे भी इस तरीके के फिर मौके मिले जहां पर आप अपनी सेवाएं उस तरह से दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो हमारे एक जेंटलमैन को वो एक फौजी में तब्दील करती है, लेकिन दैट इज द बेस, वो बेस है, फाउंडेशन है, उसके ऊपर आपको लगातार कोर्सेज करने हैं ताकि आप एक हुनरमंद और एक आप एबल ऑफिसर बन सकें, तो इसके लिए सारे कोर्सेज,
1: मतलब आप अपनी निपुणता को लगातार जो है बढ़ाते रहें,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उसमें एडिशन करते रहें। इसी एडिशन में आपकी एक बहुत जबरदस्त जो आपने ग्वालदाम उत्तराखंड में की कमांडो ट्रेनिंग भी आपने की इन सब के साथ साथ, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
0: जी कमांडो, कमांडो जो है वो एक फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से आपको सशक्त बनाता है कि आप विषम परिस्थितियों में, दुर्गम पहाड़, दुर्गम वनों में आप लंबे लंबे ऑपरेशंस कर सके, अपनी ट्रूप्स को मोराल को हाई रख सके और ऑपरेशंस में सामरिक रणनीति के साथ ऑपरेशन में विजय हासिल कर सके।
1: तो सर ये तो ट्रेनिंग बहुत टफ रही होगी, कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस इस कमांडो ट्रेनिंग वाला?
0: जी बिल्कुल, ये ट्रेनिंग तो टफ होती है, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ट्रेनिंग तो बहुत टफ रहती है, लेकिन आपके अंदर जो वो जज्बा होना चाहिए वो ऐसा निहित कर दिया जाता है उस्तादों के द्वारा, इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा, कि वो समय धीरे धीरे पार हो जाता है और आप जब बिगर पिक्चर की ओर देखते हैं, जब आप देखते हैं कि यहां से जब आप तप के जाएंगे, जब आप निखर के जाएंगे यहां से, तो फील्ड में इसके कई फायदे होते हैं, जो कि फायदे आज हमें महसूस कर रहा हूं मैं।
1: सर आपने इतनी सब ट्रेनिंग हासिल करी, आपने अपनी एक बहुत ही एक अलग इमेज, एक बहुत ही बड़ी पोजीशन आपने बनाई, और इसके ही एवज में आपको अपनी सेवाओं के बदले ही बहुत ज्यादा अवार्ड से भी नवाजा गया, आपको बहुत सारी कमेंडेशंस एप्रिसिएशंस भी मिले, और साथ ही साथ आपने अपनी जो लीडरशिप स्किल थी, ऑपरेशनल एक्सीलेंस थे, और खास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस, उसमें भी आपने न सिर्फ उनको अच्छे से किया बल्कि उनमें निपुणता हासिल करके एक अपनी एक ऐसी पोजीशन बनाई जिसकी वजह से आपको वो रिकॉग्निशन, वो अवार्ड्स, वो मेडल्स से नवाजा गया।
0: जी बिल्कुल, मेरा ये सौभाग्य था कि एकेडमी से निकलते ही मुझे पहली ही पोस्टिंग एंटी नक्सल ऑपरेशंस के थिएटर में मिली
1: जी,
0: जो कि बिहार के लखीसराय जिले में था, और क्योंकि मैं झारखंड बिहार से मेरा ताल्लुक है
1: जी,
0: तो सन ऑफ सॉइल होने का फायदा मुझे वहां पे मिला, मतलब वहां पे लोगों की क्या पीड़ाएं हैं, नक्सल का मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं विलेजर्स के साथ, कैसे उनको ब्रेन वॉश करते हैं, ये समझना मेरे लिए ज्यादा आसान था क्योंकि लोग मुझसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते थे, बींग अ लोकल मुझे ये फायदा मिला। और फिर फाइनली जो आगे की रणनीति थी, जो सीनियर्स का सपोर्ट था, उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग हुई।
1: और आगे हम आपसे जानेंगे कि जो एंटी नक्सल ऑपरेशन आपने किए, एंटी माइस्ट ऑपरेशंस भी आपने किए, और बिहार का एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही यादगार एक ऑपरेशन था जिसकी ही बदले में आपको उस सेवा की ही एवज में पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया, और हम उसके बारे में आपसे जानेंगे आगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहां पर लगातार बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमारे सुनने वालों के, हमारे श्रोताओं के, आपके लिए। आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे खास मेहमान हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल।

0: भारत तुझे सलाम। देश के नंबर वन रेडियो आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर शाहिद के साथ, और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट खास मेहमान हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर, बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगा एक बार फिर आपका आज के इस बहुत ही स्पेशल शो में, जिसमें जोश से भरपूर श्री शिवम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं।
1: धन्यवाद साहिद जी।
0: और मैं अपने लिसनर्स को, अपने श्रोताओं को बता दूं कि आप हमें, हमारे पास लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं, और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, जिन लोगों को अभी तक मैं नंबर नहीं बता पाया था। और आप साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में हमसे हैं जुड़े हुए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से हुआ सफर शुरू बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शन के साथ श्री शिवम कुमार का, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वो बन गए एक जोशीले जांबाज सिपाही सशस्त्र सीमा बल के। सर, आपकी पूरी सर्विस में अभी तक की, आप अभी भी सर्विस में हैं, और सर्विस के दौरान आपकी पोस्टिंग रही SSB एकेडमी भोपाल मध्य प्रदेश में और 32 बटालियन SSB बिहार में, और फिलहाल आप सर्व कर रहे हैं CI & JW स्कूल ग्वालदाम। तो सर, ये जो आप प्रेजेंटली जो सर्विंग है आपकी, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, CI & JW स्कूल में आप क्या करते हैं और ये क्या है?
1: काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ग्वालदम में, उत्तराखंड में स्थापित है। ये हमारे इन सर्विस ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे कि जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसे कि सभी बलकर्मी इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक उस कोर्सेज को पूरा करते हैं ताकि वो अपनी सेवा में और दक्षता हासिल कर सकें। तो हमारे CI & JW स्कूल ग्वालदम में माउंटेनियरिंग विंग है, जहाँ पे कि मैं गर्व से कहना चाहूंगा कि SSB की टीम माउंट एवरेस्ट की सीमाओं पर भी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर
0: जी
1: अपना विजयी तिरंगा फहरा चुकी है।
0: बहुत खूब सर, क्या बात है।
1: इसके अतिरिक्त वहाँ पे एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग होती है, कमांडोज की ट्रेनिंग होती है, बहुआयामी ट्रेनिंग सेंटर है ये।
0: तो आप इस ट्रेनिंग सेंटर में

0: एज ए ट्रेनर अपनी सेवाएं दे रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं यहां पे बतौर इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं।
0: जी, तो सर किस तरीके का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप पहले सर्व कर चुके हैं, उसके बाद फिर आप अब ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो सीखना और फिर सिखाना, इन दोनों में कितना अंतर आप पाते हैं और क्या ज्यादा कठिन आपको लगता है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही का अपना अपना महत्व है।
0: जी,
1: जिस व्यक्ति ने धरातल पर कार्य किया है, जिसे धरातल की जो भी कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, वो पता है, वह बेहतर तरीके से उसको अपने आने वाली पीढ़ी को या जो भी ट्रेनीज रहते हैं उसको बता सकता है। और यही करने की मैं कोशिश करता हूँ, जो भी मैंने ग्राउंड में अपने अनुभव से और जो हमारा एक वहाँ पे टेन्योर रहा है उससे सीखा है, उसको ट्रेनीज को बताने की मेरी चेष्टा होती है, ताकि वो ग्राउंड के लिए रेडी बन सके।
0: जी, अच्छा शिवम कुमार जी, हम यहाँ पर एक बात जानना चाहेंगे कि एक जब फौजी बन रहा होता है, तो उसके दिल में क्या अरमान, क्या जज्बा होता है देश सेवा को लेकर के? क्या वो सब चीज़ें चाहता है कि वो जाएगा फ्रंट पर और जैसे दुश्मनों का मुकाबला करेगा, और वो बिल्कुल एकदम बेखौफ होकर के, निडर, बिल्कुल साहस के साथ उनका सामना करेगा, भले ही फिर वो अपनी जान की परवाह ना करे, कुछ भी हो जाए, वो जज्बा कैसा होता है?
1: बिल्कुल शाहिद जी, इसमें ऐसा है कि जब हम बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत धीरे धीरे हमारी नौकरी आदि बढ़ती जाती है,
0: जी,
1: तो हमें ये समझ में आ जाता है कि एक फौजी के जीवन का ध्येय वाक्य होता है कि लड़ाई ना तो अधूरी होती है और ना ही अधूरे मन से लड़ी जाती है।
0: क्या बात है!
1: तो एक फौजी अपने पूरा जीवन न्यौछावर करता है, इसी के लिए वो तपता है, ताकि जब मौत सामने नाच रही हो
0: जी,
1: तो फौजी उसका डट कर सामना करे और अपने देशवासियों का, अपने राष्ट्रवासियों का, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा उसे दिया गया है
0: जी,
1: उसे बखूबी निभाए।
0: क्या बात है! ये जोशीले स्वर आ रहे हैं हमारी तरफ श्री शिवम कुमार, जो है असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर, ये जज्बा और ये जोश आप जो जिस तरीके से हम महसूस कर रहे हैं आपको देख करके और आपसे सुन करके, तो इस जज्बे के साथ ही हमारा युवा अगर इसमें जाना चाहता है तो किस तरीके से आप उसको गाइड करना चाहेंगे?
1: जी, युवाओं के लिए सशस्त्र सीमा बल में जाने के तीन रास्ते हैं।
0: जी,
1: अगर कोई कांस्टेबल लेवल पे भर्ती होना चाहता है तो SSC द्वारा GD की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसकी मैट्रिकुलेशन होती है।
0: ठीक है।
1: इसके उपरांत कोई अगर सबऑर्डिनेट ऑफिसर या सब इंस्पेक्टर के पद पे जाना चाहे
0: जी,
1: तो SSC द्वारा CPO की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होता है किसी भी स्ट्रीम में। और बतौर डायरेक्ट क्लास ए ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट अगर इसमें कोई जाना चाहे
0: जी,
1: तो UPSC द्वारा आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन करवाई जाती है, जिसके लिए मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है।
0: ओके, जैसे कि आपने UPSC पास करके
1: जी बिल्कुल
0: एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आपने ज्वाइन किया।
1: जी बिल्कुल।
0: लगातार हमारे पास हमारे आज के मेहमान श्री शिवम कुमार के लिए यहाँ पर मैसेजेस का सिलसिला लगातार जारी है। शिवम कुमार जी, मैं आपको वो मैसेज पढ़ के सुनाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे आपका जो बहुत ही ज़्यादा एक यादगार मैं कहूँ, और वो हर तरह से यादगार एंटी माइस्ट ऑपरेशन आपने जो किया लखीसराय बिहार में फरवरी 2022, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कितना क्रिटिकल था, वो ऑपरेशन कितना कामयाब था और कितना खतरनाक था वो ऑपरेशन।
1: जी बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे अपनी नौकरी के पहले एक दो वर्षों में ही
0: जी
1: ऐसे एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल होने का मौका मिला, और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा श्री सोमी जोशी सर, जो इंस्पेक्टर जनरल थे
0: जी,
1: श्री दीपक सिंह जो मेरे बटालियन के कमांडेंट थे 32वीं वाहिनी के, इसके अतिरिक्त मेरे जो सीनियर्स थे श्री नरपत सिंह
0: जी,
1: श्री जसवीर सिंह तोमर, श्री गुलशन झा, और जो मेरे सबऑर्डिनेट्स और कलीग थे ऋतुराज, अरविंद
0: जी,
1: राणा और प्रदीप का, जिन सबके टीम वर्क ने, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे ग्रूम किया इस चीज के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था फौज के लिए, मुझे ग्रूम किया ताकि मैं इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकूं, लीड कर सकूं और विजय हासिल कर सकूं।
0: जी, और आपको हम बताना चाहेंगे कि शिवम कुमार जी हमारे पिछले संदेश टू सोल्जर्स में कुमार ऋतुराज जी भी हमारे साथ इस शो में मौजूद थे, तो वो आपके सीनियर थे, उन्होंने भी बहुत गाइड किया आपको।
1: जी जी बिल्कुल, वो मेरे साथ काम करते थे, वो मेरे सबऑर्डिनेट थे और उनका भी सहयोग रहा है इस चीज में।
0: जी, तो हम यहां पर ये जानना चाहेंगे ये ऑपरेशन किस तरीके से आपने कंप्लीट किया और कितना टफ था, कैसे प्लानिंग करी और कितने चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा, आपका टीम वर्क कैसा था?
1: जी बिल्कुल, सर्वप्रथम यह है कि किसी भी ऑपरेशन को
0: जी
1: सिर्फ आप असले और बारूद के बल पे आप नहीं जीत सकते हैं। ऑपरेशन जीता जाता है टीम वर्क से, साथियों के सहयोग से
0: जी,
1: एक उचित मार्गदर्शन से और सामरिक रणनीति से।

0: इस ऑपरेशन में भी हमने सबसे पहले जो किसी भी ऑपरेशन का मूल आधार होता है वो है इंटेलिजेंस इकट्ठा करना।
1: जी
0: सबसे पहले हमने इंटेलिजेंस इकट्ठा की माओवादियों के बारे में, जिस एरिया में मैं काम करता था
1: जी
0: लखीसराय बिहार में, वहां जितेंद्र कोड़ा, विनोद कोड़ा और अर्जुन कोड़ा, ये सब आतंक के प्रतीक थे जिनके ऊपर 50 से अधिक हत्याओं के मामले चल रहे थे। ये सभी नक्सली टीम के मेंबर्स थे और 50 से अधिक हत्याओं के इन पे मामले थे। हमने उनके बारे में आसूचना हासिल की, इंटेलिजेंस हासिल किया उनके बारे में, इसमें कि हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस भी थे
1: जी
0: और टेक्निकल चीज़ों का भी हमने मदद लिया, गैजेट्स का हमने मदद लिया। उसके बाद उनको हमने एक चक्रव्यूह में फंसाया, जिस चक्रव्यूह में सभी नक्सली फंसते चले गए और फाइनली ये ऑपरेशन, एक लंबी कहानी है ये, एक दिन का सफर नहीं था, 3 महीने तक इसकी तैयारी चली।
1: ओके, तो आपने ये जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स थे इनको न्यूट्रलाइज भी किया और इनको, मतलब इनके उन जो काम थे इनके, उनके जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी उनको भी आपने पूरी तरीके से खत्म कर दिया इस ऑपरेशन के माध्यम से।
0: जी बिल्कुल, उनका उनका जो शैली था उनका, वो किडनैपिंग करते थे, एबडक्शन करते थे
1: जी,
0: लोगों में उनका आतंक था, कभी भी रात में किसी भी घर, किसी के घर घुस जाना और बंदूक की नोक पे उससे ऐसे कार्य करवाना जिसको कि वो नहीं चाहता है करना, और उनके डर के कारण वहां की जो जनता थी कभी खुल के हमसे बात नहीं करती थी, अपनी शिकायतों को नहीं रखती थी। तो इस चीज पे हमने काम किया और फिर ये एक पूरी प्रक्रिया थी जिसको कि हमने किया, इंटेलिजेंस जनरेशन से लेकर के और ऑपरेशन एग्जीक्यूशन तक।
1: और जाहिर है कि जब इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया तो फिर वो जो एक भरोसा जो टूट रहा था वो जनता में भी फिर दोबारा से कायम हुआ होगा।
0: जी बिल्कुल, इसमें ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन के उपरांत असली खुशी तो वही होती है, असली खुशी ये नहीं है कि आपने नक्सली को मार दिया
1: जी
0: या आतंकवादी को मार दिया, असली खुशी वो है कि जब आप जम्मू कश्मीर के जवाहर टनल से निकले, जब आपका कॉन्वॉय निकले
1: जी,
0: या छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा या बिहार के भीमबांध से जब आपकी गाड़ी निकले और तब कोई बच्चा हाथ में झंडा लिए जय हिंद आपको करता है,
1: क्या बात है,
0: तब जो उसके चेहरे की जो वो सुरक्षा का भाव उसके चेहरे पे रहता है, ये आपकी असली जीत है बतौर फौजी,
1: क्या बात है। तो उस झंडे के साथ और उस जय हिंद के नारे के साथ वो जो खुशी मिलती है वो खुशी सबसे बढ़कर होती है।
0: जी बिल्कुल, वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वही है कि जनता का विश्वास जो हमने जीता है
1: जी,
0: वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है और इस ऑपरेशन के माध्यम से हम ये करने में सक्षम हुए थे।
1: जी बिल्कुल, क्या बात है। और यही वो ऑपरेशन था जिसकी वजह से आपको प्रेस्टीजियस पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया राष्ट्रपति द्वारा 2024 में।
0: जी बिल्कुल, इस ऑपरेशन में सबका सहयोग था, सीनियर से लेकर के जूनियर सबका सहयोग था।
1: जी
0: मैं आपको छोटा सा वृतांत इस ऑपरेशन का बताना चाहता हूं।
1: जरूर जरूर।
0: ये हमारी प्लानिंग चल रही थी, जो बिहार के लखीसराय में मैं लोकेटेड था वहां पे मेरी पोस्टिंग थी, तो हमारी प्लानिंग चल रही थी कि वहां का जो नक्सल ग्रुप है
1: जी,
0: उसको कैसे ट्रैप किया जाए, अपने चक्रव्यूह में कैसे लाया जाए। तो जिन सीनियर्स के मैंने नाम बताया आप
1: जी,
0: उनके सानिध्य में हमारी प्लानिंग चली, फिर हमने एक गुप्तचर को प्लांट किया उनके नक्सली टीम में और फिर उसके द्वारा दी गई सटीक जानकारी के बेसिस पे हमें ये पता चला कि दिनांक 2 फरवरी 2022 जो मुठभेड़ का दिन था
1: जी,
0: उस दिन ये नक्सली जंगल में आने वाले थे, कोई एक खास जगह थी जहां पे वो आने वाले थे। तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार थे, हमने पहले से एक लंबी प्लानिंग कर रखी थी। तो हमारी टीम उसके अंदर लॉन्च हुई
1: जी,
0: हम अपने पूरे फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ लॉन्च हुए और हमारे हमारे जो कमांडेंट जो थे श्री दीपक सिंह एवं श्री सुशील कुमार जो लखीसराय बिहार के SP थे एवं श्री मनोरंजन पांडे हमारे कमांडेंट सर थे, उनके मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम लॉन्च हुई, जिसमें नरपत सिंह डिप्टी कमांडेंट, गुलशन झा सर, जसवीर तोमर सर और मैं, और मेरे साथ अलग अलग रैंक्स के लड़के थे, हमने 2 टीमें बनाई। और जंगल की अपनी चुनौतियां हैं,
1: बिल्कुल
0: जंगल में आपको ये नहीं पता होता है कि गोली कब किधर से आएगी,
1: क्योंकि
0: कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। तो हमें एक जनरल इलाका पता था कि यहां पे नक्सली आने वाले हैं
1: जी,
0: तो हम उस इलाके की तरफ बढ़ रहे थे अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ। और 2 तारीख को लगभग 9 बजे सुबह की बात है ये
1: जी,
0: सीधे गोलियों की बौछार हम पे आई।
1: ओके, तो यानी कि आपकी जब आंख खुलती है तो सीधा गोलियों से आपका स्वागत करते हैं वो लोग।
0: जी बिल्कुल, हम जब आगे बढ़ रहे थे उस एरिया की तरफ जा रहे थे तो एकदम से हमारी गोलियों की बौछार हमारे ऊपर आई, क्यों, और जंगल में एक सिद्धांत चलता है
1: जी,
0: यू मिस एंड आई हिट।
1: और ओके,
0: पहली गोली जो थी नक्सलियों की वो उन्होंने मिस कर दिया था,
1: ओके,
0: से किसी को भी वो उनकी पहली गोली नहीं लगी। तब हमें पता था कि अब हमें क्या करना है, उसने मिस कर दिया, वी आर गोइंग टू हिट देम।
1: एग्जैक्टली, मतलब हम नहीं मिस करेंगे किसी भी कीमत पर।
0: बिल्कुल, एक हमारी ट्रेनिंग ही इसलिए होती है
1: जी
0: कि हमको उसको हिट करना है, तो हमने वहीं पर रणनीति

0: नीति बनाई कि कौन किधर से कैसे अटैक करेगा, और फिर जवाबी जो हमारी कार्रवाई थी वो हमने फुल स्ट्रेंथ में जवाबी कार्रवाई की नक्सलियों के ऊपर। क्रॉस फायरिंग बहुत देर तक फायरिंग चलती रही, लगभग आधे घंटे तक ये फायरिंग चली, उसके उपरांत जाकर के ये फायरिंग समाप्त हुई। तो ये जो यज्ञ, ये जो नक्सल एनकाउंटर होता है ना, ये हम फौजियों के लिए एक यज्ञ जैसा है, एक धार्मिक अनुष्ठान जैसा है, जिसमें कि हम अपना तन मन धन सब झोंक देते हैं। तो फिर जब ये फायरिंग खत्म हुई
1: जी,
0: उसके बाद जाकर के हमने देखा तो हमने पाया कि दो बॉडीज वहां पे हमें मिली, और संयोग से वो दोनों बॉडीज थी जितेंद्र कोड़ा और विनोद कोड़ा की,
1: मतलब जो उनके लीडर्स थे।
0: जी बिल्कुल, जो उनके लीडर्स थे, जिनका आतंक जो है वो पूरे पूरे लखीसराय क्षेत्र में कहें, पूरे बिहार क्षेत्र में फैला हुआ था, और जिनके आतंक के कारण जनता हमसे कुछ बात नहीं करती थी, हमारे नजदीक नहीं आती थी, उन दोनों की बॉडीज हमें वहां मिली। और उसके अतिरिक्त एक उनका और लीडर था अर्जुन कोड़ा
1: जी,
0: जिसको कि उसके राइट थाई में जाकर के हमारी गोली फंस गई थी, और फिर आगे आने वाले एक महीने बाद
1: जी
0: उसने सरेंडर किया एक दूसरी फोर्स के सामने, और उसने ये बताया
1: जी
0: कि उस दिन एसएसबी के साथ हुई मुठभेड़ में वो गोली जो है मेरे थाई में आके फंस गई है, और अगर मैंने सरेंडर इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं इलाज नहीं करवाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा।
1: तो उसके बाद इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा।
0: जी बिल्कुल, तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी, मैं इसे अपने जीवन का सबसे स्वर्णिम पल, अविस्मरणीय क्षण मानूंगा, जहां पे कि मुझे गर्व है कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ ऐसे राक्षस से लड़ा
1: जी
0: और उसे पराजित किया, और उसका जो फल मिला वो सबसे सुखद फल था कि जो हमारा ध्येय वाक्य है सेवा सुरक्षा बंधुत्व
1: जी,
0: हमने सेवाएं दी वहां की जनता को, उनके मन में नक्सलियों को मारने के उपरांत
1: जी
0: उनके मन में एक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ
1: बिल्कुल,
0: और अंततः वो बंधुत्व में तब बदला जब मैं उसी गांव वाले के साथ जो हमसे बात नहीं करता था उसी के साथ मैं बैठ करके चाय पीता था
1: और क्या बात है,
0: खाना खाता था।
1: क्या बात है
0: तो
1: सर,
0: ये सशस्त्र सीमा बल की जीत थी।
1: बेशक बेशक, बिल्कुल इसमें कोई दोराय नहीं कि ये जो आपका इतना डायरिंग ऑपरेशन था उसके बाद इसमें जो आपने कामयाबी हासिल करी तो यही सबसे बड़ी जीत थी कि जो विश्वास जो आपने बनाया उन लोगों में जो आपसे पहले बात करने में डरते थे। यहां जिस तरीके से शिवम कुमार आप अपनी जिस तरीके से ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे, भाई इमेजिन कर रहा था स्टूडियो में बैठ करके कि वो क्या सिचुएशन, वो मंजर रहा होगा। तो मैं सर ये जानना चाहता हूं, एक शायद लिसनर भी जानना चाहता है, और इतने मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं मैं उनको अभी ले नहीं पा रहा, बाद में लूंगा। तो क्या ये जो हम अक्सर मैं बात करता हूं कि हम इस तरीके की कुछ सिचुएशंस देखते हैं, आप आमने सामने से दो ग्रुप में जो फायरिंग चल रही है, बैटल चल रही है, वॉर सिचुएशन है, तो हम फिल्मों में जो देखते हैं तो बड़ा एक्साइटमेंट सा होता है, लेकिन आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं, और आप अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी वहां पर लगा रहे हैं उन क्रिमिनल से, उन आतंकवादियों से लड़ने के लिए। सर वो मोमेंट, वो जज्बा, वो जो एक फीलिंग होती है वो क्या होती है, वो खौफ, वो डर, वो सिचुएशन, वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपके अपने शब्दों में।
0: सबसे पहले तो मैं जो सुन रहे हैं जितनी भी श्रोतागण हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये फिल्मों में जो ग्लैमराइज किया जाता है, फौज में आने के सबसे पहले दिन तो आपका ग्लैमर जाता है, वो ग्लैमर छूटता है सबसे पहले, क्योंकि आप ग्लैमर के बल पे आप ये बहुत लंबी सेवा नहीं दे सकते हैं
1: जी।
0: इसमें आपके अंदर जो राष्ट्र प्रेम की भावना
1: जी,
0: जो राष्ट्र के प्रति जो आपकी सेवा भाव है, जो अंतर्निहित किया जाता है, वही आपको लंबे समय तक बतौर फौजी आपको खींचेगा। तो जैसा आप बता रहे हैं कि जब गोलियां चलती हैं
1: जी,
0: तो हमारी तैयारी इसी क्षण के लिए होती है। एक फौजी के जीवन में ये सबसे बड़ा क्षण होता है कि जब उसको सामने एक ऐसा व्यक्ति है जिसने समाज के में कई हत्याएं की हैं
1: जी,
0: कई बेगुनाहों की जान ली है, जब वो उसका खात्मा करता है तो हम इसे किलिंग नहीं, इसे हम वध मानते हैं, और एक राक्षस का वध करते हुए जो अनुभूति होती है,
1: बिल्कुल,
0: जो आनंद आता है, वो
1: उसके कहने क्या है,
0: उसको लफ्जों में बयां नहीं किया जाता।
1: क्या बात है, और इसीलिए देश की मिट्टी को सलाम करने को जी चाहता है उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ शिवम कुमार ने इस खतरनाक ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया। सर मैं और अब इंतजार नहीं कर सकता, मैं आपको एक एक करके कुछ मैसेजेस पढ़ करके सुनाऊंगा। शुरुआत जो सबसे पहला मैसेज आया हमारे पास यहां पर, बोथ आरजे एंड असिस्टेंट कमांडेंट शिवम जी एंड ऑल एआईआर न्यू दिल्ली फ्रॉम, ये मुबारकबाद दे रहे हैं, वणक्कम नमस्कारम, और ये हैं श्रीरंगम राजेश, श्रीरंगम त्रिची त्रिचुपल्ली तमिलनाडु से।
0: जी धन्यवाद और जय हिंद राजेश जी आपको।
1: और इसके बाद है एक मैसेज, जय हिंद साहब, बहुत बहुत मुबारक सर आपको, एसएसबी के जरिए पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं आप।

0: के साथ
1: कजरा कजरा लिखा है ये।
0: हाँ, कजरा में काम कर रहे, बहुत कुछ सीखने को मिला साहब। जय हिंद सर। ये आपके कोई एसोसिएट, कोई आपके साथी या जूनियर लगते हैं?
1: बिल्कुल, ये मेरे साथ के हैं, मेरे अच्छा। जूनियर और सीनियर तो है, ये पूरी टीम की बात है क्योंकि
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: मेरे टीम के साथी हैं,
0: साथी हैं,
1: कार्य किया है हमारे साथ।
0: और इसके बाद ये जय हिंद टू रेस्पेक्टेड गेस्ट सर एंड आरजे सर हियर। आई वुड लाइक टू पे माय ग्रेटिट्यूड टू शिवम सर एंड ऑल आवर इंडियन आर्मी फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। इट्स बिकॉज देयर सेल्फलेस सर्विस विद डेडिकेशन डिवोशन दे डिस्चार्ज देयर ड्यूटी फेयरलेसली। दे आर रियल हीरोज। I bow my hat to them, so I would say Jai Hind, Bharat Mata ki Jai, Vande Mataram. Myself, Shankar Lodh, and my wife, Anjali Lodh, offer obedience to all my, to them. My request to Arjun sir, please forward my message, Shivam sir. Thank you. Sir, aapka message humne pahuncha diya hai, Shivam sir sun rahe hain.
1: Ji, dhanyawad, Mrs. and Mr. Lodh ji. Main आशा करता हूं कि आप ये सभी संदेश जो फौजियों के द्वारा दिया जा रहा है उसको सुन रहे हैं
0: जी,
1: और इस चीज के लिए आपका धन्यवाद
0: जी। इसके अलावा मैसेज है ये शुभ संध्या कह रहे हैं, जय हिंद, राजेश भल्ला एडवोकेट हैं कंकड़खेड़ा मेरठ से।
1: जी बिल्कुल, धन्यवाद आपको राजेश जी। मुझे और खुशी है कि
0: जी
1: एडवोकेट से लेकर के टीचर सभी वर्ग के लोग हमारा इस संदेश को सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल सर, अपने कर्म और मजबूत इरादों के लिए पहचाने गए नक्सल उन्मूलन हेतु कृत संकल्प राष्ट्र प्रेमी को सल्यूट है। ललन मिश्र रांची झारखंड से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपको।
1: जी बिल्कुल, रांची मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि रही है, तो यहां से ये मैसेज आया।
0: बिल्कुल, आपके अदम्य साहस और त्याग के कारण ही हम अपने घरों में सुरक्षित चैन की नींद सो पाते हैं। आप हमारे असली नायक हैं। जय हिंद, जय भारत। ये है नेहा मिश्रा सर।
1: मुझे खुशी है कि समाज के सभी लोग फौज के कार्यों का, फौज की जो भी ड्यूटीज होती हैं उसका इतना सम्मान कर रहे हैं।
0: और ये है सर, जय हिंद सर, प्लीज एक कविता भारत माँ के नाम कहिए। रोहित मेहर हैं ये, विजयपुर बारगढ़ उड़ीसा से।
1: जी रोहित जी धन्यवाद, मैं कविता सुनाऊंगा आपको अंत में।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर सुनना चाहेंगे सर। हम लोगों का शिवम सर के साथ काजरा बिहार में कार्य करने का अनुभव बहुत उम्दा रहा। शिवम सर का पुलिस को जनता से करीब लाने का बहुत बड़ा योगदान रहा है काजरा लखीसराय बिहार में। सर ये भी आपके कोई साथी लगते हैं, सौम्य झा इनका नाम आ रहा है।
1: जी बिल्कुल, ये मेरे साथ के ही हैं, और हमारा उद्देश्य यही होता था कि जनता और पुलिस के बीच, फोर्स के बीच की जो खाई है उसको, उस खाई को पाटना
0: है, उद्देश्य था। बिल्कुल करीब लाना है। जय हिंद सर, मैं आपको सुन रही हूँ, आपकी बातें और आपकी आपके जज्बे को सलाम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ हमारे देश के नौजवान प्रभावित होकर देश सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, मैं शबनम हूँ बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से। गैलेंट्री अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई दे रही है सर ये आपको।
1: धन्यवाद शबनम जी, जय हिंद।
0: और ये हैं शिवम जी, यू आर अ पर्सन ऑफ ग्रेट विल पावर एंड करेज, एट द सेम टाइम यू आर वेरी काइंड ह्यूमन, अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर आवर यंगर जनरेशन। मैसेज आया सर ये विश्वजीत बिहार से, प्राइड ऑफ नेशन, प्राइड ऑफ बिहार, शिवम कुमार।
1: धन्यवाद विश्वजीत जी हमारे कार्यों की सराहना करने के लिए।
0: जी और ये है सर, हेलो सर, ग्वालदाम में महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छे से आपने काम किया है। ये है मृदुल झा।
1: जी धन्यवाद मृदुल जी आपको, ये मुझे उम्मीद है कि ये शायद हमारे यहाँ माउंटेनियरिंग कोर्स जो महिलाओं का
0: जी जी जी उसकी ये उसकी जरूर जरूर पार्टिसिपेंट रही होंगी। मैं नरपत सिंह, उप कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल अंतागढ़ कांकेर छत्तीसगढ़, अपने 60 जवानों के साथ आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं सर। ये FM रेनबो की पूरी टीम को हार्दिक आभार, कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायक और आनंददायक है। हमारे साथ श्री दकेश्वर प्रसाद चंद्र सहायक कमांडेंट भी उपस्थित हैं, उनकी ओर से भी शिवम जी एवं पूरी टीम को विशेष रूप से जय हिंद।
1: नरपत सर 4 बार के गैलेंट्री विनर हैं, मैं
0: okay.
1: तो अपना गुरु मानता हूं, और हमारे टीम के ये ग्राउंड कमांडर्स में से एक थे, तो
0: okay.
1: जो मैंने सीखा है इन्हीं सीनियर्स से सीखा है।
0: क्या तो, बात है सर, तो नरपत सिंह जी भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने इस शो के माध्यम से, आपने हमें मैसेज भी किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और यह है शिवम सर, एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी, फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिम, ही ट्रूली डिजर्व्स ऑल द एक्लेड्स because of his team and their dedicated efforts, a lot of people today live terror free, proud of him. Ayush Dhadich hain ye Nayi Delhi se.
1: Ji bilkul, ye hamare junior hain aur main ummeed karta hu ki jis pehal ki shuruaat hum logon ne ki hai us pehal ko aage aane wale jitne bhi adhikari hain usko maqam tak le jayenge apni team ke sath.
0: Bilkul, aur Ayush bhi uska hissa rahenge.
1: Ji bilkul,
0: aur ye hai naxali operation ko successful banane ke liye bahut bahut badhai Shivam ji, proud of Shalini Pathak likh rahi hain aapke liye.
1: धन्यवाद शालिनी जी आपका।
0: और यह है, मैं सोता हूं रातों को चैन से क्योंकि मैं जानता हूं मेरे लिए कोई जाग रहा है। शिव है ये मेरठ से।
1: ये हमारा फर्ज है, हमने राष्ट्र सेवा की कसम खाई है, और आप ऐसे ही आप चैन से सोएं यही हमारी कल्पना है।
0: और यह सर, शिवम सर के साथ कचरा में काम करने का अवसर मिला, कई ऑपरेशन में उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया। शिवम सर का नक्सलियों के लिए डायलॉग था कि ये

0: कि या तो तुम अपनी हरकत छोड़कर समर्पण कर दो या ये देश, वरना अंजाम तो जानते ही हो। टीम को सदा फ्रंट से लीड किया है, ये कह रहे हैं पंकज लखीसराय से। सर आपके साथ ही हैं भी
1: जी, पंकज हमारे साथ के थे और ये सभी जाबाज ये टीम मेंबर्स हैं मेरे, जिन्होंने जी गोलियों के सामने जिन्होंने सभी ऑपरेशंस को अंजाम दिया है।
0: जी जी जी, और आपका पूरा पूरा साथ दिया और अपने आप को बिल्कुल कदम से कदम मिला करके।
1: जी बिल्कुल, ये इनके बिना ये सारी उपलब्धि या ये सारा ऑपरेशन संभव ही नहीं था।
0: बिल्कुल। और एक और मैसेज है सर, जय हिंद सर, जब भी आपका प्रोग्राम सुनते हैं संदेश टू सोल्जर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर आपको बहुत बहुत बहुत जय हिंद। हम भी सर अपने बच्चों के को आर्मी में भेजना चाहते हैं। हम संजय बोल रहे हैं उत्तम नगर से, नई दिल्ली, और आपका प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा है और हमारे आर्मी के सभी जवानों को जय हिंद कह रहे हैं ये।
1: ये धन्यवाद संजय जी, और एक बार फिर से जैसा इन्होंने कहा, मैं एफएम रेडियो को, एफएम रेनबो को धन्यवाद देना चाहता हूं
0: जी,
1: कि जो देश विदेश के सभी लोगों को फौज के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उससे अवगत करा रहा है और फौज के राष्ट्रप्रेम से, राष्ट्रप्रेम की झागना को, भावना को प्रज्वलित कर रहा है लोगों के अंदर।
0: बिल्कुल सर, आकाशवाणी रेनबो का ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड शो है ये, और ये है संदेश टू सोल्जर्स। सर आपके साथ बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा, जो समय हमारे पास बचा है वो बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है आपके साथ बातचीत करते हुए इस जोश और जज्बे के साथ। हमारे साथ हैं श्री शिवम कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स शाहिद के साथ।

0: 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स. आप हैं शायद के साथ और हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट हैं सशस्त्र सीमा बल. सर, हम आपसे बहुत ही शानदार और जोश और जज्बे से भरी हुई बातें यहां पर कर रहे हैं और लगातार मैसेजेस का भी सिलसिला जारी है. मैं आपको जैसे अभी बता रहा था तो हम यहां पर अब आगे बढ़ेंगे सर और जानना चाहेंगे कि आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं, आपका ऑपरेशनल एक्सेलेंस है जो आपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में दिखाया, उसके अलावा आपने कई खतरनाक वांटेड एक्सट्रीमिस्ट और क्रिमिनल्स को भी ढेर करा, उनको पकड़ने में पूरे पूरे सक्सेसफुल ऑपरेशन चलाए. उसके अलावा आपने इसके अलावा भी कई हाई रिस्क ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं जिनके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें सबसे पहला प्रेस्टिजियस अवार्ड था पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2024 में. उसके अलावा आपको कई सारे मेडल्स, कमेंडेशंस और एप्रिसिएशन मिले हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं डायरेक्टर जनरल SSB से, इंस्पेक्टर जनरल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से और कमांडेंट से और अदर सीनियर ऑफिसर से भी. आपको आपकी परफॉर्मेंस के लिए, आपकी ऑपरेशनल अचीवमेंट्स के लिए, आपकी लीडरशिप के लिए, आपके प्रोफेशनलिज्म के लिए, पब्लिक स्पीकिंग और साथ ही एक चीज़ और भी जो आपके साथ जुड़ी हुई, इतनी सारी आपकी जो खूबियाँ हैं उनके साथ साथ कि आपकी जो लीडरशिप स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग है, आप किस तरीके से मोटिवेट करते हैं यंगस्टर्स को, और साथ ही साथ फोर्स लेवल डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी आप कंडक्ट कर चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए.
1: जी शाजी जी, इसमें सबसे प्रथम यह है कि आप जिसके साथ भी कार्य करते हैं, तो हमारे के जितने भी टीम मेंबर्स होते थे, हमारे जितने भी साथी होते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक,
0: जी
1: आपको ये समझना पड़ेगा कि आप फर्स्ट अमंग द इक्वल्स हैं, आप उनके साथ के ही हैं. जब आप उनकी परिस्थिति को समझेंगे, जब आप उनके शूज में आएंगे, तभी आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं. तो एक कमांडर का सर्वप्रथम यह कार्य है कि वो अपने साथियों की परेशानियों को समझे, उनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज मुहैया करवाए और उनको मोटिवेटेड रखे कि हर परिस्थिति में, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल इश्यूज हो, लगातार उसको केटर करे, उसकी उसकी समस्या का निराकरण करने की कोशिश करे और हर वक्त उसके साथ खड़ा हो, उसके अच्छे दिन में, उसके बुरे दिन में. तभी जाकर के वो फौजी या वो जो भी आपका सबॉर्डिनेट है,
0: जी,
1: वो आपसे आगे जब भी बाधा आएगी, जब भी गोली आएगी, तभी वो आपसे आगे, कमांडर के आगे वो खड़ा होगा. जब उसको पता होगा कि उसका कमांडर उसके लिए हर क्षण खड़ा है, तभी वो आपके लिए खड़ा होगा,
0: तभी वो खड़ा होगा क्योंकि आप उसके लिए पहले से खड़े हैं. सर, हम आपके अवार्ड्स और जो कमेंडेशंस हैं और जो आपके मेडल्स हैं उनकी बात करते हैं. नवंबर 2025 में एंटी नक्सल ऑपरेशंस और शानदार लीडरशिप के लिए ऑनरेबल गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड ने भी आपको अवार्ड से सम्मानित किया था. वो कौन सा अवार्ड था?
1: जी, मुझे एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए 2024 के नवंबर में,
0: जी
1: 2025 के
0: नवंबर जी
1: 2025 के नवंबर में, क्योंकि मैं झारखंड का रेसिडेंट हूं,
0: जी,
1: तो मुझे झारखंड के ऑनरेबल गवर्नर एवं ऑनरेबल CM के द्वारा सम्मानित किया गया था, क्योंकि मैं वहां का वासी हूं, मेरा स्टेट झारखंड है और मैंने अपने फोर्स के लिए और अपने देश के लिए या अपने टीम के साथ मिलकर मुझे ये कार्य करने का अवसर मिला था,
0: जी,
1: इसका सम्मान किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा.
0: जी, और सर इसके अलावा आपको उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से भी जनवरी 2026 में भी आपको सम्मानित किया गया था. आपकी जो एज ए ट्रेनर CINJW स्कूल SSB गोलदाम में आपने जो अपनी सेवाएं दी एज ए ट्रेनर, उसके लिए भी आपको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने भी सम्मानित किया था.
1: जी, मैं मेरी अभी जो करेंटली जो मेरी पोस्टिंग है,
0: जी,
1: वो CINJW स्कूल SSB ग्वालदम में उत्तराखंड में है, जहां मैं बतौर ट्रेनर हूं. तो पिछले 2 वर्षों से मेरी सेवाओं को फैसिलिटेट करने के, उसको सम्मानित करने के लिए मुझे ये मौका मिला कि मेरे सीनियर्स के द्वारा मेरा नाम नामित किया गया. मेरे DIG सर थे, श्री DN बॉम्बे सर, उन्होंने मेरा नाम नामित किया और मुझे झारखंड उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये पुरस्कार दिया गया.
0: जी, तो ये सर इतने सारे पुरस्कार हैं, इतने सारे आपके जो कमेंडेशंस हैं, मेडल्स हैं, अवार्ड्स हैं.

0: उनको पाकर के आप सर कैसा महसूस कर रहे थे और करते हैं?
1: सच पूछूं तो जब भी कोई कार्य करता है अपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में मैं जा रहा था, तो सर्वप्रथम इसमें ऐसा नहीं था कि पुरस्कार के लिए ये चीज़ें की जाती हैं,
0: जी
1: क्योंकि
0: बिल्कुल
1: तब सिर्फ राष्ट्रहित और देशहित का जो जज्बा है वही आपको इन चीज़ों के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन पुरस्कार उसका फल है। तो मैंने जितने भी ऑपरेशंस किए मैंने अपने सीनियर से सीखा है कि आप फल के पीछे ना भागें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे कि जिंदगी और मौत जो है वो लाइन पे खड़ी होती है। तो इसके लिए पुरस्कार सिर्फ आपका मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं हो सकता, ये टीम एफर्ट है, राष्ट्रहित की भावना है जिसके
0: जी
1: लिए मैं ये कर रहा था,
0: जी
1: और जब पुरस्कार से इसको नवाजा जाता है तो निश्चित रूप से ये अच्छा प्रतीत होता है।
0: बेशक, और हौसला और भी बढ़ता है और आपके जो भी साथी होते हैं उनको भी हौसला मिलता है। सर, ये सब ऑपरेशंस में, इतनी सारी आपकी ट्रेनिंग में, इतने आपके कोर्सेज में, और फैशन टेक्नोलॉजी से SSB में आने में, परिवार का आपका किस तरीके से पूरा एक रोल रहा, सहयोग रहा, कैसी सपोर्ट रही, ये भी बताइए।
1: जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं बड़े परिवार से आता हूँ जिसमें कि हम लोग चार भाई बहन हैं और मेरे माता पिता हैं, और मेरी शादी हो चुकी है, मेरी धर्म पत्नी भी हैं।
0: जी
1: तो मेरे पिताजी ने और मेरी माँ ने इसका खुले दिल से इसका सपोर्ट किया जब मैं फोर्स में
0: जी
1: आना चाहता था। हालांकि मेरी माँ डरती थी इस चीज़ से, लेकिन
0: ओके
1: मेरे पिताजी ने बहुत बार मुझे मोटिवेट किया, और मेरे जितने भी भाई बहन हैं और जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन, मेरी दो बहनें बड़ी हैं, एक मेरे बड़े भाई साहब हैं,
0: अच्छा
1: उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए लगातार। और अंत में जिस व्यक्ति का एक और बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो
0: जी
1: है मेरी पत्नी। उन्होंने लगातार, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको ही इस कठिनाई को झेलना पड़ता था जब मैं बाहर रहता था,
0: जी
1: 3-4 दिनों तक मेरी बात नहीं होती थी उनसे, तो
0: तो
1: वो
0: जाहिर है ये
1: बहुत
0: सपोर्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट
1: सबसे
0: सपोर्ट।
1: हाँ ये ऐसा सपोर्ट था जिसकी कि मैं कल्पना नहीं की थी मैंने। तो मैं उसके लिए सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है।
0: सर बिल्कुल, समय हमारे पास खत्म हो चुका है और बातें बहुत सारी बची हुई हैं और मैसेजेस इतने आ चुके हैं मेरे पास कि अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो मुझे लग रहा है कि 15-20 मिनट उसी में निकल जाएंगे। लेकिन मैं बस चलते चलते आपसे एक दो मैसेज पढ़ने के बाद चाहूंगा कि आप युवाओं को मोटिवेट करने के लिए कोई बात कहना चाहें तो वो कहें, और साथ ही अपनी वो एक स्पेशल कविता की चंद पंक्तियां भी जरूर सुनाइएगा। और मैं आपको तब तक एक दो पैसेज बता दूं सर, ये है वी आर प्राउड ऑफ यू शिवम सर, रागिनी है गुवाहाटी से। इसके अलावा जय हिंद सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से। इसके अलावा ये है हमारे देश के फौजी भाइयों की हमारे ओर से सल्यूट, और काफी लंबा मैसेज है, ये है पंडित चनप्पा सौंदर्य तेजस्विनी सरवाद से। और आप इसी तरह सभी को प्रेरणा देते रहें और जय हिंद कह रहे हैं, यह है सरिता मिश्रा जी। और इसके अलावा प्रसाद दुबासी HC आर्मर सर, योर लीडरशिप इज इंस्पायरिंग एंड यू आर एन एक्सेलेंट ऑफिसर, और वी अप्रिशिएट योर डेडिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। शायद ये आपके साथी होंगे
1: बिल्कुल मेरे
0: बाबुल
1: साथ ही हैं, और
0: जी।
1: मुझे इस बात का गर्व है कि इसमें से मोस्टली जितने हैं उन्होंने मेरे साथ कार्य किया है, तो ये एक अच्छी बात है।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप हमारे शो में आए और अपना समय निकाला। श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल, आज के संदेश सोलर के हमारे खास मेहमान। धन्यवाद बहुत बहुत सभी लिसनर्स का और हमारे आज के खास मेहमान का।
1: धन्यवाद सर।
0: जय हिंद।
1: जय हिंद, जय भारत।
2: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजे और आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

गुलजार की शब्द रचना भी आपने सुनी। आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म थी थोड़ी सी बेवफाई की। धुन तैयार की थी खयाम ने।

जसविंदर नरूला, रूप कुमार राठौर और साथियों को भी आपने सुना। फिल्म थी होगी प्यार की जीत। गीत समीर का था, संगीत दिया था आनंद पंडित ने

मंगेशकर और शब्बीर कुमार को भी आपने सुना। फिल्म थी प्यार झुकता नहीं, गीत SH बिहारी का था, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म संगीत इस समय श्रोता सुन रहे हैं FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

साजिद वाजिद के संगीत निर्देशन में फैज़ अनवर की शब्द रचना भी आपने सुनी, राहत फतेह अली खां और साथियों की आवाज़ों में फिल्म थी दबंग।

और ये अब सुनते हैं जावेद अख्तर के बोल, शफाकत अमानत अली, शंकर महादेवन और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म है कभी अलविदा ना कहना।

शंकर महादेवन, शफा का तमन्ना तली और साथियों के गए कभी अलविदा ना कहना फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं और आइए अब सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। मित्रों, बरसात का मौसम प्रारंभ हो चुका है। जहां बरसात का मौसम सुहाना तो लगता है, परंतु जगह जगह जल भराव, साथ ही सड़कें फिसलन भरी और खतरनाक हो जाती हैं, तो इस पर हमें बहुत ज़्यादा सावधानी की भी ज़रूरत है। और वो सावधानी किस प्रकार की है, जो हमें बाहर निकलते वक्त, विशेष रूप से पैदल चलाते समय, गाड़ी चलाते समय ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो यह है कि यदि हम पैदल चल रहे हैं तो फिसलन वाली जगह पर छोटे छोटे कदम लें। जल्दी जल्दी चलने में गिरने का खतरा ज़्यादा रहता है। साथ ही गड्ढे और नालियों को देखें, जिसमें पानी भरा हो तो उसमें पैर बिल्कुल ना रखें। हो सकता है कि अंदर गड्ढा या खुला मेन होल हो, इसलिए हमेशा कदम संभाल के चलें। साथ में यदि छतरी या रेनकोट है तो एक हाथ हमेशा खाली रखें, ताकि बैलेंस बिगड़े तो संभाल सकें। और विशेष रूप से फोन देखते हुए तो कदापि नहीं चलें। बिजली के खंभे और तारों से हमेशा दूर रहें। टूटे हुए तार और खंभे में करंट आ सकता है, जिससे जान का खतरा बन सकता है। बाइक और स्कूटी चलाते समय जो है उसमें क्या ध्यान रखना है, हमें स्पीड कम रखें। ब्रेक लगने पर गाड़ी लगभग 2 गुना ज़्यादा दूर जाकर रुकती है, इसलिए आगे आने वाली गाड़ी से 2 गुना दूरी रखें। अचानक ब्रेक या टर्न कभी नहीं लें, इससे टायर स्लिप कर जाते हैं। और दोनों ब्रेकों को धीरे धीरे ही दबाएं, एक साथ नहीं, जिससे कि स्लिप नहीं करें। हेलमेट अवश्य पहनें, और यदि रात में चल रहे हैं तो रिफ्लेक्टर जैकेट यदि पहन सकते हैं तो वो ज़रूर पहनें, जिससे कि विजिबिलिटी रात में कम होती है तो चमकीले कपड़ों से विजिबिलिटी नज़र आएगी। पानी भरे रास्तों से बचें, जिससे कि इंजन में यदि पानी गया तो गाड़ी बंद हो जाएगी, इसलिए हमेशा भरे हुए रास्ते से बचकर चलें। यदि 4-व्हीलर चला रहे हैं, कार या कोई अन्य 4-व्हीलर चला रहे हैं, तो वाइपर और लाइट अवश्य चेक कर लें। हेडलाइट हमेशा ऑन रखें। ज़्यादा पानी में तेज चलने से टायर का रोड से संपर्क टूट जाता है, इसलिए स्पीड को हमेशा 40 से 50 के बीच में रखें। फॉग लाइट जलाएं, धुंध में आगे वाला दिख सके, इसलिए फॉग लाइट अवश्य जला के रखें। और पानी से गुजरने के बाद 2-3 बार हल्का ब्रेक अवश्य दबाएं। सबसे ज़रूरी बात कि आज सबके हाथ में मोबाइल है और अपडेट हमें मोबाइल से मिल जाता है। सरकार द्वारा भी आज की डेट में तेज बारिश या आंधी का, तूफान का अलर्ट हमारे मोबाइल्स पे आ जाता है। फिर भी तेज बारिश, बाढ़ का अलर्ट हो तो घर से निकलने से बचें। ओवरब्रिज और ऊंची जगह चुनें। निचले इलाकों में जल भराव और बाढ़ का डर ज़्यादा रहता है। कभी भी बिजली पानी पड़ने में छाते या पेड़ के नीचे कभी नहीं रुकें, जिससे बिजली गिरने का खतरा कम रहे। और यदि किसी तरह की इमरजेंसी आ जाए तो 112 नंबर पे हेल्पलाइन पे फ़ोन करके हम सहायता ले सकते हैं। सबसे ज़रूरी नियम, जल्दी नहीं, ज़िंदगी ज़रूरी है। इसका आनंद लें बरसात का।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: साथियों, अब युववाणी कार्यक्रम में मार्गदर्शन के अंतर्गत सुनवाते हैं भेंट वार्ता। पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कैरियर, डॉक्टर अतुल सक्सेना से इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं सतप्रत सिंह।
2: युवा साथियों, आज के दौर में जब कैरियर के नए नए क्षेत्र सामने आ रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर आप काफी कुछ कर सकते हैं और उनका व्यापक दायरा भी है। उन्हीं में से एक है पशु चिकित्सा का क्षेत्र। तो कैरियर के तौर पर ये कहां कहां अपने पैर फैला चुका है और कहां कहां आपके लिए इसकी संभावनाएं हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में है वेटनरी विश्वविद्यालय मथुरा के पशु चिकित्सा से ही संबंध रखने वाले डॉक्टर अतुल सक्सेना जी, जो मार्गदर्शन में हमें वेटनरी में क्या क्या कैरियर की संभावना है इस पर जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो पशु चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र आज काफी व्यापक है शहरों में, गांवों में, इसके अतिरिक्त अनुसंधान में, और फिर दूसरे भी क्षेत्र होंगे जहां पर पशु चिकित्सा एक नए रूप में सामने आई है। इसके पहले हम इतिहास पर अगर गौर करना चाहें तो इसकी शुरुआत भारत में और विदेश में बताएंगे कैसे हुई?
3: सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि इसका इतिहास बहुत पुराना है और आपको पता है कि मनुष्य और पशुओं का एक काफी गहरा संबंध रहा है। प्राचीन काल में भी मनुष्यों ने पशुओं को पाला और अपने कार्यों के लिए उनको इस्तेमाल किया। तभी से जब प्राचीन काल में पशु बीमार हो जाता था तो प्राचीन मानव उसका इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा करता था। उसके बाद इसका दूसरा जो सबसे बड़ा रूप निकल के आया, जब युद्ध भूमि में इस्तेमाल होने वाले घोड़े हाथी इत्यादि जब घायल हो जाते थे तो उस समय पशु चिकित्सा की जरूरत के लिए लोगों ने अपने अपने तरीकों से उसको ट्रीट करना शुरू किया और आज तो इसका एक बहुत ही वृहत रूप है।
2: आज अगर हम कैरियर के तौर पर वेटनरी चिकित्सा को लें, यानी कि पशु चिकित्सा के क्षेत्र को लें, तो सबसे पहले जैसे मेडिकल की जब बात आती है तो एक अच्छे डॉक्टर की बात आती है, तो पशु चिकित्सा में भी जहन में आता है कि एक श्रेष्ठ वेटनरी डॉक्टर, उसकी क्या भूमिका होती है पशु चिकित्सा में, उसके कैसे मानदंड होने चाहिए, इसके बारे में बताएंगे?
3: सबसे पहले तो जो भी इस डिग्री को ऑब्टेन करना चाहता है उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि वो एक पशुओं से प्यार करने वाला व्यक्ति हो, ये उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उसको जीव विज्ञान में रुचि रखता हो, ये उसकी दूसरी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर तो वो बड़े जानवरों से आगे संबंध रखना चाहता हो तो उसको शारीरिक रूप से स्वस्थ और अलर्ट होना चाहिए। दूसरा, उसको जानवरों के मूड का या जिसे हम कहें उसके स्वभाव के बारे में भी उसको बहुत पता होना चाहिए। और इसके सबसे बड़ी बात यह है कि वो विषम से विषम परिस्थितियों में कार्य करने में सक्षम हो। इन गुणों के साथ अगर कोई व्यक्ति तैयार हो तो उसे जो इस डिग्री को प्राप्त करने के लिए जो आगे जरूरत है उसके लिए वो अपने आप को संभव समझ सकता है, सक्षम समझ सकता है।
2: यानी कि वेटनरी डॉक्टर होने के लिए या वेटनरी के क्षेत्र में अगर कैरियर के बारे में कोई युवा सोचता है तो सबसे पहले पशु से प्यार करने वाला, यानी कि उनको समझने की सोच रखने वाला व्यक्ति, उनके साथ रहने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति, इसके अलावा स्वयं में सक्षम और स्वस्थ व्यक्ति वेटनरी के क्षेत्र में सफल ज्यादा होगा अपेक्षाकृत एक सिर्फ कैरियर बनाने के लिए सोचने वाले व्यक्ति के। अब बात आती है कि वेटनरी का जब नाम आता है तो सिर्फ एक वेटनरी डॉक्टर का ही विकल्प आता है कि यही एक इसका क्षेत्र है, तो कौन कौन से कैरियर के इसमें क्षेत्र हैं जहां पर के एक पशु चिकित्सक का स्नातक या डिप्लोमाधारी जो है वो आगे बढ़ सकता है अपने जीवन यापन के क्षेत्र में?
3: आज के परिवेश में एक पशु चिकित्सक का बहुत महत्व है। आप देख लीजिए कि एक स्नातक जो निकल के जाता है वो या तो छोटे पालतू जानवरों का ट्रीटमेंट करता है या फिर बड़े जानवरों का ट्रीटमेंट करता है, और या फिर आपने देखा होगा कि कुछ पशु चिकित्सक हैं जो कि जो रेस हॉर्सेस हैं उनके बारे में ही सिर्फ ज्ञान रखते हैं और उन्हीं को आगे बढ़ाने में अपना भूमिका लेते हैं। इसके साथ साथ कुछ लेबोरेटरी एनिमल्स हैं जिनके ऊपर वो अपना काम करते हैं और वो उनसे आगे अपने आप को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा आजकल पक्षियों में स्पेशली जो हमारे बर्ड्स हैं, मुर्गियां जो हमें अंडे देती

0: हैं या मुर्गा जो एक मांस का एक स्रोत है, इनके ऊपर भी पशु चिकित्सक लगे हुए हैं। इनके साथ साथ जू एनिमल्स को ट्रीट करने के लिए भी पशु चिकित्सक लगे हुए हैं। एजुकेशन लाइन में हैं पशु चिकित्सक लगे हुए हैं, रिसर्च लाइन में हैं पशु चिकित्सक लगे हुए हैं। इनके साथ साथ कुछ मेडिकल के क्षेत्र हैं जिनमें कि पशु चिकित्सक एक बहुत बड़ा बहुत अहम अपना रोल अदा कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी चीज अगर मेडिकल से बन करके आती है तो उसके पीछे एक पशु चिकित्सक का एक बहुत बड़ा रोल होता है। उदाहरण स्वरूप अगर हम कहें कि एक हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, लंग ट्रांसप्लांटेशन से लिवर ट्रांसप्लांटेशन की बात अगर हम करते हैं, तो उसमें एक पशु चिकित्सक ही पहले इन्वॉल्व होता है और वो अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ मिल करके उसके हाथ में हाथ डाल करके ही वो आगे चढ़ता है। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि एक टाइम आ गया है, अब भी हो रहा है कि बाहर से चीजें इंपोर्ट करके इंडिया में लाई जाती हैं। कुछ ब्रीड्स डॉग्स की हैं उनको इंपोर्ट करके लाया जाता है, कुछ रेसिंग हॉर्सेस हैं उनको इंपोर्ट करके लाया जाता है, कुछ और कई तरीके के हैं प्राणी बर्ड्स में आजकल जिनको इंपोर्ट करके लाया जाता है। तो उनको इंपोर्ट करने के बाद उनको एक संरक्षक जोन में रखना, जिसे हम क्वारंटाइन कहते हैं, उनमें रखने में भी एक पशु चिकित्सक का एक बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ एक्सटेंशन एक्टिविटीज प्रसार के लिए जो पशु चिकित्सक है वो भी उसका एक बहुत अहम कैरियर है।
1: यानी कि जो कैरियर के क्षेत्र आपने बताए कि एक तो बड़े पालतू पशुओं के इलाज के लिए, छोटे पक्षियों के इलाज के लिए, चिड़ियाघरों में जो जानवर हैं उनके इलाज के लिए, इसके अलावा जो घोड़े हैं उनके इलाज के लिए, विदेशों से जो जानवर आयात किए जाते हैं उनको क्वारंटाइन में रखने के दौरान जो उसके चिकित्सकीय परीक्षण होते हैं उनमें पशु चिकित्सक की तैनाती की जाती है, पक्षियों के उपचार में पशु चिकित्सक की तैनाती की जाती है, एजुकेशन में शिक्षकों की जरूरत है, वहां पर वेटनरी क्षेत्र के परास्नातक और डॉक्टरेटधारी नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन इन सब के अतिरिक्त सबसे बड़ा कैरियर का क्षेत्र कौन सा है इसमें?
0: देखिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर एजुकेशन लाइन में या रिसर्च में जाना पड़ता है तो उसके लिए आपको बीबीएससी एंड एएच डिग्री से काम नहीं चलता, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस की होनी जरूरी है। तो उसके लिए तो आपको मिनिमम वेटनरी मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस किसी एक विषय में आपको करना पड़ेगा। और बाकी तो आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो एक ग्रेजुएट जो निकल के जाता है, एक स्नातक जो निकल करके जाता है, उसकी अगर अपनी क्षमता रखता है तो वो 10,000 रुपए से लेकर के 80,000 रुपए मासिक आय का अपना निर्वहन कर सकता है।
1: ये तो आपने एक पैमाना बताया, थोड़ा सा हम कैसे इस प्रवेश प्रक्रिया से गुजरते हैं उससे पहले, क्योंकि अब अपने क्षेत्र पहले बताए हैं तो उसी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि प्राइवेट कंपनियों का दौर चल रहा है आजकल, उसमें वेटनरी डॉक्टर्स की या बीबीएससी एंड एएच किए हुए युवकों की क्या करियर संभावनाएं हैं?
0: देखिए, आज की अगर हम बात करें, आज कभी मैं एक उदाहरण स्वरूप आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आज आप अपनी एक थाली, खाने की थाली का स्वरूप देखें तो उस थाली में आपके पास बटर भी होता है, उस थाली में आपके पास कभी दूध होता है, कभी पनीर होता है, कभी लस्सी होती है, कभी जो मांसाहारी लोग हैं उनके पास मांस की कोई डिश होती है। आप सोचिए कि फूड सेफ्टी आज के दौर में एक बहुत अहम भूमिका अदा कर रहा है और इन फूड सेफ्टी के लिए एक वेटनेरियन की तैनाती परम आवश्यक है। और आगे के जो योजनाएं बन रही हैं उनमें भारत ने इस ओर काफी ज्यादा ध्यान दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अभी कुछ समय पहले ही आपने दो कुछ प्रमुख बीमारियों के नाम आपने सुना होगा, एक बर्ड फ्लू, एक दूसरा मैड काउ डिजीज जो बीफ खाते हैं लोग बाग उनसे संबंधित ज्यादा थी। इन दोनों ने जो तहलका मचाया उसमें आपने देखा कि पशु चिकित्सक का कितना बड़ा रोल है, वो उन बीमारियों को समझता है, उन बीमारियों को रोकने के से उपाय करने की आपको जानकारी दी।
1: अब इस क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा और पीजी डिग्री, पीएचडी, इनमें कैसे प्रवेश लिए जाते हैं और कहाँ कहाँ ये पढ़ाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं भारतवर्ष में?
0: एक युवा साथी जो 12वीं कक्षा को उत्तीर्ण कर चुका हो साइंस विषय में और कम से कम उसके पास 50% अंक हो, वो प्रवेश परीक्षा में बैठ सकता है। ये प्रवेश परीक्षा प्रदेश स्तर पर और ऑल इंडिया लेवल पे होती है। हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय पशु चिकित्सा की डिग्री के लिए दो कॉलेजेस हैं, एक आपके मथुरा में ही जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से संबंधित है और दूसरा फैजाबाद जो आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, यहाँ से आप प्रवेश परीक्षाएं प्रारंभ होती हैं। ये प्रवेश परीक्षाओं की सूचना आपको मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के शुरू में प्रकाशित हो जाती है दैनिक पेपरों में

0: और उसके बाद आप इन प्रवेश परीक्षाओं में बैठिए। आपकी अहर्ता ये होनी चाहिए कि 50% मार्क्स और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का विषय प्लस टू में होना जरूरी
1: है।
0: उसके बाद फिर आप इनमें बैठिए, मेरिट में आइए। मेरिट में आने के बाद आपकी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग होने के बाद आप प्रवेश पा सकते हैं। इन दोनों कॉलेजेस के अलग अलग परीक्षाएं होती हैं। इसका मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट दोनों जगह से अप्लाई कर सकता है। इसके साथ साथ आप ऑल इंडिया लेवल पे भी आप इसको ले सकते हैं, जिसके लिए कोई डोमिसाइल होने की जरूरत नहीं है। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि इस क्षेत्र में है, वो 15% सीटें भरती है पूरे अपने भारत के जितने भी 26 वेटनरी कॉलेजेस हैं उनके प्रवेश के लिए, और आप उसमें भी बैठ करके एक बीबीएससी एंड एच डिग्री के लिए मेरिट में आने पर आप

0: एक बीबीएससी एंड एच डिग्री के लिए मेरिट में आने पर आप एडमिशन ले सकते।
1: फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ 50% अंकों के साथ और 3 इंटरमीडिएट युवक इन परीक्षाओं में बैठने का पात्र है। उत्तर प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय हैं जिनमें आप सीधे बैठ सकते हैं और बिना किसी डोमिसाइल की औपचारिकता पूरे किए हुए 15% कोटे के तहत वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा प्रायोजित भारतवर्ष की अखिल भारतीय परीक्षा में भाग लिया जा सकता है। एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये तो डिग्री की बात हुई, हमारे उत्तर प्रदेश में तो होता नहीं है, लेकिन कुछ प्रदेशों में डिप्लोमा वेटनरी में दिए जाते हैं क्या?
0: अभी तक ऐसा कोई डिप्लोमा वेटनरी का तो नहीं है, लेकिन हाँ एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर डिप्लोमा दिया जाता है और वो हर एक स्पेशलाइज क्षेत्र है कि आप गायों के ऊपर ही देना है, भैंसों के ऊपर देना है, सुकर के ऊपर देना है, आपको पोल्ट्री के ऊपर देना है, इस तरीके
1: वो स्वरोजगार के तौर पर दिए जाते हैं। प्रतिष्ठित परीक्षाएं जिनमें बीबीएससी एंड एएच स्नातकों के लिए करियर के रास्ते, अच्छे करियर के रास्ते, कौन कौन सी परीक्षाएं आयोजित होती हैं जो करियर से संबंधित हैं? जैसे उत्तर प्रदेश में अगर कोई वेटनरी डॉक्टर बनने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई हो।
0: देखिए इनमें मैं आपको कहूंगा कि जैसे एक स्नातक जो निकल के जाता है उसके पास आगे बढ़ने के लिए या तो आप जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है इनकी जो परीक्षाएं होती हैं उसमें बैठ करके आप उत्तीर्ण करके आप गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रदेश को वेटनरी डॉक्टर के रूप में। आप बाहर जितनी भी परीक्षाएं हैं, मैं अगर बाहर विदेश की बात करूं तो उनमें आपकी जो अपनी डिग्री है उसके साथ साथ आपको बाहर की जो उनकी अलग अलग परीक्षाएं उनको उत्तीर्ण करना जरूरी है और कई जगह ऐसी हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो आपको एज सच ले लेती हैं, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आपको अपनी प्रवेश परीक्षाओं से गुजारने के बाद ही आपको वहां पर कोई रोजगार दे सकते हैं, उसके अलावा नहीं दे सकते।
1: वैज्ञानिक बनने के लिए कौन सी परीक्षा?
0: वैज्ञानिक बनने के लिए अगर हम कहें तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और ऑल इंडिया लेवल पर जो होती है उसमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB के नाम से नई दिल्ली पूसा से परीक्षा आयोजित की जाती है जो कि ऑल इंडिया में कई स्थानों पर जहां जहां वेटनरी कॉलेजेस हैं उनके कुछ निश्चित स्थान हैं वहां से वो परीक्षा आपको बैठ सकते हैं और उसके बाद आपके पूरे भारत में जहां भी आपकी जरूरत है, जहां भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे आपको
1: एज ए साइंटिस्ट दिया जा सकता है। सेना में वेटनरी डॉक्टर का क्या?
0: बिल्कुल है, सेना में रिमाउंट एंड वेटनरी कोर, रिमाउंट एंड वेटनरी कोर जिसे RVC के नाम से जाना जाता है, उसकी भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं। उनकी परीक्षाओं में बेसिकली आप जब डिग्री ले लेते हो तो उसके बाद उनकी जो परीक्षा है उसमें जनरल नॉलेज और फिजिकल फिटनेस देखी जाती है। अगर आपकी फिजिकली फिटनेस है और अगर आपके पास पूर्व में NCC से कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, बी सर्टिफिकेट है, तो आपको सी सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट को वहां पे वरीयता दी जाती है।
1: ये तो वो क्षेत्र हुए जहाँ पे संगठित रूप से वेटनरी क्षेत्र के लिए कैरियर की संभावनाएं हैं। आप अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए वेटनरी की कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर के काफी अच्छी संभावनाएं आधुनिक परिवेश में मिल रही हैं?
0: आज के क्षेत्र में अगर आज की बात हम करें तो आज आप देखें जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, वहां पर वेटनेरियन इटसेल्फ आगे बढ़ करके अपनी प्राइवेट क्लिनिक्स डाल करके छोटे पालतू जानवरों से संबंधित हैं और इसमें एक अच्छा अपना भूमिका अदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ अपने एंटरप्रेन्योरशिप की बात अगर करते हैं तो लोगों ने अपनी योग्यता के आधार पर बैंक से लोन लेकर के अपने स्वरोजगार स्थापित करके आगे बढ़े हैं। लोगों ने हैचरीज डाली हैं जिससे कि वो कुक्कुट उत्पादन करते हैं और एक बहुत अच्छे रूप में निकल के आए हुए हैं।
1: तो युवा साथियों, आज मार्गदर्शन में हमारे साथ थे डॉक्टर अतुल सक्सेना जी, जो बता रहे थे कि वेटनरी के क्षेत्र में कैरियर की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या उसके लिए अपेक्षित योग्यताएं हैं और संगठित क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में प्रवेश लेने के लिए क्या क्या परीक्षाएं हैं जिनको पास करना जरूरी होता है, प्राइवेट के तौर पर क्या क्या कैरियर हो सकता है, विस्तृत रूप से बताया डॉक्टर साहब आपने, जो जानकारी दी। हमारे युवा साथी उसे पसंद करेंगे, उम्मीद करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कैरियर, साथ ही अभी ये मार्गदर्शन के अंतर्गत ये भेंटवार्ता सुन रहे थे, डॉक्टर अतुल सक्सेना से बातचीत कर रहे थे सतव्रत सिंह। मित्रों, बात करते हैं मोबाइल फोन की। आज ये हर हाथ में मोबाइल है,

पर इसके साथ साथ सुविधा के साथ साथ हमें इसको प्रयोग करने में भी बहुत सी सावधानी की जरूरत पड़ती है। आज हमारा मोबाइल के बिना काम नहीं चल सकता है, पर इसके गलत इस्तेमाल से आँख, दिमाग और सेहत सब खराब हो सकते हैं। विशेष रूप से बरसात के मौसम में तो और भी ध्यान देना आवश्यक है। सेहत से संबंधित सावधानियों में जिसमें हम कर सकते हैं वो है, हर 20 मिनट के बाद कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए 20 फीट दूरी पर इसको रख दें, जिससे आँखों पर जोर नहीं पड़े और आँखें रिलैक्स हो सकें। स्क्रीन टाइम कम रखें। रात को सोने से एक घंटा पहले ही मोबाइल बंद करें, और ब्लू लाइट से, क्योंकि नींद खराब होती है, इसे बंद करा के रखें। और हमेशा मोबाइल को आँखों से कम 30 से 40 सेंटीमीटर दूर रखें। लेटकर इसको घंटों नहीं चलाएं, जिससे कि आँखों पर और हमारे दिमाग पर इसका असर, बुरा असर पड़े। तेज आवाज़ में गाने सुनने से कान खराब हो सकते हैं, इसलिए 60% से कम का वॉल्यूम रखें और हेडफोन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। जो सबसे सुरक्षा के लिए हमारे लिए जो सावधानी है वो है, चलते समय और गाड़ी चलाते समय, सड़क पार करते समय या बाइक चलाते समय फ़ोन देखना सबसे बड़ा हादसे का कारण बनता है, इसलिए कभी भी इसका चलते वक्त प्रयोग ना करें। कभी भी सस्ते चार्जर केबल यूज़ ना करें और इसको रात भर लगाकर ना छोड़ें, जिससे कि खतरा कम रहे। गीले हाथों से फ़ोन ना छुएं। यदि बिजली गिर रही हो तो फ़ोन यूज़ ना करें। पानी में गिर जाए तो इसे तुरंत ऑफ कर दें। OTP बैंक किसी को ना बताएं। अनजान लिंक और ऐप कभी भी डाउनलोड नहीं करें। और इसके साथ ही आज का युवाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। छह बजने को है, कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
2: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहाँ पहुंचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव

0: मिस्ट्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिस्ट्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6,00,000 करोड़ रुपये के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा किया। सेना प्रमुख ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। पदभार ग्रहण करने के बाद सेना प्रमुख का पुंछ के अग्रिम क्षेत्रों का ये पहला दौरा है। सेना प्रमुख ने नगरोटा स्थित व्हाइट नाइट कोर मुख्यालय में वरिष्ठ कमांडरों से जम्मू क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों की जानकारी ली। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक एलपीजी टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा है कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले साल यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले एलपीजी टैंकर एमवी फाल्कन में विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया है कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अमरीकी हवाई हमलों से 2 दिन में 14 लोग मारे गए हैं और 78 घायल हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मानसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है हमारे यहाँ से आशीष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज रात 9:30 पर कंट्री वाइड कार्यक्रम होगा। इनसाइड प्रोग्राम का प्रसारण किया जाएगा रात 9:45 पर और ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

से कुछ देर बाद संध्या 6:15 पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किसान वाणी कार्यक्रम होगा, जिसमें आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से खेत की सुरक्षा और खेतों में जल संरक्षण की आधुनिक तकनीकें चर्चा करेंगे दीपक गोस्वामी। भेंटवार्ता होगी धान की रोपाई और फसल प्रबंधन। वार्ताकार होंगे सुधीर अग्रवाल और आपसे भेंट करेंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। इसके अलावा कुछ लोकगीत होंगे, साथ ही मौसम का हाल और बाजार भाव बताया जाएगा। समय रहेगा संध्या 6:15।

देश खान का समय रहेगा आपसे कुछ देर बाद संध्या 6:10 और रात 8:20। फिल्मी भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन का प्रसारण किया जाएगा आज सायं 6:45 पर। संध्या 7:05 पर साहित्य कार्यक्रम में दे समारोह में श्रोता लेंगे जानकारी मथुरा वृंदावन में परिक्रमा के महत्व विषय में। वार्ताकार होंगी लक्ष्मी शर्मा।

प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे संध्या 7:20 पर। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा श्याम सुहानी संध्या 7:31 पर। फिल्म संगीत श्रोता सुनेंगे रात 8:00। एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा आज रात 8:30 पर। चितपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने का समय रहेगा रात 9:15।

आज रात 10 बजे श्रोता सुनेंगे रूपक यात्रा ब्रज के आलेख मोहन स्वरूप भाटिया का होगा, प्रस्तुति टीएन शर्मा की। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज रात 10:30 पर श्रोता सुनेंगे कामोद मिश्रा के गाय ठुमरी और तात्रा।

हिंदी समाचारों का समय रहेगा रात 8:45 और रात 11 बजे। अंग्रेजी समाचार होंगे रात 9 बजे और रात्रि 11:05 पर। हमारी दूसरी सभा का समापन होगा रात 11:10 पर। यह था आज का कार्यक्रम विवरण।

FM 102 दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देशभक्ति परक रचना।

आशाराम त्रिपाठी की शब्द रचना भी आपने सुनी संवेद स्वरों में FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। और अब श्रोता सुनेंगे किसानवाड़ी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे दीपक गोस्वामी।

0: क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
1: क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है।
0: जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं
1: और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनों को हमारी राम राम। भैया, हमारे जीवन में सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है। ऐसे ही एक सुरक्षा की बात, सुरक्षा की योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यह योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचावे के लिए हमारे किसान भैयन के काज है। ये बहुत ही अच्छी योजना है। बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक के सभी नुकसान या में शामिल है। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, भारी बेमौसम बारिश, भूस्खलन, बादल के फटबे की स्थिति में फसल में कीट या रोग से नुकसान है की स्थिति में, कम बारिश या मौसम की वजह से बीज न बो पावे की स्थिति में, कटाई के बाद 14 दिन तक खेत में रखी फसल अगर ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम बारिश से खराब होए, ऐसी स्थिति में स्थानीय आपदा जैसे कि एक खेत में ओलावृष्टि, जलभराव, आग, ऐसी स्थिति में भी या हाथी या जंगली जानवर से होने वाले नुकसान, ऐसी सब सुरक्षा हमें या बीमा से मिले हैं। किसानों को सिर्फ नाम मात्र की राशि देवे पड़े, बाकी राशि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा दी जाए। भैया, क्या योजना में नई तकनीक को इस्तेमाल हुए, उपग्रह से जो फोटो खींचे जाएं बिन के आधार पे भुगतान को प्रक्रिया हुए, तो भैया हमें जो अपनी नजदीक की बैंक है वहां जाए के अपने फसल बीमा को फार्म भरना है और फसल बीमा लेना है। ये तो भैया बात रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। अब आपको सुनवा में है यह ब्रज लोकगीत।

0: अभी भी आनंद ले रहे रामगोपाल के स्वर में या ब्रज लोकगीत को। भैया खेत में जल संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। जब वर्षा आवे तो हमें ऐसी व्यवस्था रखनी है कि खेत को पानी खेत में और गांव को पानी गांव में। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हो सके तो ये प्रयास अधिकतम रहना चाहिए कि जो वर्षा को जल है वह हम संरक्षित कर सकें और वह हमारी खेती के काम में आ सके। अब यह भेंट वार्ता क्रम में आपको जानकारी दिवा में है धान की रुपाई और फसल प्रबंधन के संबंध में जानकारी दे रहे हैं प्रगतिशील किसान सुधीर अग्रवाल और इनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, खरीफ की प्रमुख फसल धान, इसकी रुपाई में आप सभी लोग लगे होंगे, व्यस्त होंगे। क्योंकि इस बार मानसून भी अच्छा आया है, समय से मानसून है, पूरे देश में मानसून अच्छा देखने को मिल रहा है, साथ ही अपने उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र में भी अच्छी खासी बारिश हो रही है। अगर मानसून अच्छा आता है तो निश्चित रूप से धान से अच्छी पैदावार ली जा सकती है, बशर्ते कि समय से उसके जो कृषि कार्य हैं वो हम कर लें। आज इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे संग हैं सुधीर अग्रवाल जी, जो कि जाना पहचाना नाम है, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। कहीं भी गोष्ठी में, वैज्ञानिक गोष्ठी में, किसान गोष्ठी में और किसानों से संबंधित जो भी सेमिनार मेला हो लगते हैं वहाँ पर आपको अक्सर मिल जाए।

0: अग्रवाल जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। और सबसे पहले अग्रवाल जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे, धान की रोपाई है, हमारे किसान भाई रोपाई कब तक कर सकते हैं?
1: मैं किसान भैयाओं को सबको राम राम कहता हूँ। और रुपाई का ये सबसे बढ़िया उपयुक्त समय चल रहा है। और जिन भाइयों के खेतों में, नर्सरी में अगर बकानी रोग आ गया है, सुर्रा, तो पुनः बीज का शोधन करके दोबारा नर्सरी डाल लें, क्योंकि अभी समय है। हमारी 15 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी।
0: जी
1: और 15 दिन बाद अगर हम 1 अगस्त को 16-92 पूसा बासमती 16-92 को लगाते हैं, तो वो क्रॉप जो है, बीज से बीज की मात्रा इसकी जो है, समय जो है 110 दिन का है। तो हमारे जो है ये अक्टूबर के एंड तक ये क्रॉप तैयार हो जाएगी। उसी तरह 15-09 है, उसी तरह से नई वैरायटी पूसा की आई है 1847, और एक नई आने वाली वैरायटी है 1985,
0: जी
1: जो कि क्या कहते हैं, हर्बिसाइड टॉलरेंट होगी। इन प्रजातियों को हम जो है बुवाई कर दें, और जो बुवाई न कर, जो हमारी नर्सरी तैयार है, तो उन नर्सरी की रोपण हम शीघ्र से शीघ्र करें। कारण क्या होता है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटियाँ हैं, कम समय की अवधि की वेराइटियाँ हैं। इनकी उम्र 20 दिन की होनी चाहिए। अगर 20 दिन से ज़्यादा उम्र हो जाती है और हमारी नर्सरी में पौधे लंबी ज़्यादा हो जाती है, तो
0: जी
1: हम उसको गड़से से काट दें।
0: ऊपर से काट
1: ऊपर
0: दें।
1: से हम उसको जो है करीब करीब 8-9 इंच की पौध छोड़ें,
0: जी
1: और उसके बाद जो भयंकर रूप से बकानी का रोग आ रहा है बासमती में, उसका जड़ का शोधन अवश्य करें कार्बंडेजम से।
0: जी
1: कार्बंडेजम जो दवा आती है, या बावस्टीन के नाम से बिकती है, और ये हम लोग जो है आलू में इस रेगुलर जो है अगेती
0: इस्तेमाल
1: झुलसा के लिए इस्तेमाल करते हैं, बीज शोधन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे हम जो है जड़ का शोधन अवश्य करें।
0: तो इससे बकानी रोग से सुरक्षा होगी,
1: जिस
0: किस रोग से?
1: बकानी रोग से सुरक्षा हो जाएगी, आवश्यक पहलू मान करके हम बासमती की जितनी प्रजातियां हैं
0: जी
1: उनका बीज का शोधन तो किया होगा आप लोगों ने। और अगर बीज का शोधन किसी कारण नहीं भी हुआ है, तो जड़ का शोधन अवश्य कर लें।
0: ठीक, बहुत अच्छी बात बताई अग्रवाल साहब आपने कि अब आप खेत में से, नर्सरी के खेत में से जो नर्सरी निकालेंगे रोपाई के लिए, उसकी जड़ों का शोधित करना जरूरी है। और अगर नर्सरी बहुत लंबी है तो उसको ऊपर से आप काट करके रोपाई के लिए ले जा सकते हैं। और इसके लिए वेबस्टीन का आपने बताया कि वेबस्टीन का इस्तेमाल कर सकते हैं रोपाई के लिए। और बीज शोधन आपने किया है तो और अच्छी बात है, नहीं भी किया है तो इस समय भी एक आपके पास समय है कि इसकी पौध की जड़ों की रोपाई से पूर्व उसका की जड़ों का शोधन कर लें।
1: अब आती है बात जो है, हम जो है फर्टिलाइजर कितना लगाएं।
0: जी
1: तो सबसे पहले तो हम खेत में खरपतवारों को खत्म करने के लिए हैरो से, कल्टीवेटर से, पटेला से या रोटावेटर से खेत की जुताई कर लें। जुताई करने के बाद जब देखें कि हमारे खरपतवार इसमें सब खत्म हो गए हैं, तो उसके बाद पानी छोड़ें उसमें। पानी छोड़ने के बाद उसमें हम जो है कीचड़ बनाएं,
0: जी
1: और कीचड़ बनाने के बाद हम उसमें, या तो हमने सॉइल टेस्ट करा रखी है तो
0: ठीक है
1: उसके अनुसार हम फर्टिलाइजर डोज दें। अगर हमने जो है अपने जमीन का क्या कहते हैं कार्ड, पहले अब 2 साल पहले सरकार ने दिए थे
0: सॉइल हेल्थ
1: भूमि
0: कार्ड।
1: सॉइल हेल्थ कार्ड, उसके मुतल्लिक खाद दें। अगर वो भी आपके पास नहीं है, तो खाद की मात्रा इस तरह से निश्चित करें कि हमको जो है 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फॉस्फेट और 40 किलो पोटाश खेत में जरूर लगाना है।
0: जी
1: उसको लगाने की प्रक्रिया यह है कि नाइट्रोजन की मात्रा तो 1/4 हिस्सा लगाएं,
0: अच्छा
1: और फॉस्फेट की मात्रा जो संतुति है 60 किलो पर हेक्टर की, उतनी मात्रा इसमें हम जो है
0: दे दे
1: घोल करने के बाद डाल दें। घोल करने से पहले डालेंगे तो लीच होके नीचे चला जाएगा।
0: जी
1: इस बात का जरूर ध्यान रखें, घोल करने के बाद रोपाई से पहले
0: जी
1: हम उसमें फॉस्फेट की मात्रा डाल दें
0: जी
1: और पोटाश की मात्रा डाल दें। और इसमें जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक अंग होता है धान के लिए, सल्फर भी उतना ही आवश्यक है जितने हमारे ये तीन
0: पोषक
1: पोषक
0: तत्व।
1: तत्व हैं। और सल्फर डालने के बाद हम इस खेत में रोपाई शुरू कर दें, और रोपाई

0: के लिए, क्योंकि जो हमारे भाई लोग बिहार से आते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं या बदायूं जिले से आते हैं हमारे जनपद में, वो किनारे किनारे तो सही लगाते हैं पौध जो है एक
1: अच्छा
0: बालिश पे,
1: हाँ
0: बीच में वो जो है दो दो बालिश पे तीन तीन बालिश पे लगाते हैं। उनको सूना न छोड़ें, खुद खेत में खड़े रहें और एक बालिश, यानी एक बालिश का मतलब हो गया कि 15 से 20 सेंटीमीटर दूरी पर पौधे का रोपण कराएं।
1: जी
0: पौधे का अगर रोपण आपने दूरी ज़्यादा कर दी तो आपकी पैदावार प्रभावित होगी, क्योंकि ये जो हैं शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटियाँ हैं, कम समयकालीन वेराइटियाँ हैं। कुछ वेराइटियों में इनमें टिलरिंग ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। जैसे 1509 है उसमें टिलरिंग ज़रा कम होती है,
1: जी
0: 1692 टिलरिंग ज़्यादा होती है और 1847 से उसमें और ज़्यादा टिलरिंग होती है, परंतु इन सब का 15 से 20 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए।
1: एक जगह पर कितने पौधों की
0: एक
1: रोपाई?
0: पौधे हमारी तो ये व्यवस्था रहनी चाहिए कि अगर हमने समयकालीन नर्सरी तैयार कर ली है और हमारी नर्सरी जवान है और 15-16 दिन की है, तो हम एक ही पौधे का रोपण करें। कि वो जो श्री मेथड कहता है,
1: जी
0: सत्यनारायण जी ने जो विकास किया था आज से 10 साल पहले
1: जी
0: श्री मेथड का, और उसके कारण हमारा जो है उत्पादन बढ़ा और धान में ग्रेन जो है लंबा हुआ, दाना लंबा हुआ, मजबूत हुआ। तो उस मेथड से अगर हम काम करते हैं तो हमको 15 दिन की नर्सरी लगाने के बाद एक ही पौधा लगाना है। और अगर हमारी नर्सरी बूढ़ी हो गई है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि जिसको हमारा बरसात होने के कारण, खेत उठना आने के कारण, मूंग न कटने के कारण, बारिश से मूंग नहीं कटी,
1: जी
0: कंबाइन देर में मिली, हाथ से नहीं कट पाई, बारिश हो गई, ढेंचा नहीं जोत पाया, उन खेतों में हम लेट हो रहे हैं। तो उसको हमने एक तो बताया ऊपर से काट दें और संभव हो तो दो पौधे लगा दें
1: जी
0: अगर हमारे पास उतनी पर्याप्त मात्रा में
1: नर्सरी है तो।
0: नर्सरी है तो।
1: अच्छा, आपने एक चीज और कही थी कि कुछ पौधों में जो है बासमती धान है, कुछ में तो टिलरिंग अच्छी होती है, कुछ में कम होती है, कुछ वेराइटियों में। अगर जहां पर टिलरिंग कम हो रही है तो वहां पर एक की अपेक्षा दो या तीन पौधे लगा सकते हैं?
0: जो दो से ज्यादा नहीं लगाने चाहिए बासमती में, क्या कहते हैं, अगर हम ज्यादा लगा देंगे, ये जो मोटे धान में तो चल जाता है, बासमती में लगा देते तो फिर बीमारियां बहुत आती हैं, क्योंकि बासमती में 5-6 तो बीमारियां हैं और 3-4 तरह के कीड़े आते हैं। ये प्रकोप जब घनी होगी आबादी तो उसमें प्रकोप हो जाएगा। अगर हमारी जैसे पौधा लग चुकी है, 1 महीने की फसल हो गई है, उस 1 महीने की फसल में हम जिंक का स्प्रे जरूर कर दें, चाहे
1: अच्छा,
0: तो चिल्टेड जिंक हो।
1: एक महीने की फसल पे।
0: 1 महीने की फसल पे हम कुछ उसमें या तो नैनो यूरिया ले लें
1: जी
0: और या फिर 2% यूरिया का, जो पुराने समय में वैज्ञानिकों ने बताया कि 1 लीटर पानी में 2 ग्राम यूरिया डाल के उस रेशो से यूरिया घोल के और उसके साथ जिंक मिला के करीब करीब जो है हम 500 ग्राम जिंक 1 एकड़ में, चिल्टेड जिंक को 250 ग्राम और 33% वाली जिंक को लगा दें आधा किलो पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें, तो जो लाल पत्ती पड़ती हैं वो रोग नहीं आएगा। और उसी के बाद हम सूडोमोनास जो बायो क्या कहते हैं पेस्टिसाइड है,
1: जी
0: उसका धान में सबसे बड़ा योगदान है कि जितना भी हमारा लाल लाल सड़न, लाल पत्ता होना, क्या कहते हैं जो फंगस की बीमारियां आती हैं,
1: सीडोमोनास उसमें
0: सूडोमोनास सबसे ज्यादा इफेक्टिव है उसको रोकने के
1: तो
0: लिए।
1: ये कैसे लगेगा सुडोमोनास?
0: सूडोमोनास एक तो तरल आता है,
1: जी
0: तो तरल को 1 लीटर को लेके क्या कहते हैं पानी, अगर 1 इंच 1.5 इंच रखें खेत में, ज्यादा पानी रखें नहीं, और उसकी बोतल को लेके सुराख करके खेत में टपका दें, या स्प्रे मशीन संभव है तो स्प्रे कर दें।
1: जी
0: और अगर पाउडर फॉर्म में सूडोमोनास लिया है तो 1 किलो सूडोमोनास में 10 किलो गोबर की खाद मिला के या केंचुआ खाद मिला के, या किसान का बायो फर्टिलाइजर आ रहा है जो कहते हैं कि बायो पोटास है,
1: जी
0: सरकारी हमारी जितनी भी खाद कंपनियां हैं, इफको है, क्रबको है, किसान है।

0: एनएफएल है, इन सब का पोटास के नाम पर वो आ रहा है, उसमें 12% पोटास है। उसमें अगर हम उस पाउडर फॉर्म के सूडोमोनास को मिला के खेत में बिखेर देते हैं तो हमारी जो है जितनी प्रकार की फंगस हैं वो सब रुक जाती हैं धान में।
1: जी, एक तो हो गई सीडोमोनास के इस्तेमाल की, और जो आपने बताई हैं दवाएं उनका इस्तेमाल करते समय खेत में, धान के खेत में पानी खड़ा रहना चाहिए या पानी
0: पानी कम
1: निकल?
0: रहना चाहिए,
1: अच्छा
0: पानी की मात्रा कम रहनी चाहिए, 1-1.5, क्योंकि अब तो हम सब किसानों ने लेजर लेवलिंग पूरे मथुरा जनपद में इतने सरकार के लेजर लेवलर सरकार ने भेंट कर दिए, अनुदान पे दे दिए, सब किसानों ने करीब करीब जिस पे नहीं था उसने दूसरे पे किराए लेके धान के बारे में मथुरा जनपद सबसे अग्रणी है और हमारे किसान भाई सब योग्य हो गए हैं धान की फसल के लिए, सबने लेजर लेवलिंग करा ली है
1: जी।
0: और 1-1.5 इंच पानी से ज्यादा धान में नहीं होना चाहिए।
1: अच्छा, तमाम तरह की मशीनें आ गई हैं, लेकिन आज भी हमारा किसान जो है मैन्युअली आदमी के द्वारा धान की रोपाई करता है। क्या कोई मशीन आई है अभी रोपाई के
0: नहीं,
1: लिए?
0: रुपाई की पंजाब से बहुत मशीनें बन के आ गई हैं, जैसे हैप्पी सीडर है, सुपर हैप्पी सीडर है, वो बहुत बढ़िया धान की बुवाई करते हैं। पिछले 10 सालों से मैं जो है धान की नेशनल इंडस्ट्री वाले लुधियाने वाले की मशीन है और रेगुलर मैं उससे धान की सीधी बिजाई करता हूँ, करीब करीब 100-150 बीघे करीब धान सीधी बिजाई से बोता हूँ। और उसमें निपुणता ये होनी चाहिए कि हमको बीज की मात्रा का जरूर ध्यान रखना है, 1.5 किलो से 2 किलो बीघे का, यानी 8 से 10 किलो 1 एकड़ का बीज बोते हैं तब उसका लाभ होता है। और उसके लिए ये तो आपने जो प्रश्न पूछा बहुत सुंदर प्रश्न है, ये मई के महीने में हमें बुवाई करनी पड़ेगी,
1: जी,
0: क्योंकि अगर हम अब बुवाई करेंगे तो कामयाबी नहीं
1: नहीं
0: मिलेगी।
1: मिलेगी।
0: मई के महीने में हम बुवाई कर देंगे तो 15-20 दिन में वो निकल निकल आगे फसल तैयार हो जाएगी, पेंडा मेथिलीन का स्प्रे कर देंगे तो कोई खरपतवार
1: खरपतवार नहीं।
0: उगेगा नहीं, जब खरपतवार उगने का समय आएगा जब पैटेटा क्लोर डाल देंगे
1: जी
0: तो उससे जो है खरपतवार नहीं उगेगा
1: जी
0: और हमारी फसल तैयार हो जाएगी। अब इस समय जितनी बड़ी नर्सरियां हैं, जो नर्सरी बुवाई का उपयुक्त समय है उस समय पर हमको सीधी बिजाई कर देनी चाहिए।
1: तो अग्रवाल साहब, यहाँ एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि धान के पूरे जीवन काल में जो पानी की जो आवश्यकता होती है, किस किस समय पर खेत में कितना पानी खड़ा रहना बहुत आवश्यक है? क्योंकि इस समय तो मानसून अच्छा है, हो सकता है आगे चल के
0: देखिए,
1: मानसून
0: जब अब
1: कमजोर
0: हम
1: हो।
0: रोपाई करते हैं, रोपाई करने के बाद 20-25 दिन तक पानी हम बनाए रखेंगे तो हमें खरपतवारों से निजात मिल जाती है
1: जी
0: और उसमें हम पिटीटा क्लोर डाल देंगे या दूसरी कंपनियों की कुछ दवाइयाँ आ रही हैं, नए साल्ट आए हैं उनको डाल देंगे तो हमें 25 दिन तक पानी तो आवश्यक है।
1: जी
0: फिर उसके बाद धान को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। फिर जब हमारी बाली निकलने को होगी, जब बाली निकल रही है हमारी, उस समय फिर 20 दिन के लिए पानी चाहिए। पानी में ही हमारी बाल बाहर निकल के आनी चाहिए जिससे कि उस समय पानी की सबसे ज़्यादा धान को आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए, और उसमें पानी अगर पूरे उपयुक्त रहेगा तो पैदावार हमारी ज़बरदस्त आएगी।
1: जी आपने कहा था कि उर्वरकों के इस्तेमाल की बात करी थी आपने, फास्फोरस और पोटास को तो उसी समय रोपाई के समय डालने की पूरी बात कही, 1/4 हिस्सा नाइट्रोजन की देने की कही थी, बाकी जो नाइट्रोजन है किस रूप में और किस समय देना है?
0: ये नाइट्रोजन को हम या तो 19-19-19 आता है इफको का,
1: जी
0: उसके रूप में जब हमारी 40 दिन की क्रॉप हो जाए, 40 दिन, 60 दिन और 90 दिन पे 3 स्प्रे कर दें, और जब बाली निकल आए तो हम 52-34 का स्प्रे कर दें, उसमें पोटास और फास्फोरस होगा, और जब बाली निकल के तैयार हो जाए तो हम 0-0-50 जो पोटास का स्प्रे कर दें, और जो नाइट्रोजन अगर हमें आवश्यकता समझते हैं जो हमारे पास नाइट्रोजन बची हुई है तो हम एक बार में 10 किलो 1 एकड़ से ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं दें।
1: अच्छा, पहले ये कहा जाता था अगर आपके खेत में पानी खड़ा हुआ है तो नाइट्रोजन सीधे छिड़कनी नहीं चाहिए, उसको मिट्टी में मिला करके या किसी और रूप में देना चाहिए।
0: अब वो ऐसा है उसका परसेंटेज अपने आप डाउन हो जाता है, कि इसीलिए हमारे किसान भाई लोग जो हैं 1 कट्टा बीघे का यानी

0: पांच कट्टी एकड़ का नाइट्रोजन के यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम गए थे, क्या कहते हैं, पिछले दिनों बठेन साइड में, तो वहां हमने उन किसानों से कहा, भैया ये क्या कर रहे हो तुम? बोले साहब, जब तक हमारे खेत में 5 कट्टा एकड़ का यूरिया नहीं लगेगा, जब तक हमारे धान 18 मन बीघे के नहीं होंगे। और उनकी अब फसल, गर्मी का धान कट रहा है, रोजाना जो है कोसी की मंडी, होड़ल की मंडी, दिल्ली की मंडी लेके जा रहे हैं,
1: जी
0: और उनकी 16 मन 17 मन 18 मन 12 मन बीघे की पैदावार आ रही है, और 3200 रुपये से 2800 रुपये कुंटल के बीच में 15 09 16 92 और 18 47 बिक रहा है। और 18 47 की तो कुछ किसानों की पैदावार 30 35 36 कुंटल पर एकड़ तक की आई है।
1: भैया,
0: इतनी जबरदस्त ये प्रजातियां बासमती की आई हैं कि किसान को बहुत अच्छा इसमें लाभ प्रतीत हो रहा है।
1: अच्छा, ब्रज की जो बासमती पैदावार है या अपने जो तराई वाला इलाका है वहाँ की पैदावार जो होती है, उनकी बासमती में और यहाँ की बासमती में कुछ फर्क आता है क्या?
0: हमारा तो मानना ये है डॉक्टर साहब, हमारे मथुरा की बासमती के मुकाबले हिंदुस्तान में किसी इलाके की बासमती नहीं है। क्योंकि देखिए, फॉर्च्यून कंपनी, KRBL कंपनी, और क्या कहते हैं, सतनाम ओवरसीज, और क्या कहते हैं आपका लाल किला ब्रांड, ये हमारी कोसी की मंडी, मथुरा की मंडी, राया की मंडी, गोवर्धन की मंडी, और खैर की मंडी, और छर्रा की मंडी, हाथरस की मंडी,
1: यहाँ से लेते
0: यहाँ
1: हैं।
0: से बल्क मात्रा में धान खरीद के ले जाते हैं। और इनके गांव गांव प्रोग्राम भी चलते हैं।
1: जी
0: अब आप ये ताज्जुब करेंगे कि मथुरा मंडी, कोसी मंडी, गोवर्धन मंडी, और राया मंडी, और खैर मंडी से कितने लाख कुंटल धान बोटल लेके जा रहे हैं, जब हमारी क्वालिटी बढ़िया है।
1: हाँ
0: और जो दिल्ली का भाव है, वो पानीपत का भाव है, चंडीगढ़ का भाव है, अमृतसर का भाव है, उससे तेज भाव रहता है हमारी
1: जी
0: मंडियों
1: तो
0: में।
1: स्वाभाविक है कि अपने यहाँ के धान को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अग्रवाल साहब, अब जैसे हम रोपाई कर देंगे, रोपाई के बाद कोई रोग की आने की संभावना है क्या?
0: संभावनाएं तो बहुत हैं साहब, क्या कहते हैं, एक तो जड़ों में कीड़ा आता है,
1: अच्छा
0: लाल और काले रंग की गिराड़ आती है, सफेद रंग की गिराड़ आती है। अगर हम धान में जो है रोपाई के 25 30 दिन बाद कारटफ नाम की दवाई न लगाएंगे तो स्टेम बोरर आ जाएगा। स्टेम बोरर के लिए एक जो है दवा, ये है नई जो है बायर कंपनी की, और उसका उन्होंने गारंटी किया, इस साल ट्रायल किया है मक्का पे और धान पे। वो कहते हैं कि इसका बीज शोधन में इस्तेमाल कर देंगे तो 2 महीने तक कोई कीड़ा नहीं आएगा 2 महीने बाद। क्योंकि धान में सबसे ज़्यादा किसानों को समस्या आती है कि सूखी बाल निकल रही है। वो सूखी बाल का कारण होता है जब हमारी 25 दिन की 30 दिन की फसल होती है, जब भी वो स्टेम बोरर आके हमारे खेत में और धान के पौधे में घुस जाता है, और जब घुस जाता है तो जब भी वो जो है
1: बाली निकलती
0: बाली निकलने का सिस्टम बनता है उसको कट कर देता है,
1: जी
0: और जब हमारी बाली निकलती है तो वो सफ़ेद निकलती है। तो आवश्यक है कि हम जो है, या तो हम जो है रीजेंट डालें, या कारटफ डालें, या फिर और कई कंपनियां हैं उनकी अलग अलग साल्ट आए
1: मतलब
0: हैं,
1: 1 महीने के बाद डालना है ये सब?
0: ये 1 महीने के बाद डालना है,
1: जी
0: और 1 महीने बाद डालने के बाद ये करीब जो है 25 दिन काम करेगा।
2: हाँ भाई, भैया भेंटवार्ता क्रम में धान की रुपाई और फसल प्रबंधन की जानकारी ले रहे प्रगतिशील किसान सुधीर अग्रवाल पे थे, और उनसे बातचीत कर रहे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। यही के संग आज के कार्यक्रम में विदा लेवे को एक समय, सभी भैया बहनों को हमारी राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: अभी श्रोता सुन रहे थे किसानवाणी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत किया दीपक गोस्वामी ने। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। और अब प्रस्तुत है फिल्मी भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन।

महेंद्र कपूर और साथियों को भी आपने सुना। फिल्म थी बैराग, वो लानत बख्शी की थी, धुन तैयार की थी कल्याण जी, आनंद जी ने

हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना भी आपने सुनी, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म थी मिस मैरी।

0: मैं कपूर और साथियों को भी आपने सुना, फिल्म थी बजरंग बली।
1: सत्य भा

0: प्रिय किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी।
1: नारायण।

0: नारायण, क्यों बैठी हो खोई खोई? मेरे योग्य है सेवा कोई?
1: भरे नहीं अभी खाओ पुराने, फिर आए हो आग लगाने।
0: मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो।
1: कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए।
0: अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी?
1: वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचाए।

0: तुम नहीं समझी कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना, मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना।
1: बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीते रुक्मिणी हारी।
0: परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना।
1: वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं सौ कृष्ण मैं तोलूं।
0: नारायण नारायण।
2: लता मंगेशकर, मन्ना डे और कौमुदी के गाए राजा और रंग फिल्म की इस भक्ति रचना के साथ ही आज का संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
3: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम।
3: क्या
4: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
5: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। साहित्य कार्यक्रम में आज देश समारोह में लेते हैं जानकारी। मथुरा वृंदावन में परिक्रमा का महत्व। वार्ताकार हैं लक्ष्मी शर्मा।
6: ब्रज के सवई लीला स्थलन की स्थानीय परिक्रमा विविध तिथि और अवसरन पे हुए, जामे मथुरा वृंदावन और गोवर्धन की परिक्रमान को बड़ो महत्व है। जिन स्थानन की परिक्रमा आम तौर सो हर महीना की एकादशी, पुण्यमासी और मलके महीनान में रोज लगाई जाए, विशेष परिक्रमान के दिना निहित हैं। मथुरा की विशेष परिक्रमा वर्ष में चार बार लगे। वैसाखी पुण्यो जाकु वन विहार की पुण्यो कहो जाए, और दूसरी आषाढ़ शुक्ल एकादशी कू लगे जाय देव सोनी एकादशी कहो जाए, और तीसरी कार्तिक शुक्ला नवमी को जाकु अखे नवमी कहो जाए, और चौथी कार्तिक शुक्ला एकादशी को जाय देव ठान एकादशी के नाम सो जान्यो जाए। अखे नवमी की परिक्रमा तीनों वनन की होए जा।

जुगल जोड़ी सो लोग अपनी मनोती पूरी करवे के ताई लगा में ब्रज में जाको बड़ो महत्व होए। परिक्रमा मार्ग में कहूँ मानव श्रृंखला नाए टूटे। कार्तिक शुक्ला दशमी को कंस मेलो मथुरा के कंस खार पे लगे। मथुरा के चतुर्वेदी समाज में कंस वध के बाद मथुरा के नवयुग चतुर्वेदी घर नाए जाए। वे तीनों वनन की परिक्रमा एक काशी को लगा में और दूसरे समाजन के स्त्री पुरुष और बच्चाऊ जा परिक्रमा को लगा में। जो चलवे में असमर्थ होए वे तो एक वन की परिक्रमा लगा में और जो समर्थवान है वे तीनों वनन की परिक्रमा करें। जाई प्रकार सो गोवर्धन और राधा कुंड की विशेष परिक्रमा अषाढ़ शुक्ल पुण्यो को हो जाकू मुड़िया पुण्यो और व्यास पुण्यों के नाम से उजान्यो जाए। मथुरा की स्थानीय परिक्रमा पंचकोसी परिक्रमाएं जाकू मथुरा के विश्राम घाट सो अधिकतर परिक्रमार्थी शुरू करें। वैसे जो जहाँ रहे वहीं नजदीकी परिक्रमा मार्ग सो शुरू कर दें। मथुरा के विश्राम घाट सो परिक्रमा प्रारंभ करवे वाले परिक्रमार्थी जमुना के दक्षिणवर्ती गुहिर तीर्थ घाट पे आमे। वहाँ पे एक दर्शनीय ऐतिहासिक लाल पत्थर को चौकोर स्तंभ है जाकू आमेर के राजा बिहारी मल ने अपनी रानी की स्मृति में संवत 1627 में बनवायो। जी मथुरा की प्राचीन इमारतन में सबसे पुरानो स्तंभ है। जासो आगे योग माया घाट पे चर्चिका देवी को मंदिर है और वहीं पिपलेश्वर महादेव को मंदिर है। वो मथुरा के चार महादेवन में पूर्वी दिशा को क्षेत्र रक्षक मान्यो जाए। वहीं पे बटुक भैरव मंदिर है जो नाथ संप्रदाय को प्राचीन देवालय है। रामघाट पे बल्लभ संप्रदाय को दाऊजी मदन मोहन को बड़ो प्राचीन मंदिर है। वहीं पे बल्लभ संप्रदाय के छठे घर की गद्दी हुए। यमुना तट पे परिक्रमा में ध्रुव टीलो बलि टीलो नाग टीलो सप्तऋषि टीलो प्राचीन स्थल है। वहीं पे परिक्रमा मार्ग पश्चिम की ओर मुरे और राजकीय इंटर कॉलेज की सड़क को पार करतो भयो रंगभूमि नामक प्राचीन स्थल पे आवे। जाय स्थल के विषय में कहो जाए कि कंस ने कृष्ण बलराम को युक्ति सो बुलाए के समाप्त करवे के ताई रंग उत्सव को आयोजन करो हतो। मही एक टीलो है बाकू कंस टीलो कहे हैं। कार्तिक शुक्ला दशमी को कंस टीले पे कंस वत को मेलो लगे। रंगभूमि के प्राचीन स्थल में रंगेश्वर महादेव को मंदिर है। रंगेश्वर मथुरा के चार महादेवन में दक्षिण दिशा के क्षेत्रपाल माने जाए। रंगभूमि सो परिक्रमा मार्ग डैम्पियर नगर बनखंडी हनुमान होत भयो शिवताल और गायत्री टीले पे पहुँचे। शिवताल को जीर्णोद्धार राजा पटनी मल ने संवत 1864 में करायो। जाके चारों ओर पक्के घाट और सीढ़ियाँ बुर्जीन के संग बनी भई हैं। शिवताल सो परिक्रमा पश्चिम दिशा की ओर ऐतिहासिक कंकाली टीले पे पहुँचे जो विगत काल में जैन धर्म को प्रमुख केंद्र हतो। कृष्ण जन्म स्थान के बाद जो दूसरो प्राचीन स्थल है वहीं पे बलभद्र कुंड और कुंड के समीप एक बगीची में भगवान बलभद्र को विग्रह विराजमान है। परिक्रमा मार्ग में मथुरा को भूतेश्वर महादेव मंदिर है जो मथुरा के चार महादेवन में पश्चिमी दिशा को क्षेत्रपाल कहो जाए। जी विग्रह अति प्राचीन बतायो जाए है। पोथरा कुंड परिक्रमा मार्ग को एक ऐसो स्थल है जाकी निर्माण शैली अद्वितीय है। जाके साथ केशव देव मंदिर है जाको अत्यंत प्राचीन बतायो जाए। यादवन के शासन काल में माँ कंस को कारागार हतो जाकी एक कोठरी में भगवान कृष्ण ने जन्म लियो। यहीं पे भगवान वासुदेव कृष्ण को वर्तमान भव्य जन्म स्थान स्थल है। परिक्रमा मार्ग में एक टीले पे महाविद्या देवी को भव्य प्राचीन मंदिर है। कहते हैं प्राचीन काल में यहाँ पे एक सघन वन हतो जाकू अम्बतका नाम सो जान्यो जातो। परिक्रमा में प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष रूप में सरस्वती कुंड विराजमान है। मथुरा की परिक्रमा को जी विश्राम स्थल मान्यो जाए।
यहीं सरस्वती।

0: सरस्वती देवी की प्रतिमा विराजमान है। जाहि स्थल सो चामुंडा देवी मंदिर होत भये, मथुरा के परिक्रमा को मार्ग गणेश टीले की ओर जाए, घूरकोट के अंतिम छोर पर गौकर्णेश्वर महादेव मंदिर है। जी महादेव मथुरा के चार महादेवन में उत्तरी दिशा को क्षेत्रपालक कहो जाए। यमुना जी के विश्राम घाट के उत्तर दिशा के 12 घाट हैं। यहीं पे अम्बरीश टीलो, चक्रतीर्थ घाट और कृष्ण गंगा घाट पास पास हैं। 12 पुराणन में इनको बड़ो उल्लेख मिले। यहीं सो आगे चल के परिक्रमा मार्ग में कंस किलो एक ऐतिहासिक स्थल है, संयम घाट जाको स्वामी घाट के नाम से पुकारो जाए। यहीं सो परिक्रमार्थी मथुरा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल राजाधिराज द्वारिकाधीश मंदिर होत भये, पुनः गताश्रम नारायण मंदिर होत भये विश्राम घाट परिक्रमा के अंतिम स्थल को पहुँचे। तीन वन जायवे वारे परिक्रमार्थी सरस्वती कुंड सो छटीगरा गरुड़ गोविंद पहुँचे। छटीगरा के निकटवर्ती वन में गोपालगढ़ नाम को एक प्रसिद्ध देव स्थल है। गरुण गोविंद में गरुड़ पयासीन भगवान विष्णु की मूर्ति है। वहीं सो वृंदावन को कच्चो मार्ग गयो है। अंतिम वनन की परिक्रमा के ताई यहीं सो परिक्रमार्थी ब्रज के प्रसिद्ध स्थल वृंदावन को कूच करें। वृंदावन प्राचीन काल में सघन वन हतो, जो अपनी सौंदर्यशालीनता और प्राकृतिक सुषमा के ताई अविस्मरणीय कहो जातो। जाकू ब्रज के 12 वनन में सातवो वन कहो गयो है। 20 कोसी आकार के प्राचीन विशाल वृंदावन सो पंच कोसी परिधि में लाइवे के ताई जाकू पहले निज वृंदावन, फिर पुराण कालीन वृंदावन को महत्व दियो गयो। और श्री कृष्ण लीला के प्राचीन उल्लेखन को संबंध जाके विभिन्न स्थलन सो जान्यो जावे। वर्तमान वृंदावन के निर्माण को श्रेय सर्व श्री चैतन्य महाप्रभु हित हरिवंश और स्वामी हरिदास के धार्मिक संप्रदायन को है, जिनने वृंदावन में निवास करके समस्त उत्तरी भारत को राधा कृष्ण की माधुर्यमयी उपासना में रंग दियो। वृंदावन की परिक्रमा में अनेक दर्शनीय स्थल परंपरागत महत्व के सूचक हैं। वहीं के तीन वनन की परिक्रमा एक वन की परिक्रमा के परिक्रमार्थी गुजरे हैं। रमन रेती मदन टेर, राम गोपाल घाट, नामा घाट, जुगल घाट, गोपाल घाट, सूरज घाट, बिहार घाट, भीम घाट, कालीदह, टेहरी घाट, वर्धमान घाट, इमली घाट, सिगार घाट, रानी किशोरी घाट, गोविंद घाट, चीर घाट, केसी घाट, टिकारी घाट आदि 34 घाट यमुना तट पे हैं। इन्हीं से परिक्रमार्थी परिक्रमा में अपनी यात्रा करें। जाके अतिरिक्त परिक्रमा में आए हुए वारे देव स्थलों आमे, जिनमें वंशीवट, निधिवन, सेवा कुंज, रासमंडल, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण, गोपेश्वर महादेव, वनखंडी, राधा दामोदर, बिहारी जी आदि प्रसिद्ध स्थल हैं। जाके अलावा यही स्थान ब्रह्मचारी मंदिर, शाह बिहारी, रंगजी मंदिर, जयपुर मंदिर आदि अनेक दर्शनीय स्थल हैं। परिक्रमार्थी बत्रोड़ मंदिर होत भये, अक्रूर घाट से मथुरा के पुराने परिक्रमा मार्ग से मथुरा आकाशवाणी होत भये, गोकर्णेश्वर महादेव से मथुरा आ जाए। यही तीन वन परिक्रमा समाप्त है जाए।
1: दी समारोह में अभी श्रोता सुन रहे थे वार्ता मथुरा वृंदावन में परिक्रमा का महत्व। वार्ताकार थी लक्ष्मी शर्मा। इसके साथ ही आज का ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
2: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

FM 102 दशमलव तो मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही देर में श्रोता सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: निश्चित रूप से बहुत।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 229 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने बुंदेलखंड में बदली विकास की तस्वीर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस ने तेज की जांच। 8 आरोपियों समेत संदेह के दायरे में आए परिजनों के 30 बैंक अकाउंट सीज। प्रदेश सरकार 12 जुलाई को लगाएगी 35 करोड़ पौधे। प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा, हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। और प्रदेश में कई जनपदों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चेक और आयुष्मान कार्ड वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड के विकास का सपना डबल इंजन सरकार ने साकार किया है। सरकार इस क्षेत्र को यूपी के सबसे बड़े औद्योगिक शहर बीड़ा के रूप में विकसित कर रही है।
3: मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि हमारे बुंदेलखंड के विकास के लिए, यहां की विरासत के संरक्षण के लिए जो भी प्रोजेक्ट शासन के संज्ञान में आएगा, उसको आगे बढ़ा करके बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाने का काम हम लोग करेंगे, आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।
2: मुख्यमंत्री ने बांदा में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज अपने चित्रकूट दौरे के दूसरे दिन कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने भगवान श्री कामतानाथ के दर्शन किए और पावन कामतगिरी की परिक्रमा कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस की विशेष टीम ने

0: जांच तेज कर दी है। पुलिस ने आठों आरोपियों समेत संदेह के दायरे में आए परिजनों और रिश्तेदारों के करीब 30 बैंक अकाउंट सीज कर दिए हैं। पुलिस ने आरोपी अनुकल्प मिश्रा के चाचा को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही इनायत नगर स्थित एक सर्राफा प्रतिष्ठान के संचालक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने बताया कि संत समाज ने ट्रस्ट के फैसलों पर संतुष्टि जताई है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट ने मंदिर में चढ़ावा गिनती स्थल का निरीक्षण किया है और ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे भविष्य में कोई अन्य घटना दोबारा न हो सके।
1: इस बात का विश्वास रखिए कि हम लोग इस कार्य को अब अधिक दक्षता के साथ करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और जब यहाँ का सीईओ नियुक्त हो जाएगा उसके पश्चात तो सारी कार्य पद्धति में एक निखार आएगा।
0: श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए जारी किए जाने वाले वीआईपी पास की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल के रेफरेंस आईडी सस्पेंड कर दी गई है। इसके चलते उनके माध्यम से विशेष दर्शन पास जारी नहीं हो रहे हैं। नई रेफरेंस आईडी अभी तक जारी नहीं की गई है। ऐसे में पहले से जारी किए गए विशेष पास मान्य किए जा रहे हैं। नए पास नई रेफरेंस आईडी जारी होने के बाद बन सकेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज मिर्जापुर में पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए श्री चौधरी ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।
2: मंदिर बनने के बाद उसका एक प्रभावी ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट की ही देख रेख में होता है, सरकार का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है और निश्चित तौर से जो भी ट्रस्ट का हेड है वो भी जवाबदेह होगा और जो जांच में दोषी पाया जाएगा निश्चित तौर से कड़ी से कड़ी सजा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर पीपी चौधरी की अध्यक्षता में गठित संयुक्त संसदीय समिति 10 से 15 जुलाई तक पणजी और लखनऊ का दौरा करेगी। इस अध्ययन दौरे का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना तथा विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करना है। समिति इस दौरान उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, अधिवक्ता संघों और विभिन्न पेशेवर संगठनों के साथ परामर्श करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट नीतिगत नेतृत्व के लिए उत्तर प्रदेश को 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में यह सम्मान प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को प्रदान किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज कृषि के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन 543 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 750 लाख मीट्रिक टन हो गया है। देश के कुल उत्पादन में अकेले यूपी 22% योगदान कर रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस महाअभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे। प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि सरकार हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने को लेकर प्रतिबद्ध है और ये कीर्तिमान आसानी से हासिल करेगी।
3: 35 करोड़ का लक्ष्य बड़ा है लेकिन उत्तर प्रदेश और माननीय योगी जी की सरकार और यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ा नहीं। हमने पिछली बार भी 35 करोड़ का टारगेट था तो हमने 36 करोड़ पेड़ लगाए थे एक ही दिन में, तो हमारे लिए 35 करोड़ का लक्ष्य बड़ा जरूर है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, हम इससे कहीं ज्यादा पेड़ लगाएंगे।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर विद्यार्थियों को 1 लाख से अधिक डिग्रियां और 51 पदक प्रदान किए गए। पदक पाने वालों में 9 छात्र और 42 छात्राएं शामिल हैं। इस मौके पर आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए किट का वितरण और 800 बालिकाओं का HPV टीकाकरण कराया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि अब तक लगभग 3 लाख बालिकाओं का निशुल्क HPV टीकाकरण कराया जा चुका है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की प्रोविजनल उत्तर कुंजी को लेकर अभ्यर्थी 14 जुलाई तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज

0: कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने जानकारी दी है। टीईटी परीक्षा 2 और 3 जुलाई को प्रतिदिन दो दो पालियों और 4 जुलाई को प्रथम पाली में सम्पन्न हुई थी। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय ने प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के कई जनपदों में बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। राजधानी लखनऊ समेत फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर, संभल, नोएडा, अयोध्या, चित्रकूट, बिजनौर सहित कई जिलों में आज बारिश हुई। बारिश और जलभराव के चलते संभल और मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने आज स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। अमरोहा में बारिश और बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई गाँवों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए यहां 11 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। लगातार बारिश के कारण गंडक नदी कुशीनगर के खड्डा में खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 11 जुलाई तक प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: पिछले 24 घंटों के दौरान वेस्ट यूपी में हेवी टू वेरी हेवी रेन के साथ कहीं कहीं एक्सट्रीमली हेवी रेन हुई है, और अगर आगे आने वाले दिनों में बात करें तो ये उत्तरोत्तर मध्य उत्तर प्रदेश और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ेगा। यद्यपि यह उत्तरोत्तर कमजोर होता जाएगा, परंतु इसके प्रभाव से कल जो है इसके सेंट्रल यूपी की तरफ आने पर और थोड़ा कमजोर होने पर वर्षा की मात्रा में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल यानी कि 10 जुलाई को भी जारी रहेगा, और इसके बाद 11 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसमें व्यापक तौर पर कमी आ जाएगी और तराई इलाकों में या कहीं कहीं भारी वर्षा तक सीमित हो जाएगा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 229 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने बुंदेलखंड में बदली विकास की तस्वीर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस ने तेज की जांच। 8 आरोपियों समेत संदेह के दायरे में आए परिजनों के 30 बैंक अकाउंट सीज। प्रदेश सरकार 12 जुलाई को लगाएगी 35 करोड़ पौधे। प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा, हरित क्षेत्र बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है सरकार। और प्रदेश के कई जनपदों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को हमारा स्नेह भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपके द्वारा प्रेषित 7:15 पर भेजे गए संदेशों को शामिल कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को भी आपने सुना, फिल्म थी धरती। गीत हसरत जयपुरी का था, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। इस गीत को सुनना चाहा था। राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाने, ज्योति नरवाने, आकांक्षा और आकाश कुमार। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय। गाजीपुर से प्रतीक, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। पदमाटा की स्नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला और राजेंद्र जी शाह। गांव नथाना पंजाब से अरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन। तालुका निवासा खुपट्टी महाराष्ट्र से बंडू माया, शिवांश, चंद्रकला, भोपालगढ़, देवीदास। कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदनी जंघेल। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, टिंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बरुद्दीन, फजान, फरहान, साइमेरा, आजमीन। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ, निषाद, प्रकाश, बल्लू, तरुण, श्रेणिका और श्रीनिजा। सप्तरंग श्रोतापरार कुंभार कले, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, निकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, सानिका। पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा।

कवि का विशाखा सोनवने। निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई मतीन शाहिद फारूक और इनके सभी परिवारजन। अरिया बिहार से फैसल इमाम मोहम्मद अफसर मोहम्मद अकमल नफीसा। डूबरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबी राधिका बेबी अनिष्का तन्मय गजबी। आदर्श नगर मलूर पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश मेहंडी सौरभ साइना निवान शर्मा। सहारनपुर से सैयद मसरूर शाइना हसन अक्सा नाजिया इब्राहिम। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा विमल अनेजा। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर एमेकर प्रमोद प्रदीप एमेकर। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति ओजस्वी यादव। पिपीरिया से कमलकांत गुप्ता श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। कल्याण मुंबई से किशोर हेवराले सुजाता हेवराले और प्रतीक हेवराले ने और ये अब सुनते हैं भाभी फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

राजेंद्र कृष्ण के शब्द रचना भी आपने सुनी, लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म थी भाभी, संगीत दिया था चित्रगुप्त ने। इस गीत के लिए हमें संदेश प्राप्त हुए, साधु शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंदकला रेवाड़, वज्रकोटीला दिल्ली से कमल बालूजा मधु सागर, सतना एमपी से उमंग मलिक आकांक्षा माही मलिक, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़ मंजुला विशाल निशा, छत्तीसगढ़ मुंगेली से मोहम्मद इसहाक खतीजा मोहम्मद अशफाक अफरीन कौसर मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर, तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंश श्रीवास श्रीमती करुणा श्रीवास आयुष विवेक बेबी आयुषी श्रीवास, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी हरविंदर सिंह चावला लोकेश जोशी आकाश बेबी वैदई मनीष वर्मा रेहान खान पायल जोशी अंकिता जोशी, लक्ष्मण राव लोखंडे कल्पना ताई शैलेश प्रतीक्षा स्वप्निल रक्षंदा और समस्त लोखंडे परिवार का संदेश गाड़गेनगर यवतमाल महाराष्ट्र से, मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा ओम प्रकाश मल्होत्रा, वैष्णव कॉलोनी सरावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक मोहम्मद शकीर अलकमा खत्री अलतबश और शादाब खत्री, बुंदेलखंड जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से रामचरण विश्वकर्मा साहिल प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, राजनगर कांति निकेतन से शारदा गुप्ता कंचन माला मिश्रा कुशेश्वर कांति गुप्ता माला मिश्रा साक्षी रेणु मिश्रा, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन वीना आशीष चैतन्य मेघा, पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता खुराना केशु रिधाना खुराना, दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा कोमल मेहरा किरण कपिल मेहरा कुणाल मेहरा ने। और ये अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में असली नकली फिल्म का गीत बोल हसरत जयपुरी के हैं, धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

हसरत जयपुरी की शब्द रचना भी आपने सुनी, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में। फिल्म थी असली नकली, धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। इस गीत के लिए हमें संदेश प्राप्त हुए ब्रज रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह नगला राणा से, शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा, राजू लवानिया खंदौली आगरा, यात्राम जी उस फार मथुरा, वीरेन सिंह मंडी चौराहे मथुरा, नेत्रपाल सिंह नगला विजयी राया, भजन लाल कुमार आया, महेश चंद सदर बाजार मथुरा से, सतेंद्र चंदसौलिया जिला जालौन से, पंचम लाल चतुर्वेदी दौसा राजस्थान से, साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल शिवा, सनीता पुष्पा शिवा, संजू योगिता, रचन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास बादवानी, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, परमला श्याम कुमार, आसमा दीपक, अनुश्री भवीनीम गांव महाराष्ट्र से श्री राम गोंथाली, उषा हर्षदा वैष्णवी, पूनम युवराज गोंथाली, मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा सबिस्ता, मोहम्मद अजी पलक लुपना और यश मंसूरी, गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन, साइमा हसन, बाबू फिक्री, बेबी चाहत, राहट गांव कैंप प्रवती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप अक्षय, रुद्रा रुचिका रामेकर परवार, 715 पे संदेश, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राकेश राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू, रंगोली राजनगर से बिहार से नवीन सिंह, ज्योति श्वेता, स्वाति सुशांत, चुलबुल रानी, करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कनुगोपाल माहेश्वरी, प्रबलिका पृष्ठवर्धन, विघ्नेश अडार नंदगढ़ छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश दीपेश वर्मा, कुंडरवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी पंडरपुर से जाकिर मुरानी, सुमैया सुबान, समीर सलमा मुमताज और इनके सभी परिवारजन, अहमदनगर से मोहम्मद नरसिंह हुसैन, अमीना पटेल, गार्डन रोड पैठन से बाबा साहेब सरगर, ज्योति शुभम महेश सरगर, बुलठाड़ा और चिंगी महाराष्ट्र से मोल मारकर, शोभाताई दीपाली, श्लोक कुमार, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार, जयराम सिंगर से देशांत कुमार सिंगरकर और अर्पिता जी, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला

रुचर्ड किरकर से बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश और पमला बंचोर से, जलालाबाद बेस से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, देशान निमित आहूजा, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा ने।

शेवान रिज़वी के बोल अभी आपने सुने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म थी हमसाया, धुन तैयार की थी ओपी नैयर ने। इस गीत को सुनना चाहा था। लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी काना श्रीमती मनोहर भाई बागरी प्रभुलाल बागरी नैना सत्यनारायण कपिल शोभा फुंदीबाई बागरी मलकापुर जिला बुलठाणा महाराष्ट्र से नारायण इंगले मंगला राजकुमार दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जामनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल उर्मिला दीपक स्वाति बिपिन देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ कोंडा ने अर्चना

ना हेर आशंडे प्रणय प्रसिद्धि प्रथवा गोडाने कोली नांदेड़ से नारायण गायकवाड़ दयानंद गायकवाड़ ओमकार साई गायकवाड़ राहट काम कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर दिलीप अक्षय रुद्रा रुचिका समस्त रामेकर परिवार कलानौर से नरेंद्र शर्मा किरण शर्मा नितिन और मयंक शर्मा जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामरे करुणा मीना अश्विनी और विपुल कामड़े दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिकलानी बबिता मिकलानी सुभाष योगी बब्बू और डब्बू नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल उषा प्रथमेश पाटिल शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी अनिता सैनी गौरव सैनी गांधीनगर गुजरात से जी के परमार ज्योत्सना हर्ष दीपल उर्वशी शाजीनगर देगलूरी जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा मंजू वर्मा निशांत कौशिकी युवान और आर के राजा ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव प्रशांत राजे संचित भायल प्रतमेश प्रणाली सरवत सानवी कल्पना देशमुख लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मनकापुरी राजदास रानी मणिकपुरी भोरखेड़ पीतरमल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूलत नेहा जैन दीपक मयंक चेतन नाहटा पियरा बाजार झुमरी तलैया से अजय कुमार शिवानी कुमारी प्रियंका कुमारी रिया या तुसी आयुषी अनुरुद्ध मुन्नी देवी शाह जयप्रकाश साव बसंत लाल ईरा मोती पन्ना लाल साव दमदम एयरपोर्ट कॉलोनी कोलकाता से बसंत कुमार सेना देवी रेखा देवी अजय कुमार श्रीमती रिमी तनुश्री गुप्ता और अब आज का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी का हृदय से आभार। नमस्कार।

गुलजार का लिखा, एआर रहमान का संगीतबद्ध किया, गुरु फिल्म का गीत भी आपने सुना। आवाज़ें थी मरियम टॉलर, चिन्मयी, कीर्ति और साथियों की। और ये अब सुनते हैं सोनू निगम की आवाज़ में दिल चाहता है फिल्म का ये गीत।

जावेद अख्तर के बोल अभी आपने सुने सोनू निगम की आवाज़ में। फिल्म थी दिल चाहता है, धुन तैयार की थी शंकर एहसान लॉय ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति परक रचनाएं।

चंद्र दत्त इंदु की शब्द रचना भी आपने सुनी संवेद स्वरों में FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। एक ही फिल्म से आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं अजनबी फिल्म के कुछ गीत। गीत लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है RD बर्मन ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना, गीत आनंद बख्शी का था, संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। और ये अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में अजनबी फिल्म का अगला गीत।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं
0: है? ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

एक ही फिल्म से करके मैं इस समय श्रोता सुन रहे हैं अजनबी फिल्म के कुछ गीत FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए अजनबी फिल्म के इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आईवीएफ केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया, वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग

0: खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
0: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया।
1: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
3: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना

0: विषय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
4: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोत्स्युक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे।

0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अडॉप्ट अ जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन टू इंश्योर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ऑल्सो इंक डील फॉर सप्लाई ऑफ यूरेनियम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। Prime Minister Narendra Modi says India aspires to be one of world's top 3 economies driven by motto of grow more, achieve more, addresses Indian diaspora in Melbourne. National Commission for Women forms a high-level expert committee to review regulatory framework and laws governing IVF clinics. Government waives basic customs duty on key components used in electronic devices to promote their domestic production. Iran accuses US of conducting airstrike near Bushehr nuclear power plant, attacks US bases in Bahrain, Kuwait and Qatar. And in FIFA World Cup, France to face Morocco in the first quarterfinal at Boston in US tonight. And now the news in detail. India and Australia today adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deal was signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia.
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: Later, briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals.
3: The two countries have similar aspirations and a shared approach to ensure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. One of the key outcomes today, adoption of the Joint Declaration on Defence and Security Cooperation, as well as an India-Australia Maritime Security Collaboration roadmap. We also have the administrative arrangement for enabling the supply of uranium from Australia to India.
1: The Foreign Secretary said the two leaders also reviewed progress in economic cooperation. Following the India-Australia CEOs Forum, they agreed to accelerate negotiations on the Comprehensive Economic Cooperation Agreement, building on the gains achieved under the Economic Cooperation and Trade Agreement, which has led to a 55% increase in bilateral trade. India and Australia also expanded cooperation in emerging technologies through the operationalization of the Australian

चंद्रानी मुखर्जी और सखियों को अभी आपने सुना। फिल्म थी जमुना किनारे, बोल वीरेंद्र मिश्रा के थे, धुन तैयार की थी लक्ष्मी सरदार ने।

मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजा मेहंदी अली खां की शब्द रचना भी आपने सुनी, लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म थी मेरा साया।

घर के अंकेत में सुनते हैं शंकर जयकिशन के संगीत निशान में हजरत जयपुरी की बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म है आरज़ू।

0: लता मंगेशकर के गाए आरजू फिल्म के इस गीत के साथ ही चितपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में नवाचार, उच्च कौशल, रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: एक ओर भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित हो रहा देश है, दूसरी ओर दुनिया के तमाम देशों को भारत तकनीक, प्रतिभा और आगे बढ़ने के लिए उन्नत अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है, जिससे हमारे श्रोता अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम परिचित हैं। और यह है क्षेत्र भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र। ये वैश्विक क्षमता केंद्र वस्तुतः क्या है, किस रूप में भारत ही नहीं दुनिया में अपना योगदान दे रहे हैं और एक ओर प्रतिभा को उचित अवसर मिल रहा है, नए नए नवाचार हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों को आगे बढ़ने में योगदान दे रहा है। कुछ इन्हीं विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे अपने इस अंक में। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, CEO और सेक्रेटरी जनरल PhD CII। स्वागत है आपका डॉक्टर मेहता।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित GCC बिजनेस समिट को संबोधित किया।
4: Today, the greatest competitive advantage lies in generating knowledge, applying technology, and solving complex problems. That's what the GCCs are. It's not as if it's the slightly upgraded version of your back room, back off, or office space, the BOPs. No, this is a completely different domain. It has a lot of technology, no doubt, but the new human intervention, human skills and the human knowledge which gets crystallized, what makes this century going to stand out in the name of GCC?
2: शुरुआत डॉक्टर साहब हम यहीं से करना चाहेंगे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमारी जो वैश्विक क्षमता केंद्र हैं वो किस रूप में योगदान दे रहे हैं, और उससे भी पहले समझना चाहेंगे आम जुबान में आम लोगों के लिए ये वैश्विक क्षमता केंद्र क्या हैं और किस रूप में यहाँ प्रतिभा का, तकनीक का संगम हो रहा, बड़ी कंपनियों के लिए हम उत्पाद बना रहे।
3: पिछले अगर दशक में देखें तो भारत एक बहुत ही प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हो गया है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए। और जो इससे पहले क्या होता था, भारत में सिर्फ बैक ऑफिस लोग रखते थे, उसमें कॉल सेंटर्स ये सब आते थे, लेकिन पिछले दशक में जिस तरीके से भारत में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और नए नए जो भारत के कार्यक्रम जो कि जैसे मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, ये सारे नए नए जो कार्यक्रम आए उससे जो है एक भारत जो है एक इवॉल्व हो चुका है हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक सेंटर्स के तौर पे, जिसमें सिर्फ एक बैक ऑफिस ऑपरेशन तक ही ये

0: सीमित नहीं है, बल्कि जिसमें रिसर्च होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, अब तो एक नया आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, इंजीनियरिंग है, फाइनेंस, फिनटेक, लीगल सर्विसेज, और जो ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस हैं जिसमें जो भी चीजें यूज होती हैं, आज भारत उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हब बन चुका है।
1: जी
0: आज भारत में 1800 से ज्यादा ऐसे ग्लोबल कैपेबिलिटीज सेंटर्स हैं जिसमें कि 20 लाख से अधिक लोगों को, आज प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर आप देखें इसमें, जो कि भारत डेफिनेटली एक टैलेंट कैपिटल भी है, आज अगर आप देखें भारत जो है 65% जो भारत की जनता है वो 35 साल से कम उम्र के लोग हैं। तो भारत एक यंग कंट्री है, एक यंग कंट्री होने के नाते हमारे पास टैलेंट पूल है, बट टैलेंट पूल होने के साथ साथ हमने पिछले करीब दशक में देखा है कि भारत एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आज जो भारत का आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च हुआ था, तब भारत में सिर्फ करीब 300-400 रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे, लेकिन आज जब हमें बात कर रहे हैं, 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप जो है भारत के अंदर है, और भारत जो है दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप इनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेशन कैपिटल बनाने की बात करते हैं, क्योंकि टैलेंट कैपिटल तो है ही भारत विश्व का, लेकिन एक इनोवेशन कैपिटल बनाने की दिशा में भी भारत जो है आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनने जा रहे हैं, इसमें जो है आगे चल के मैं समझता हूं आगे चल के सिर्फ एक कॉस्ट आर्बिट्रेज, क्या कॉस्ट के बेसिस पे कि भारत में लेबर सस्ती है, इस बेसिस पे ही आप अपना एक कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज है उसको आप नहीं ले सकते। आगे चलने के लिए हमें एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट की जरूरत है, और उसमें कितना हम इनोवेशन करते हैं, कितना हम उसको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इसमें इंटीग्रेट करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। और जब हम एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं उसके जो तीन मुख्य पिलर होंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के। पहला पिलर मैं समझता हूं एक स्किल, कि क्या हमारे पास स्किल सेट्स हैं आज भारत में। आप टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, जेनरेटिव एआई आ चुका है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, सेमीकंडक्टर है, इस साइड डेटा एनालिटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी भी ऐसी एक नया एक स्टेप आ चुका है जिससे जो है हर इंडस्ट्री अपना ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक चर्निंग हो रही है इंडस्ट्री में, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी 2070 तक नेट जीरो होने का अपना एक कमिटमेंट कर चुके हैं। अगर आप लंबी दिशा में अगर आप देखना चाहते हैं, तो उसमें ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है जो हम करते आ रहे हैं वही सफिशियंट नहीं होगा, बल्कि इस दिशा में हमें अपने एजुकेशन को भी ले जाना है, तो जिससे कि भारत में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी भारत की आ चुकी है, भारत के अंदर इकोसिस्टम तैयार करना है जिसमें कि कॉन्टिन्यूअस लर्निंग हो, जहां पे इंडस्ट्री, एकेडमिया, गवर्नमेंट सब साथ मिलके जो है, जो हमारी वर्कफोर्स है उसको जो है हमें फ्यूचर रेडी बनाना है।
1: श्रोताओं, देश की राजधानी दिल्ली में आज भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर केंद्र कई सारी बातों पर चर्चा हुई, बहुत सारे विचार रखे गए, और सबसे बेहतर हमारे विशेषज्ञ ने जो कहा कि एक ओर शिक्षा, प्रतिभा, कौशल, दूसरी ओर उद्योग, और तीसरी ओर देश की नीतियां इस दिशा में हो कि हम वास्तुतः दुनिया को दिशा दिखा सकें और तीनों का एकीकरण कर सकें। इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने कहा,
2: What is it that AI can do to enhance productivity, enhance efficiency and effectiveness across a range of sectors? How is it that India can adapt AI and what is it that India can contribute in this space? And which is why the thought was that India really needs to become the application and AI-based solution capital of the world. And the way in which we can actually roll out using our talent, what is the way in which we roll out AI for the rest of the world? Today, one of the things that many people, many experts do comment is that while there's a lot of investment taking place in building out data centers, in, you know, the chips that need to be done for this, the high bandwidth memory that needs to work in the data centers, on the infrastructure side, there's a lot of effort which is going on into building the models. But ultimately, all these these are just the infrastructure piece of the play. What happens with what actually gets deployed at the enterprise level and at various levels? And

0: The deployment of AI in enterprises is still lagging across the world, not just in India, but across the world. And that is truly where I think GCCs in India will come in and play that critical role.
1: डॉक्टर मेहता, यहाँ से दिशाएं स्पष्ट होनी शुरू हो रही हैं कि हमारा भविष्य क्या है और किस रूप में इसे कार्यान्वित करना है। यहाँ पर हमारा सवाल ये होगा कि जो लक्ष्य हम सामने रख रहे हैं कि उच्च कौशल और तकनीक का जो वास्तविक उत्पाद है एआई के ऐप के रूप में, वह किस रूप में पूरी क्षमता के साथ हम दुनिया के सामने रख सकेंगे।
2: अभी सेक्रेटरी ने भी कहा कि कैसे हम स्किल सेट्स को, यहाँ पे सिर्फ बीपीओ जॉब्स, हमें बीपीओ जॉब के लिए ही नहीं काम करना है, बल्कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बन रहे हैं उसमें हमें हायर लेवल जॉब्स के लिए जो है अपने आप को तैयार करना है। तो उसमें जो पहला पिलर मैंने बताया स्किल है, और जो सेकेंड पिलर है वो होगा इनोवेशन। क्योंकि आप जो नेक्स्ट लेवल के जीसीसी आएंगे वो सिर्फ यहाँ पे भारत में सिर्फ ग्लोबल मैंडेट को सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं होंगे, बल्कि हमें एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी, इनोवेशन का हब बनाना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम करना है, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी पड़ेंगी, और उसके लिए हमें एक प्रोडक्ट हब बनाना पड़ेगा जिसमें कि हम विश्व के लिए इसमें प्रोडक्ट को बना सकें। जैसे कि मेक इन इंडिया हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लॉन्च किया था आज से 10 साल पहले, उसमें कई सारी प्रोग्रेस हुई है। और क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, इंडिया के पास एक बहुत ही यूनिक टैलेंट है। आप अगर देखें तो साइंटिफिक टैलेंट इंडिया में सबसे ज्यादा है। आप देखिए जो हमारी एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी है, जो प्रोवेस है, आपने देखा कि किस तरीके से कोविड के टाइम में भारत के एंटरप्राइजेस ने पूरी दुनिया में कैसे काम किया। भारत जो है एक फार्मा हब बन गया था कोविड के टाइम में, कैसे नई वैक्सीन हमने जनरेट की। तो एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हमारा एक स्ट्रेंथ है। और तीसरा जो हमारा स्ट्रेंथ है इनोवेशन के लिए, वो है हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्योंकि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ही काफी स्ट्रांग हो चुका है। आज हमारे देश में नए नए जो बच्चे हैं 18 साल 20 साल 30 साल से कम उम्र के जो युवा हैं, वो भी आपने देखा यूनिकॉर्न का स्टेटस ले चुके हैं। ऐसी ऐसी कंपनी देश में अभी आई है जिसमें कि 1.5 साल 2 साल के अंदर वो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन करीब, आज के अगर टर्म में देखें तो करीब 10,000 करोड़ से ऊपर जिसका वैल्यूएशन है, वो एक यूनिकॉर्न मानी जाती है कंपनी। तो ये हमारे देश में एक इनोवेशन का जो एक कल्चर बन चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें फर्दर इसको स्ट्रॉन्ग करना है, इंडस्ट्री, एकेडमिया और गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन करके एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ एक्सीलरेट करना है इनोवेशन को। तभी हम जो यूनिवर्सिटीज में टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी उसको कैसे हम कॉमर्शियली उसको वायबल बनाए, इस पे हमें काम करना है, जिससे कि जो विश्व की समस्याएं हैं तो उसको हम भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसको हम कैसे सॉल्यूशन निकालें। जो थर्ड पिलर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। अब ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कैसे आएगी? सबसे पहले हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जो कि बहुत कुछ हो रहा है। आज अगर आप रोड की बात करें, भारत जो है विश्व का लार्जेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज बन चुका है। तो इसमें ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं भारत की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसीज स्टेबल हैं और हमारा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है बहुत उसमें स्टेबिलिटी है, और हमारे पास आज एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ हो चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतने सारे काम हो रहे हैं, और जो भारत का एक रिफॉर्म का जो मुहिम चली है वो बिल्कुल आगे चलती जा रही है। और डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें, जिसमें कि 1.4 बिलियन 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ मोबाइल से वो लोग कनेक्टेड हैं, तो डिजिटल कनेक्टिविटी हमारे गांव तक है, लास्ट माइल तक है। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं सब चीजों से होता है। और इंडिया ने कई ऐसे रिमार्केबल इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसमें समय से पहले ही इन सब चीजों का ऐलान किया था, और आज उसमें कई सारी प्रोग्रेस हो चुकी है। जैसे डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो सारे रिफॉर्म्स हैं इससे जो है हमारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया में आ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आर्बिट्रेशन के फील्ड में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के फील्ड में हमने काम किए हैं। इंडिया जो है अपने आप को एक वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इनोवेशन इकोसिस्टम बनने की तरफ इसमें काम कर रहा है।
1: डॉक्टर मेहता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत में नवाचार उच्च

0: कौशल रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: Countrywide.

0: Insights.
1: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं और आइए अब सुनते हैं रूपक यात्रा ब्रश की। आलेख मोहन स्वरूप भाटिया का है, प्रस्तुति TN शर्मा की।

0: धन्य है वसुंधरा ब्रज की, ब्रज 84 कोस की भूमि धन्य धन्य है, जहां लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने गोप गोपिकाओं के साथ लोक रंजनी लीलाएं की थी
1: और उन्हीं लीलाओं के स्पर्श से धन्य स्थलों का दरस परस करने, राधा कृष्ण की रागमयी अनुरागमयी लीलाओं का पुनर्जागरण करने, पौराणिक कुंड सरोवरों के स्नान आचमन के लिए ब्रज की यात्रा की जाती है।

0: भोर की पहली किरण के साथ ब्रज की पावन रज को मस्तक से लगाते हुए हजारों पग बढ़ते जा रहे हैं।
1: ये पग हैं हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक के, जिन्हें ब्रज भूमि ने अपनी ओर खींच लिया है।
0: विभिन्न बोलियां, विभिन्न वेशभूषाएं, किंतु इस विविधता में एकता का प्रतीक है श्रद्धालु मन, जो समर्पित है श्री कृष्ण के प्रति, आकृष्ट है ब्रज 84 कोस में फैले लीला स्थलों की यात्राओं के प्रति।
1: ब्रज 84 कोस की ये यात्रा जीवन की शाश्वत महायात्रा को सफल बनाती है, पुण्यमयी बनाती है।
0: धार्मिक विश्वास के अनुसार इस यात्रा से नर्क मुक्ति,

0: तथा माध्व संप्रदाय के आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी ने भी ब्रज यात्राएं की।
1: तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक और आवागमन की विषम स्थितियों के कारण उन दिनों ब्रज की यात्रा करना सरल नहीं था।
0: धीरे धीरे कृष्ण भक्त आचार्यों ने श्री कृष्ण लीला से संबंधित स्थलों की खोज की और यात्रा मार्गों को सुगम बनाया।
1: संवत 1549-50 में बल्लव कुल संप्रदाय के प्रवर्तक श्री बल्लभाचार्य ने ब्रज यात्रा की और उसके पश्चात ये क्रम चलता ही रहा।
0: श्री बल्लभाचार्य के पुत्र श्री गोपीनाथ तथा छोटे भाई श्री विट्ठलनाथ जी ने भी ब्रज यात्राएं की। 16वीं शताब्दी में श्री विट्ठलनाथ जी के नेतृत्व में सामूहिक रूप से ब्रज यात्रा का प्रारंभ हुआ।
1: संवत 1573 में चैतन्य महाप्रभु ने ब्रज यात्रा की। उनके शिष्य रूप तथा सनातन गोस्वामी ने ब्रज यात्रा स्थलों को खोजने और वहां तक पहुंचने के मार्गों को सरल बनाने का प्रयास किया।
0: इस दिशा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया श्री नारायण भट्ट ने, जो दक्षिण से ब्रज में आए थे और रूप सनातन गोस्वामी के शिष्य थे।
1: श्री नारायण भट्ट ने पौराणिक आधार पर ब्रज के वन, उपवन, प्रतिवन और तीर्थ स्थलों की खोज की, उनका नामकरण किया और उनके संबंध में प्रामाणिक रूप से अनेक ग्रंथों की रचना की।
0: श्री नारायण भट्ट ने अकबर के नवरत्न राजा टोडरमल की सहायता से ब्रज के अनेक स्थलों पर रास मंडलों का निर्माण कराया। प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान F.S. Gauss ने श्री नारायण भट्ट को ब्रज यात्रा का संस्थापक बताया है।
1: बल्लभ कुल संप्रदाय के आचार्यों ने श्री कृष्ण भक्ति, ब्रज की गौरव गरिमा की वृद्धि और श्री कृष्ण लीलाओं के प्रसार की दृष्टि से ब्रज की अनेक बार यात्राएं की।
0: ब्रज यात्रा का संस्कृति और लोक जीवन में ही नहीं, साहित्य में भी विशिष्ट स्थान है। ब्रज यात्रा का चित्रण करने वाले अनेक ग्रंथ भी उपलब्ध हैं।
1: चैतन्य मत के प्रसिद्ध विद्वान श्री नारायण भट्ट द्वारा लिखित एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ ब्रज भक्ति विलास में ब्रज यात्रा का प्रामाणिक और विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है।
0: गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की संवत 1600 की ब्रज यात्रा संबंधी ग्रंथ के पश्चात उनकी संवत 1624 की ब्रज यात्रा का वर्णन कवि जगतानंद ने ब्रजभाषा पद्य में किया है। 252 वैष्णवन की वार्ता आदि अनेक ग्रंथों में भी ब्रज यात्रा के वर्णन हुए हैं।
1: ब्रज यात्रा का आज जो रूप है वो शने शने विकसित हुआ है। प्रारंभ में ब्रज यात्रा 12 वनों की परिक्रमा तक सीमित थी, जो केवल एक सप्ताह में पूर्ण हो जाती थी।
0: बाद में 24 वनों की यात्राएं की जाने लगी, जिनमें लगभग 10-11 दिन लगते थे। जैसे जैसे बीहड़ वन उपवनों को यात्रा सुगम बनाया जाता रहा, यात्रा क्षेत्र और अवधि का विस्तार होता रहा।
1: ब्रज यात्रा की इस परंपरा को 16वीं शताब्दी में तत्कालीन कुछ शासकों ने रोक दिया था, किंतु राजनीतिक स्थितियों में परिवर्तन के साथ पुनः ब्रज यात्रा का प्रारंभ हुआ।
0: 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मथुरा के गोस्वामी पुरुषोत्तम जी ने ब्रज के प्रमुख कृष्ण लीला स्थलों और वन उपवनों की यात्रा का शुभारंभ किया, जो लगभग 50 दिनों में समाप्त हुई।
1: ब्रज यात्रा के संबंध में कोटा कढ़ी के गोस्वामी गोविंद लाल जी से हुई भेंट वार्ता के कुछ अंश।
2: वैसे तो यात्रा की परंपरा बड़ी प्राचीन है। अक्रूर जी ने कीनी, बद्रीनाथ जी ने कीनी और वाके बाद फिर महाप्रभु बल्लभाचार्य जी ने, विट्ठलनाथ जी ने
3: परंपरा शुरू करी।
2: हाँ जी, परंपरा शुरू करी। पर आज के जा युग में जबकि बड़ी तो कठिनाई है।
3: हाँ।
2: और जीवन ऐसो है गो है कि आदमी बिजली की रोशनी में रहना चाहे, बढ़िया बढ़िया गद्दान पे सोवे, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं। ऐसे वातावरण में और जा ब्रज यात्रा में जहाँ गामन में रहो, धूल फांकवो, पैदल चलवो, तो जी ऐसी कौन सी प्रेरणा है, ऐसो कौन सो विचार वाके मन में हुए जो ये यात्रा को कार्यक्रम बने?
3: हमें मुख्य उद्देश्य उनको ये हो कि घर संसार

0: की प्रवृत्ति में बेचारे बड़े चिंताग्रस्त हुए। उनको वहाँ भगवत भजन, भगवत सेवा, सत्संग को समय कम मिल पावे, तो उनकी भावना ये हो कि कम से कम हम ब्रज में जाकर के भगवत स्थली जहाँ भगवान ने लीलाएं करी हैं उनके हम दर्शन करें, वल्लभाचार्य जी की जो बैठके हैं उनके दर्शन करें, गिरिराज जी की परिक्रमा करें, यमुना पान करें, और हमारे यहाँ जो विशेष मनोरथ यज्ञ हुए है 56 भोग कुनवाड़े आदि वाके दर्शन करवेसूँ, उनके मन को बड़ो आनंद हुए है और उनको जीवन भर परम शांति की प्राप्ति हुए है, या उद्देश्य को लेकर के वो यहाँ पर आवे हैं और उनको ब्रज यात्रा में हरेक स्थलन के भाव समझाए जावें, रासलीलान के द्वारा उनको भगवान की लीलाओं को दिग्दर्शन उनको कराया जाए है कि जासू जीवन भर वो एक स्मृति उनके हृदय में हृदय पलट पटल पर बनी रहे है। बड़ो सुख और बड़ो आनंद वो माने हैं। यहाँ अच्छे अच्छे करोड़पति लखपति और गरीब और मध्यम वर्ग सभी प्रकार के वैष्णव यहाँ में आवे, जो कभी मोटर के सिवाय पैदल चले नहीं है वो भी हमारी यहाँ ब्रज यात्रा में 10-10 किलोमीटर 15-15 20-20 किलोमीटर पैदल चले हैं और शाम को आराम करके प्रातः उठे हैं तो उनको थकावट नाम मात्र की भी नहीं लगे, और 80-80 90-90 वर्ष के वृद्ध वृद्धाएं वो भी चलने में आनंद माने। आप सोचो तो एक बालक से लेकर के वयोवृद्ध तक को सबन को यामे यात्रा के अंदर परम आनंद प्राप्त हो।
1: तो जाके पीछे भगवान कृष्ण की लीलान को प्रभाव है कि हमारी ब्रज संस्कृति को जो योग है,
0: या में ब्रज संस्कृति को भी प्रभाव है और भगवान की ब्रज लीला को भी प्रभाव है, और सबसे बड़ा जो ये वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग में परंपरा प्रारंभ भई तो पुष्टि मार्ग ये अनुग्रह मार्ग है। वो मन में यही भावना लेकर के आए हैं कि हमारे ऊपर ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी कि हमको ब्रज में खींचे, नहीं तो हम तो ये संसार के दलदल में फंसे हुए हैं, वो वहाँ से कैसे निकलते। पर वल्लभाचार्य जी के अनुग्रह और उनके कृपा बल से ये सारों कार्य उनको पार पड़े।
2: हजारों हजारों मील दूर बसे प्रवासी भारतीयों को भी ब्रज यात्रा का आकर्षण खींच लेता है।
3: लंदन का जीवन तो बड़ा सुख और वैभव का जीवन है, यहाँ इस यात्रा में आपको कुछ कष्ट का अनुभव तो नहीं होता?
4: नहीं नहीं, ये व्रज भूमि का प्रताप है, कोई कष्ट नहीं लगता।
3: अच्छा अच्छा, तो आपको लगभग 40 दिन इस यात्रा में चलते हुए हो गए?
4: हो गए।
3: कुछ थकान भी महसूस नहीं होती?
4: कोई नहीं।
3: क्या क्रम रहता है आपका यात्रा का?
4: हम 3 बजे उठते हैं, नहा धो के 4-4:30 बजे करीबन हम चलने शुरू कर देते हैं।
3: भोजन की व्यवस्था तो रोज एक सही भोजन चलता है या
4: नहीं? नहीं नहीं, अलग अलग।
3: आपके गुजराती व्यंजन क्या क्या विशेष है?
4: बस यही दाल भात साग रोटली, दाल भात कढ़ी, पूरी, मिष्ठान बीच में एक बजे एक दफा।
3: अच्छा,
4: डोसा डोसा, शाम को थोड़ा नाश्ता, दिन भर को नाश्ता, सुबह चाय दोपहर को चाय।
3: अच्छा,
5: आज भी बल्लभ कुल संप्रदाय के गोस्वामियों द्वारा प्रतिवर्ष ब्रज यात्रा की जाती है। इसमें हजारों यात्री भाग लेते हैं जो यात्रा उठाने वाले गोस्वामी जी के शिष्यगण होते हैं।
2: यात्रा तिथि से काफी समय पूर्व यात्रा की तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। यात्रीगण भी यात्रा से कुछ दिन पूर्व मथुरा आ जाते हैं।
5: निश्चित तिथि पर मथुरा के प्रसिद्ध विश्राम घाट स्थित महाप्रभु बल्लभाचार्य जी की बैठक के सामने यात्रीगण यात्रा में शुद्धता, सदाचार, भक्ति भावना, लता वृक्षों को न सताने, सात्विक भोजन आदि का नियम संकल्प लेते हैं।
6: केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण गोविंदाय नमो नमः। आप जल्दी लीजिए। ओम श्री विष्णु विष्णु विष्णु तस्वी प्रार्थे श्री सुधवाराकल्पे अश्वामित्र क्षेत्रे बहुताधरे विक्रम से केशवाद सकल देवता नाम सन्निधाने श्री सूर्य शुक्ल पक्षे पुण्य पर्व पंचम्यां अपने नाम ले जाइए, गोत्रोच्चारण करिए। बोलो जमुना बा, हम 84 गोष की परिक्रमा के आपके सन्मुख नेम लेते हैं, जितने नेम पलेंगे उतने पालेंगे, जो भूल चुके उसको क्षमा करना। सुन लो, नेम ये है धरती पर सोना सहन करना, खाटला पर सोना नहीं, लीला जार तोड़ना नहीं, हिंसा करनी नहीं, क्रोध कोई पर करना नहीं, बाजार में ऐसी ऐसी चीज को खानी नहीं, जहाँ गौर ले जाए माँ जानो

0: रात्रि को पटे में घर में निवास कर लो, नहीं अपने पाल में निवास कर लो, मधुबन यानी सबसे मधुर बोल लो, बोल अपने गाय को दाएं धड़े जानो, जितने हम पलेंगे उतने पालेंगे, जो भूल चुके हो आप क्षमा करियो, बोल हमने महारानी की जय, बोल के की।
1: नियम लेने के पश्चात मथुरा की अंतरग्रही परिक्रमा की जाती है।
2: अब अंतरग्रही परिक्रमा आरंभ होगी और वाके बाद में ये यात्रा को पड़ाव जो है तत्पश्चात मधुबन में जाएगा, पड़ जाएगा
3: मधुबन में।
2: आप मैं सूक्ष्म में या को रेखा चित्र प्रस्तुत कर दूं कि ये यात्रा कहाँ कहाँ कौन से रास्ता से किन किन के दर्शन को आनंद लाभ लेती हुई जाएगी
3: अंतरग्रही में।
2: अंतरग्रही में या को ऐसा है कि सबसे पहले देखो ये जो यात्री जा रहे हैं
3: जी,
2: ये यात्री सभी जाते हुए पहले चर्चिका देवी के लिए मनाते हुए या के पश्चात में फिर ये पिपलेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे, वाके पश्चात में बटुक भैरव के दर्शन है, ये बड़ा प्राचीन स्थान है, यहाँ के दर्शन करेंगे, या के बाद में छीत स्वामी जो अष्ट सखान में भये हैं विनके वंशज या जी के निवास स्थान है उनको, और ये श्याम जी को बड़ो सुंदर प्राचीन स्वरूप है या के दर्शन करके फिर ये राम जी द्वारे में आए जाएंगे।
3: अच्छा,
2: यह राम जी द्वारे की विशेष महत्वता ये है कि यहाँ संत तुलसीदास जी आए और विनय यहाँ केवल कृष्ण की ही भक्ति देखी तो विनय की तुलसी मस्तक जब न वे धनुष बाण लेव हाथ, तो ये वही स्थान है।
3: अच्छा,
2: जहाँ प्रभु ने कृष्ण के स्वरूप में धनुष बाण के दर्शन के कराए हैं और राम कृष्ण को एक ही स्वरूप को दिग्दर्शन कराए हुए, या के
3: इसके बाद पंडा जी फिर आगे कहाँ जाएंगे।
2: श्री गोपाल जी को विग्रह है जो एक बिल्कुल अलौकिक अद्भुत स्वरूप है, कमलासन आसीन दीन दुख टारन हारे अरुण वरुण अरविंद चरण ता ऊपर धारे, कमल के फूल पर श्री गोपाल जी महाराज की ये विग्रह है जो दोनों पैर एक पैर के ऊपर पैर रखो हो पैर लटको भयो, दूसरे एक हाथ में खीर और एक हाथ में मक्खन लिए भय, या शुद्ध पीठ पे बड़े ही अलौकिक आनंद के उत्सव और दर्शन को लाभ लेते हुए ये लोग फिर यहाँ से पद्मनाभ जी के मंदिर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे।
3: अच्छा,
2: वाके पश्चात में गिरिराज जी को मंदिर है गुजराने के नुक्कड़ पे, ये गिरिराज जी के मंदिर के दर्शन करते हुए फिर मथुरा देवी के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। मथुरा देवी नाम की जो देवी है ये बहुत ही प्राचीन और यहाँ की जो कथा भागवत आदि बारह पुराण में इनके लेख अभी तक उपलब्ध हुए हैं, और यहाँ के ठीक सामने मनोहरपुरा के पास में राजस्थान की कलाकृति में पत्थर को बहुत ही सुंदर मूर्ति ये जो मंदिर है या में श्री दीर्घ विष्णु महाराज जी के दर्शन है, ये बड़ी अच्छी विग्रह है, यह में बड़ी लावण्यता है माधुर्यता है और बहुत ही सुंदर स्थान है
3: दीर्घ विष्णु जी का मंदिर।
2: या के बाद में ये आपके जो श्रीनाथ जी की चरण चौकी है नगरा पाईसी में या जगह ये मंदिर को जीर्णोद्धार है गो है, या जगह लोग दर्शन करेंगे। या के पश्चात में श्रीनाथ जी की एक हवेली है या में श्रीनाथ जी को बड़ो सुंदर स्वरूप है, या के दर्शन को लाभ लेते हुए यहाँ बारहा जी के जो क्षेत्र है यहाँ आरती वाले चौबे कई के निवास स्थान करे हैं, या जगह श्वेत बारहा काल बारहा और दाऊ जी और एक छुआ जी के चौबे जी हैं, इनके घर में मूर्ति है बड़ी सुंदर विग्रह है, या को दर्शन को लाभ लेते हुए ये लोग सीधे गतश्रम नारायण प्रभु के मंदिर में आई जाएंगे। गतश्रम नारायण प्रभु को बहुत ही पुरानो इतिहास है और बड़ो सुंदर स्वरूप है, ये काफी अच्छा मंदिर है, या को दर्शन को लाभ लेकर के फिर यात्रा मधुबन के लिए प्रस्थान कर
3: मधुबन
2: जाते समय रास्ता में शिवताल नाम को कुंड पड़ेगा, ये कुंड में आठ बुर्जी हैं और पत्थर को बहुत ही संगीन और रमणीक स्थान है, यहाँ बहुत ही अच्छे वृक्षावली भी है और यहाँ बिहारी जी के दर्शन है।
4: और अंतरग्रही परिक्रमा के पश्चात ब्रज यात्रा मथुरा से प्रस्थान कर पहले पड़ाव पर पहुंचती है।
2: मधुबन में जो ध्रुव जी को टीलो नाम करके है या टीले में ऐसे अवशेष मिले कि जिनमें जरेब है जौ तिल आदि भस्मी के रूप में आज भी उपलब्ध हुए और या जी ध्रुव जी ने जाई करके तपस्या करी है, यहाँ के ठीक सामने एक ये कृष्ण कुंड है और यागे बराबर में ये महाप्रभु जी की बैठक है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की यह प्रथम बैठक

0: शोभा जो अपनी है वाकई लिए कहेंगे मधुबन की है, प्रथम बैठक ही है और याजिंग है, यात्रा को यहीं पे पड़ाव रहे हो। याज्ञ के पश्चात में यात्रा तालवन में जाएगी और तालवन के पश्चात में कमोद वन के लिए प्रस्थान कर जाएगी। कमोद वन में कपिल मुनि के आश्रम के दर्शन है और या को जो फल है वो गंगा सागर के स्नान को फल है। या के लिए कपिल मुनि ने आए के यहाँ तपस्या करी है। या के पश्चात में यात्रा शांतनु ऋषि जो है, शांतन ऋषि ने जहाँ तपस्या करी है या के लिए सतोहा करके ये गांव है और शांतन कुंड के ठीक कुंड के बीच मध्य में ये बड़ो रमणीय स्थान है और यह स्थान में शांतन बिहारी लाल के दर्शन है। वहां के पश्चात में यात्रा बहुला वन के लिए प्रस्थान कर
1: बहुला
0: बाद में ये यात्रा जो है चंद्र सरोवर के लिए जाएगी, परंतु रास्ता में या को एक पड़ाव कुसुम सरोवर वे अवश्य ही पड़ जाएगी। या के बाद में यात्रा चंद्र सरोवर के लिए प्रस्थान कर जाएगी। देखो या के बाद में यात्रा गिरिराज जी की तरेटी प्रस्थान करके गोविंद कुंड में
1: पहुंचेगी।
0: जय श्री कृष्ण।
1: जय श्री कृष्ण।
2: विशाल मैदानों में लगे सैकड़ों तंबू, लगता है जैसे तंबुओं का उपनगर बस गया हो। ऐसे ही एक स्थल पर ब्रज यात्रा के कुछ श्रद्धालु यात्री और उनके अनुभव।
1: क्या शुभ नाम है महाराज आपका?
3: मनमोहन दास लक्ष्मी दास वोरा।
1: अच्छा, कहाँ से पधारे हैं आप?
3: हम पधारे हैं तो धानू से, बिलवाड़े का रहवासी है।
1: हाँ।
3: मगर दंडा के अर्थ धानू में रहते हैं।
1: अच्छा अच्छा, कौन सा प्रदेश हुआ ये?
3: ये महाराष्ट्र में।
1: महाराष्ट्र में
3: छिल्ला तालुका।
1: अच्छा, क्या अवस्था होगी आपकी?
3: 69 साल हो गई।
1: 73 साल?
3: 69।
1: 69। अच्छा अच्छा, ये पहली बार आप यात्रा कर रहे हैं?
3: नहीं, छठी बार यात्रा कर रहा हूँ।
1: छठी बार यात्रा कर रहे हैं
3: जी।
1: अच्छा, तो ऐसी कौन सी भावना आपके मन में आती है जो यात्रा करने के लिए आप इतनी दूर से यहाँ इतने कष्ट उठाकर आते हैं?
3: वैष्णव वल्लभ कुल को हुआ, वो ब्रज को इतना मानते है कि मेरा कृष्ण का भूमि इतनी पवित्र है कि ये पवित्र भूमि ने हमको जन्म तो नहीं दिया मगर हमको घूमने को भी 5-10 दफे मिले हमारी जिंदगी में, तो बहुत बढ़िया है,
1: बहुत सुंदर।
4: तंबुओं के इस उपनगर में मध्य स्थल पर यात्रा के गोस्वामी जी का एक बड़ा शामियाना लगा है। तंबुओं के एक और बाजार है जिसमें चाय, पान, आटा, दाल, साग सब्जी आदि की दुकानें हैं। एक ओर गैस के हंडों का तंबू है तो दूसरी ओर लाउड स्पीकर का।
2: एक ओर ब्रज यात्रा का कार्यालय है तो पास में ही ब्रज यात्रा का निजी बैंक जो यात्रियों को निशुल्क अर्थ सेवा करता है।
1: यात्रा के इस जतिपुरा पड़ाव में आपके तंबू में बैंक को देखा तो क्या व्यवस्था होती है यात्रियों के लिए?
5: यात्रा आता है जो इसका पास पैसा होता है इधर सब लोग जमा करा जाता है।
1: अच्छा,
5: इसको एक पासबुक जितना पैसा रहता है इसको एक पासबुक हम देता है, वो इधर चौपड़ा में जमा करता है और इसको पासबुक सब इसको इसका पैसा जब चाहिए इधर से ले जाता है। हम भी मथुरा में स्टेट बैंक में अकाउंट खोलता है।
1: अच्छा,
5: सब पैसा सब जमा होता है इधर, हम जमा कराते हैं। जब जब हमको जरूरत पड़ता है तो हम बैंक को समा कर भेजता है, तब उसको हमको पैसा इतना भेज देता है।
1: अच्छा, तो कोई बैंक से लेने जाता है मथुरा या बैंक का आदमी?
5: बैंक आदमी इधर
1: दे जाता है। अच्छा, अगर आपके पास कोई ड्राफ्ट लेकर आता है किसी बैंक का तो क्या उसके बदले में आप रुपया दे देते हैं?
5: देता है।
1: इसके बदले में कुछ कमीशन लेते हैं?
5: कुछ नहीं।
1: कुछ नहीं, ये यात्रियों के लिए निःशुल्क सुविधा है।
6: अभी श्रोता सुन रहे थे रूपक यात्रा ब्रज की। आलेख मोहन स्वरूप भाटिया का था, प्रस्तुति टी एन शर्मा की। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनते हैं कामोद मिश्रा के गाई ठुमरी और दादरा, राग खमास पहाड़ी और तिलक कामोद में।

0: प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियू को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. India and Australia today adopted a new

0: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। राति के 11 बजने हुए, कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंदी